आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: 5:42 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि के तदनुसार 25 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। ठीक 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। आठ बजे जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। नौ बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। और ठीक 10 बजे आप एक बार फिर से सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 का समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का। ग्यारह बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। और ठीक 12 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 5:59 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक

व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब मुश्किलें हम पर आन पड़ती हैं और हमारा मन घबराने लगता है और हमको कुछ नहीं सूझता, तब एक मधुर आवाज धीरे से हमें सुनाई देती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रख। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर

हम मनुष्यों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसीलिए वो हमारी चिंता करता है और हमेशा उसको रहती है हमारी परवाह और हमारी प्रार्थनाओं का भी वो जवाब देता है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि विश्वास करने पर ही हम ईश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर होगा तो तुम ईश्वर के एक से बढ़कर एक आश्चर्य कर्म को, जो असंभव सा प्रतीत होता है, अपनी नजरों से संभव होता देख पाओगे।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब हम हर बात के लिए अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से निराशा के बादलों को हटाकर खुशियों की बारिश कर देते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और करुणा

दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में आगे बढ़ते रहिए और प्रभु की आशीषों से अपने जीवनों को भरते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बता देते हैं हमारा वो नंबर, जिन पर आप हमें मैसेज या फोन करके प्रभु के प्रेम के बारे में और जान सकते हैं। आप हमें 9693644242, जी हाँ, 9693644242, और हमारा दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 7678438471, जी हाँ, 7678438471। आप इन नंबरों पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बीत गई जो रातें, उन सपनों को बह जाने दो, नया हौसला नई उमंगे जीवन में अब आने दो। सुबह के 6:21 और ठीक 33 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ।

बिल्कुल, हम भी तो यही चाहते हैं कि सब कुछ खैरियत से हो, आप खैरियत से रहें, और इसीलिए तो इतनी सुबह सुबह आपको उठाने के लिए आ जाते हैं, है कि नहीं, ताकि आप प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों को देख सकें और उनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। यह हमें धैर्य, निरंतरता और संतुलन का पाठ पढ़ाती है। इसका हर तत्व हमें कुछ विशेष सिखा जाता है। तो प्रकृति से सीखिए, क्योंकि

यह ज्ञान का सागर, ये जीवन का पाठ, इसकी छाओं में कटती है हर कठिन रात। सत्य प्रेम और करुणा का अर्थ ये समझाती, प्रकृति ही हमें जीना और महकना सिखाती।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंखें खोलिए क्योंकि हम यहाँ पर एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। मेरा नाम है शालिनी और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। प्रकृति हमारी कितनी बड़ी शिक्षक होती है, उसकी हर चीज, उसका हर तत्व हमें सिखाता है। जैसे पर्वत ऊंचाई और स्थिरता सिखाते हैं, हमें अडिग रहकर लक्ष्य की ओर ऊंचा उठना सिखाते हैं। वो अपने मुंह से कुछ कहते नहीं, सिर्फ उनका होना ही कितना कुछ हमारे अंदर बदल देता है। तो आप भी उनके जैसे ही बनिए ताकि आपके होने भर से लोगों में सकारात्मक बदलाव आ सकें।

इस सुहानी सुबह में जब सूरज की किरणें धीरे धीरे आपके चेहरे पर पड़ने को तैयार हैं, आपको जगाने को तैयार हैं, तो हम भी यहाँ पर हाजिर हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आपके साथ हूं मैं शालिनी और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। प्रकृति हमारे लिए कितनी बड़ी शिक्षक है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उसका हर तत्व हमें कुछ सिखाता है। कहते हैं ना कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपति सच ही सुजान। यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो फल खुद नहीं खाते, जो सरवर है और नदियां हैं वो पानी खुद नहीं पीती, वो हमें देती हैं। इसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ अपने लिए संपत्ति या धन का संचय नहीं करते, परोपकार के लिए भी करते हैं। इसी तरह से आप इन गुणों को अपने अंदर समाहित कीजिए और प्रकृति से कुछ सीखिए, उसके साथ वक्त गुजारिए। आप जब भी प्रकृति के साथ बैठेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई शिक्षा पाठ सीखने को जरूर मिलेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आपके साथ हूं मैं शालिनी और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। प्रकृति जो है वो मौन रहकर भी हमें कितना कुछ सिखा जाती है, हर चीज उसकी। सागर हमें मन में विचारों की विशालता और गहराई सिखाते हैं। नदियां हर बाधा को पार कर निरंतर आगे बढ़ना हमें सिखाती हैं। वो कहते हैं कि चट्टानों से टकराकर भी अपना रास्ता वो खुद बनाती, हार ना मानना जीवन में कभी, बहती नदी हमें यही सिखाती। पेड़ हमें परोपकार की भावना सिखाते हैं, स्वयं धूप सहकर भी दूसरों को छाया और फल देना सिखाते हैं। और न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति हमें सिखा देती है, ऐसी ऐसी बातें जो शायद किसी किताब में ना मिले, है ना। तो प्रकृति से जुड़िए और उससे सीखिए।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

सुप्रभात, सुन रहे हैं आप शालिनी आपके साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति कितनी बड़ी शिक्षक है, इतनी विशाल और इतनी महान होने के बावजूद भी वो हमें कितना कुछ सिखाती है बिना कुछ बोले। हमसे वो कुछ नहीं मांगती, लेकिन फिर भी हमें कितना कुछ दे जाती है। उसके बीच में रहना, प्रकृति को निहारना, प्रकृति के साथ वक्त बिताना, यही हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। पृथ्वी सभी का बोझ सहकर भी क्षमा और सहनशीलता बनाए रखना हमें सिखाती है। हवा यह हमें संभाव सिखाती है, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती, सबके लिए एक जैसी बहती है। जीव जंतु जैसे कि चींटी, मधुमक्खी, ये चींटी से हमें अनुशासन मिलता है और मधुमक्खी से हमें

खूबसूरत सुबह का ये नज़ारा देखिए, उठिए, आंखें खोलिए, क्योंकि ये सुंदर नज़ारा आपके लिए ही रोज आता है, तो आप इसके पास क्यों नहीं जाते हैं? आपको ये खूबसूरत आंखें दी हैं प्रकृति ने, आपको ये सुंदर नज़ारे देखने के लिए, ये हवा, ये सूरज, ये चांद सितारे, है ना, ये सब कुछ आपको देखने के लिए तो दिया है उसने। तो इससे अपनी दोस्ती करिए, प्रकृति की हर चीज़ से दोस्ती करिए, और यकीन मानिए जब आप जितना इसके करीब होंगे उतना ही ज़्यादा सहज और सरल होंगे, क्योंकि प्रकृति से दूरी ना, इसने आपको बहुत परेशान किया है। जितना आप इसके करीब होंगे आपको कई बार अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप देखिएगा, जब आप कभी बहुत परेशान हो तो चंद पल ना प्रकृति के साथ गुजारिए और आपको अपने सवालों के हल मिल जाएंगे। इसीलिए फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो जगना और जगाना, हवा के इन झोंकों से सीखो सबको गले लगाना। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, क्योंकि समय यहाँ पर हमें इशारा कर रहा है जाने के लिए। सुप्रभात, सुन रहे थे आप शालिनी के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतंत्र

आंतरिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Hey listeners, good morning. इतनी लवली मॉर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ मैं ज्योति, आज के शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में. 7:09 हो चुके हैं और आज का ये ब्यूटीफुल सा डे शुरू हो चुका है और आपका और हमारा साथ तो है ही. आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 आप सुन रहे हैं. तो आज का दिन बहुत सारे मायनों में खास है, वो सारी बातें करेंगे आज के शो में. और बस बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए ब्यूटीफुल से सॉन्ग, और उसके बाद आपके लिए आ रही है बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी.

हाँ जी, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग है जी दिल्ली वालों, तो एनसीआर वालों, क्योंकि शो का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और ज्योति आपके साथ है। और आपको पता है कि समझदारी का सबसे पहला कदम क्या होता है? वो ये होता है कि हम ये मान लें कि हमें अभी ना बहुत कुछ सीखना है। मतलब रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने जान लिया, पढ़ लिया, जो भी मुझे सुनाई दे गया ना, उसके बाद भी इतना सब कुछ है जो हमें जानना है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा आज का दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि जैसा जैसा मौसम विभाग अनुमानित करता है ना, उसके अपोजिट भी कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। कहीं कहीं मतलब बारिश पड़ ही जाती है और आज भी ऐसा ही अनुमान है, मगर मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर के बाद जो है वो बारिश होगी। और अभी सुबह सुबह जो है वो साफ और तेज़ धूप वाला दिन रहेगा, मगर अगर मैं स्टूडियो की खिड़की से बाहर देखूँ तो मुझे काफ़ी खूबसूरत से ना बादल नज़र आ रहे हैं। और अगर टेम्परेचर बताऊँ तो आज मैक्सिमम जाएगा 39 डिग्री और मिनिमम 31 डिग्री रहने की संभावना है। तो ये तो संभावना की बात है। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि अभी फिलहाल मौसम साफ है, मेरे पास स्टूडियो के बाहर बहुत खूबसूरत से बादल हैं, मगर हाँ पूरे दिन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर तो बारिश हो ही जाएगी, कहीं दोपहर को हो जाएगी, कहीं शाम को हो जाएगी। बस अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब धूल भरी आंधी चलती है तो काफ़ी मुश्किल होती है और नुकसान भी होता है। तो बारिश को इंजॉय कीजिए, मौसम को इंजॉय कीजिए और आज के दिन को भी इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल ऐसा ही होगा। कहीं कहीं तो जैसे मैंने कहा बारिश हो ही जाएगी, हो सकता है आपकी नगरी में हो जाए, जिस शहर में आप हैं वहाँ हो जाए। तो बस मौसम को एंजॉय कीजिएगा, और जिस तरह से आज का मौसम, आज का दिन खास है, उसी तरह से आज का दिन ऐसी बहुत सारी यादें लेकर आया है जो बहुत खास है। यानी कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ था, तो बहुत ज़्यादा खास चीज़ें हुई थी आज के दिन। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्रिकेट की, क्योंकि उसकी तो दुनिया दीवानी है, आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो क्रिकेट का फ़ैन नहीं होगा। तो आज के दिन 1983 में पहला क्रिकेट विश्व कप हमने जीता था, और भारतीय क्रिकेट के इतिहास का ये सबसे बड़ा दिन है था। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो वो मोमेंट कितना खास था, और मतलब उसको तो आज भी अगर याद करें, जिन्होंने उसे देखा था जो उस टाइम पे थे, वो आज भी उसको महसूस कर सकते हैं। जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो कितनी अच्छी लगती है। और इसके अलावा 1932 में भारत का पहला टेस्ट मैच, भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा, और ये ऐतिहासिक मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। और भी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जो आज के दिन दर्ज की गई हैं, जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in। पानी

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: Com'irebbe messa?
1: अगर कोई आंखों को चूम ले तो उसके होठों पे भी आ जाए।
2: सरकार की औलाद।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर और शो है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ज्योति के साथ और आज है 25 जून 2026 और 1975 में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा, संविधान का सम्मान और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हम सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ख्याल हमें भी रखना होता है। और आज का ये दिन जो है 25 जून संविधान हत्या दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू की थी और इस दिन को भारतीय लोकतंत्र और संविधान के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। उस मार्मिक अवधि की याद दिलाता है जब भारत के संविधान का विशेष रूप से वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान दमन किया गया था। आज का दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों को झेला। यह नागरिकों को उनके अधिकारों को उनकी लोकतंत्र की रक्षा में संविधान के महत्व के बारे में शिक्षित करने के साधन के रूप में कार्य करता है। तो यह हम सभी की जिम्मेदारी है और आज का दिन इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं हम और काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं आज के दिन।

25 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आजादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। इस दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खामोश कर दिया गया था। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया ताकि इस घटनाक्रम को भुलाया ना जा सके और लोकतंत्र की पवित्रता को लगातार बरकरार रखा जाए। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? ये एक सुप्रीम लॉ है ताकि हम अपने देश को एक व्यवस्थित, सुरक्षित और लोकतांत्रिक रूप से चला सकें। और ये देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार की शक्तियों को तो सीमित करता है और नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। इसी का दमन हुआ था 1975 में।

क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, तो ये दिन उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद दिलाता है जिन्होंने उस दौरान हुए अत्याचारों का सामना किया था। और मेरे फादर खुद उस टाइम पर थे और उन्होंने एक्सपीरियंस किया था और मुझे काफ़ी बार बता चुके हैं उसके बारे में।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और

0: खरीदारी का साथ।
1: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

बात आपको नहीं पता है या पता है और भूल गए हैं वो बताने के लिए हम आपके साथ हैं। आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है। और आज का दिन एक और बहुत शख्सियत, एक खास शख्सियत की वजह से याद किया जाता है। भारत के 8वें प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय के प्रणेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी जिन्हें हम वीपी सिंह जी के नाम से भी जानते थे, उनकी आज जयंती है और वो 25 जून आज के दिन मनाई जाती है। उनका जन्म 1931 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो आज की तारीख में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें एक राज परिवार में हुआ था। और उनके जीवन से जुड़ी और उनके राजनीतिक सफर से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय में अपनी भूमिका निभाई थी। उन्हें मुख्य रूप से ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान करने वाली मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा उनकी साहित्य में भी काफ़ी रुचि थी। राजनीति के अलावा उनकी गहरी रुचि कला और साहित्य में भी थी। उन्होंने एक टुकड़ा धरती, एक टुकड़ा आसमां नामक कविता संग्रह भी लिखा है। और साथ ही साथ वो 1980 से लेकर 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो उनका भी योगदान काफ़ी सराहनीय है और उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और इसलिए उनकी आज जयंती है और उनको हम नमन करते हैं।

गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आप सुन रहे हैं और आज बॉलीवुड की ऐसी दो खास शख्सियत हैं जिनका आज जन्मदिन है। इनफैक्ट एक और सज्जन है मगर वो हमें अलविदा कह चुके हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। मगर जो अभी बॉलीवुड पे जिन्होंने अभी भी मतलब काफ़ी कुछ टाइम पहले तक तो राज कर रहे थे, अब फिल्मों से थोड़ा सा दूर हैं, तो बता दूं कि आफ्ताब शिवदसानी के साथ अपना बर्थडे आप शेयर कर रहे हैं और उनकी शुरुआती हिट फिल्में थी मस्त, कसूर, प्यार इश्क और मोहब्बत, लव के लिए कुछ भी करेगा और बहुत सारी फिल्में उनकी पसंद की जाती हैं, जैसे कि क्या यही प्यार है, हंगामा, फुटपाथ, आवारा पागल दीवाना, मुस्कान, शादी से पहले, अनकही और ग्रैंड मस्ती, देन ग्रेट ग्रैंड मस्ती। तो उनकी फिल्मों के लिए उनको जाना जाता है, उनके अलग अलग किरदारों के लिए और साथ ही साथ उनके वो जो उनका क्यूट सा चॉकलेटी फेस है उसके लिए जाना जाता है। तो उनका आज बर्थडे है, उनके साथ अगर आप शेयर कर रहे हैं बर्थडे तो अगर आपके वो फेवरेट एक्टर हैं, आप उनके फ़ैन हैं, तो आपको काफ़ी खुशी होगी। इसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत सी एक्ट्रेस हैं, आई थिंक उनका कोई ऐसा नहीं होगा जो उनका फ़ैन नहीं होगा, उनकी फिल्मों का, उनके गानों का, उनकी एक्टिंग का, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया उनकी एक्टिंग में इतना निखार आता गया और उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में करी जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि कमर्शियल फिल्मों से हटकर उन्होंने आर्ट फिल्म्स भी करी हैं, जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो है करिश्मा कपूर और उनका निक नेम लोलो है और वो कपूर परिवार की पहली ऐसी फीमेल कह सकते हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अभिनय को करियर बनाया था और उससे उनकी माँ भी फिल्मों में थी मगर अपने परिवार में उन्होंने बनाया था और 17 वर्ष की उम्र में ही फिल्मों में उन्होंने डेब्यू कर लिया था और उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। राजा हिंदुस्तानी ने उनकी किस्मत बदल दी थी और उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था दिल तो पागल है में के लिए और उसके अलावा दिल तो पागल के रोल तो उनका सबको पसंद आया था और उनकी जो आँखों का रंग है ना, नीला, हरा, वो सबको काफ़ी पसंद आता है और काफ़ी डिफरेंट है। तो और उन्होंने गोविंदा के साथ भी बहुत सारी ऐसी फिल्में दी हैं, उनकी जोड़ी काफ़ी सुपरहिट रही और लोगों को काफ़ी पसंद आई, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, बहुत सारी फिल्मों में वो साथ नजर आए और बहुत अच्छा डांस तो वो करती ही थी और एक्टिंग भी क्या कमाल की करती थी। और उन्हीं की फिल्म जुबैदा से, क्योंकि एक बहुत यादगार फिल्म है, जैसे फिजा है वैसे ही जुबैदा भी है, तो उसी मूवी से आपको मैं सुनवा रही हूँ एक बहुत प्यारा सा गाना जिसका नाम ही है प्यारा सा गाँव। इंजॉय कीजिए आकाशवाणी रेनबो पर और गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में ज्योति आपके साथ है।

आज 25 जून को हम मना रहे हैं जयंती एक हसमुख कलाकार की जिनका नाम है सतीश शाह। और बस कुछ ही समय पहले उन्होंने हमें अलविदा कहा। 25 अक्टूबर 2025 को वो हमें अलविदा कह गए। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1961 में और उन्हें उनकी इतनी सारी फिल्मों के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है और उनकी सबसे अच्छी फिल्म जो मुझे लगती है वो है

खाने भी दो यार। आपके कौन से फेवरेट हैं आप हमें बता सकते हैं? तो उन्हें हम आज याद कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में काम किया और उनके हंसमुख चेहरे को देखकर हमेशा सबके चेहरे पर स्माइल आ ही जाती थी। और इसके अलावा एक और बहुत खास शख्सियत है मदन मोहन, जिनकी आज हम जयंती जो है वो उनका आज जन्म हुआ था 25 जून 1924 को, और वो संगीत निदेशक थे और उन्होंने ऐसी बहुत सारी तमाम फिल्मों में 100 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया और दिलों में राज किया अपने गानों के द्वारा। उनका सबसे अच्छा गाना जो है वो मुझे लगता है वो भूली दास था, जो याद आ गई, जो मैं आपको सुनाऊंगी दिल के तरह नए गाने नए पुराने में। फिलहाल आप बस यूं ही आकाशवाणी रेनबो के साथ बने रहिए, क्योंकि शालिनी आ गई है स्टूडियो में लेकर गुड मॉर्निंग डेली NCR का सेकेंड आवर, जो 8 बजे आप उनके साथ सुन सकते हैं। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे 9 बजे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार ते बड़ा वाला हेलो एगा जी, मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल ने, क्या कह रहे हैं?
2: अभी अभी जलील करके उठाएगा, किस मुंह से मैं गुड मॉर्निंग बोलूं, काहे के गुड मॉर्निंग।
1: तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं जब आपको जलील होकर उठाना पड़े। आप अगर समय से उठ जाएंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ख्याल रखिए, फिलहाल मैं आपके लिए ऐसा कर सकती हूँ कि आपके मूड को अच्छा करने के लिए मैं एक बढ़िया सा बेहतरीन सा ट्रैक चला सकती हूँ, तो आप मुस्करा दीजिए। आप हैं इतना क्या भाव कर रहे
3: हैं? नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, मुस्कराना तो पड़ेगा ही, प्लीज।
1: चलिए उड़ने के लिए तैयार हो जाइए मसक्कली के साथ।

मैंने कहा बस भी करिए, बस करिए, बस करिए। गर्दन में झटका आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बस करिए। आप जब शुरू होते हैं ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब ऐसे गाने क्या करूं, मुझे तो चलाने पड़ते हैं ना आपके लिए। लेकिन ख्याल रखिए, गर्दन एक ही है आपके पास। चलिए अब आपको मैं बता दूं ना कि जो गर्मी के हालात है ना, उसने इतनी बुरी तरह से हमको तड़पाया हुआ है ना कि गर्मी में सजा देता है, सर्दी में सजा देता है, टंकी का पानी ना हर मौसम में दगा देता है। यही कह रहे हैं ना आप भी? सच बात है बिल्कुल ही। लेकिन अब जो आज का मौसम है ना, वो कुछ बदलने के इंडिकेशंस दे रहा है, तो आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। और ये जो टंकी का पानी है ना, ये भी, इसका भी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं कि आज जो है वो मौसम विभाग ने अब से लेकर 30 जून तक रुक रुक कर आंधी और बारिश वाले मौसम की चेतावनी दी है, तो आप खुश तो हो जाइए। और इसके अलावा जो है वो येलो अलर्ट भी जारी किया है तेज हवाओं का, और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो जब आप बाहर निकलेंगे ना तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है इनकी। तो मैं कह जी आप इतना उछल रहे हैं ना, साथ में हेलमेट लेकर जाइएगा। नहीं, स्कूटी या बाइक लेकर जाइए मत जाइए, लेकिन हेलमेट लेकर तो जरूरी जाइएगा, क्योंकि अगर एक आधा पेड़ टूटकर आपके सिर पर गिर पड़ा ना तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके लिए, आपको डराना नहीं चाह रही हूँ, आपको मैं आगाह करना चाह रही हूँ। फिलहाल ये गाना सुनिए, आगे की बातें बाद में करेंगे, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप मेरे यानी शालिनी के साथ, और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: Yes, Aries, आपकी देसी गलियां पर है आकाशवाणी रेन में 102.6 पर. मैं हूं आपके साथ चालनी और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर. ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और अगर आप सोके नहीं उठे तो उठ जाइए क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी. ऐसा तो कह ही सकती हूँ लेकिन ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रह सकती ना. बहुत सारी बातें आपको बतानी है तो मैं आपको अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी. लेकिन हाँ, गर्मी ने इतना परेशान किया ना कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि काश जल्दी से बारिश हो जाए. मैं भी यही सोच रही हूँ. तो आज आपकी ये जो मंशा है वो पूरी हो सकती है लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. बस शाम तक ऐसा हो सकता है. क्या कह रही हो आप?
1: बेटा, बारिश का तो ठीक है, है लेकिन बारिश के बाद बारिश तो आ जाएगी पर जो सड़कें गायब हो जाएंगी उसका क्या? पिछली बार बारिश में नहाते नहाते खेलते खेलते मैं कर रही थी छप्पा छाई और बेहती चली गई. बताओ तो ऐसे कैसे चलेगा, सड़कों का क्या होगा?
0: चिलैक्स दादी जी, मैं आपको बता दूं कि आपके घुटनों का, आपकी सड़कों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और जो सरकार है ना उसने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और पिछले मॉनसून के मुकाबले इस बार ना जो जल भराव और बाढ़ की स्थिति होती है ना कई बार दिल्ली में कई कई जगहों पर, उसको ठीक करने के लिए ना सरकार ने पूरे शहर में विशेष निगरानी तंत्र लागू किए हैं और इसके तहत ना 24 घंटे संचालित होने वाला जो केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष है यानी कि सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम, वो सक्रिय कर दिया गया है. ये यमुना नदी और नजफगढ़ ड्रेन के लिए भी 3 स्तरीय चेतावनी प्रणाली भी लागू की गई है और ये जो व्यवस्था है पूरी ये 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. ठीक है, तो इस पूरी अवधि में दिल्ली में बाढ़ और भारी जल भराव का जो खतरा रहता है ना वो बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि, तो इसीलिए इस अवधि को चुना गया है और संवेदनशील तटबंधों, पंपिंग स्टेशनों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों की जो लगातार निगरानी है वो करने के लिए कहा गया अधिकारियों को. तो अब तो मुस्कुरा दीजिए आप, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है. चलिए मैं आपके लिए गाना चला देती हूँ.

0: स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
4: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
5: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए।

दो पल के लिए नहीं, हम तो यहाँ पर पूरे 9 बजे तक आपके साथ हैं। मैं क्या जी, अब सनोरेटा जा चुकी है और शालिनी वापस आ चुकी है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। ठीक है जी, तो ट्रैफिक जाम में अगर आप फंसे ना तो मुझे बता सकते हैं 9868107070 इज द नंबर। क्या करें कि ट्रैफिक जाम तो फोर व्हीलर वालों के लिए होता है, ये टू व्हीलर वालों के लिए तो प्लेटफॉर्म होता है स्टैंड दिखाने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपनी जान है ना जोखिम में मत डालिए। ये स्टंट दिखा के वहाँ पर कोई फायदा नहीं है, कोई आपको अवार्ड मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी, ये तो पता ही ना आपको। ऐसी शायरियाँ तो आपने भी पढ़ी होंगी ट्रक के पीछे। खैर, मुद्दे की

पर आते हैं, आपको ऐसे स्टंट ना दिखाने पड़े, इसलिए ग्रेटर नोएडा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तिलपता और मकोड़ा गांव के बीच में ना ये जो 6 लेन का रेलवे ब्रिज है, ओवरब्रिज, वो है, वो वाहनों के लिए जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसको ROB कहते हैं। इससे लोगों को ना बड़ी राहत मिली है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DMRC प्रोजेक्ट के अंतर्गत ना ग्रेटर नोएडा के न्यू दादरी स्टेशन से बिछाई गई रेलवे लाइन जो है वो ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क से होकर गुजर रही है, और इसीलिए तिलपता और मकोड़ा गांव के बीच में ROB का निर्माण किया गया है, और यहां पर अंडरपास भी बनाया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी आपके लिए तैयारी जो की गई हैं, तो फिर आपको स्टंट क्यों दिखाने? आप सुनिए बढ़िया बढ़िया से सॉन्ग, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया सी बातें मैं आपको बताऊंगी, वो आप सुनिए, पर इस तरह के स्टंट ना ना ना ना ना ना ना।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सुभान अल्लाह, मैं क्या जी तुसी छा गए। पर ये क्या, मेरी आवाज सुन के तुसी घबरा गए? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो आप पर गुस्सा भी नहीं हुई। आपने छोटी छोटी बातें बनाना बंद करिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी बातें। झूठ नहीं बोलना है यहाँ पर सिर्फ सच चलता है। और वो बोलती हूँ मैं, शालिनी कहते हैं मुझे। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR चल रहा है, और क्या चल रहा है, और चल रहे हैं बेहतरीन गाने और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। और की चाहिदा है थानू, बताओ? इतना सारा सब कुछ दे दिया, आपकी तो बिल्कुल फरमाइशें खत्म नहीं होती है, बताइए। चलिए अगली फरमाइश जो है आपकी मैं पूरी कर देती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए लेकिन उससे पहले, कि क्या आप आज भी हवाई जहाज को देखकर, उड़ता हुआ देखकर ऊपर मुंह कर लेते हैं बिल्कुल मेरी तरह? क्योंकि मैं भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी हवाई जहाज से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना, तो आपके लिए खबर है। वो क्या है ना कि जेवर में जो बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल का काम ना अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, तो आपका इंतजार जो है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का जो निर्माण कार्य है वो जारी है पूरी तरह से, और इसे सितंबर या अक्टूबर में पूरा कर लिया जाएगा, और फिनिशिंग का काम बस बचा हुआ है जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसमें जो है वो 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, तो इतना इंतजार तो आप कर ही सकते हैं, है कि नहीं है? और क्या कह रहे हैं आप? लेकिन हाँ, मैं आपको और भी बता देती हूँ एक बात, कि इस वर्ष के अंत तक इंटरनेशनल उड़ाने जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब बताइए आप क्या कह रहे थे?
1: मैं ये कह रहा था कि जो हवाई जहाज है वो एवरेज कितना देता है, जरा बताना तो है, मुझे खरीदना था एक।
0: तो मैं आपको बता दूं कि आप ना सो रहे हैं, नींद से उठ जाइए। नहीं, वो बात सही है कि हवाई जहाज लेना ना लेना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है, वो बात ठीक है, लेकिन फिलहाल आप सपने में ही हैं। सपने से जागिए, आंखें खोलिए, आपके लिए गाना प्ले कर रही हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए ताकि आपकी आंख खुल जाए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मैं क्या जी, ध्यान किधर है? मैं इधर है, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर सुन रहे हैं आप मुझे। शालिनी कहते हैं मुझे, और आप क्या कहते हैं कि क्या बोरिंग सी किताब है, इतने पात्र लेकिन कोई कहानी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने ना हाथ में टेलीफोन डायरेक्टरी पकड़ी है, वो कोई कहानी की किताब नहीं है। बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब आपके पास ना कोई अच्छी सी लाइब्रेरी नहीं होती है या फिर उसमें कोई अच्छा सा लाइब्रेरियन नहीं होता है, तो आप इसी तरह की बातें करते। पर अच्छा लगता है ऐसी बातें करते हुए। तो चलिए, मैंने आपके लिए ना इंतजाम करवा दिया। इंतजाम हो गया मैंने नहीं करवाया है, पर हाँ, आपके लिए इंतजाम हो गया है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जो है वो शहर में 3 आधुनिक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है, और इस परियोजना पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं क्या जी, आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन बात हो गई है। और पहले चरण में अल्फा 1 और गामा और डेल्टा सेक्टर को चुना गया है, और इसका जो निर्माण कार्य है वो फैसिलिटी प्लॉट पर होगा, और हर लाइब्रेरी जो है वो 2 मंजिला होगी। और इसका फाइनल इसका जो मॉडल है वो दिल्ली और गुरुग्राम में जो लाइब्रेरीज जो चल रही हैं उनकी तर्ज पर ही तैयार किया जाएगा, और क्योंकि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये जो लाइब्रेरी है ना वो युवाओं को नई दिशा देगी, ऐसा माना जा रहा है। और शहर में जो है वो नोएडा, गाजियाबाद समेत दूसरे प्रदेशों से भी जो है वो छात्र पढ़ने आते हैं, और अभी तक क्या था ना, उन्हें निजी लाइब्रेरी में जाना होता था, और कई बार सुविधाएं उस तरह से होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो खैर, अब फिलहाल आपके लिए ये सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जाने वाली है। तो अब ऐसी बातें मत करिएगा कि यहाँ पर इतनी बोरिंग है और ये पात्र नहीं है, हद्दी हो गई है। टेलीफोन डायरेक्टरी को कहानी की किताब बना दिया, ऐसे नहीं चलेगा।

0: नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं छुपी थी, मैं तो यही बैठी हूँ तब से आपके इंतजार में। अब वो क्या है ना, रेडियो पर दिखाई नहीं देता, तो आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलिए अब ये सारी जद्दोजहद के बाद ना मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे पास आपके लिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर है। वो क्या है ना कि ट्रेन की भीड़ के चक्रव्यूह को ना
1: चना जोर गरम
0: यही जो है बस यही तोड़ सकता है। लेकिन ऐसा ना, आपको मेट्रो में आपको इस तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए जो है वो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। जो दिल्ली मेट्रो रेल निगम है ना DMRC, उसने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का जो निर्माण कार्य है उसको शुरू कर दिया है। और इस कॉरिडोर का काम पूरा होने पर सेंट्रल दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हो जाएगी, और इससे लगभग 60,000 कर्मियों को और बाकी के लोगों को लाभ होगा। और इससे सड़कों पर जो वाहन का बोझ है वो कम होकर मध्य दिल्ली में जो आवागमन की जो सुविधा है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ठीक है, और क्या होगा कि केंद्रीय सचिवालय स्टेशन बनेगा येलो वायलेट मैजेंटा लाइन इंटरचेंज, और साथ में लगभग 10 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा जिसमें 9 अंडरग्राउंड स्टेशन जो है वो सेंट्रल विस्टा जोड़ेगा। और फिलहाल मैं क्या करेगी इधर, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि जाने का वक्त हो गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन हाँ, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि ख्याल रखें तो गाना सुनी जाएं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR मेरी यानी शालिनी के साथ। ठीक है जी, चलिए अब मैं तितली बनकर उड़ने वाली हूँ, बन की तितली उड़ रही हूँ। चलिए आप भी तैयार हो जाइए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

ये खूबसूरत सा रेट्रो गीत आपने सुना किशोर दा की आवाज़ में, और इस मूवी का नाम पता क्या है? इस मूवी का नाम है और कौन सस्पेंस। फिलहाल यहाँ कोई सस्पेंस नहीं है, ज्योति के साथ आप सुन रहे हैं दिल के गाने नए पुराने, दिल के तराने गाने नए पुराने, और इन्जॉय करते रहिए FM रेनबो पर।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

दिल के तराने गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं और अब इस घंटे का दूसरा रेट्रो गीत जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ मदन मोहन जी का। जी हाँ, उनकी आज जयंती है और संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने अपनी काफ़ी सारा योगदान दिया। उनकी जो मुख्य फिल्मों की अगर बात करूँ तो अदालत, जेलर, मनमौजी, संजोग और वीर जारा और उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। और उनके कुछ गीत जैसे कि हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ, और वह भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, तो बस यही वाला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एक शब्द आपको कुछ एहसास कराएगा।

आपको भी बहुत कुछ याद आ गया होगा और बहुत खूबसूरत सा गाना ये भी हमने सुना और बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल गए थे सुबह, जैसे हमने मौसम की बात की थी और मौसम विभाग ने कहा था कि दोपहर के बाद जो है वो बारिश होगी, तो उसका तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर अभी फ़िलहाल जो है स्टूडियो की खिड़की से बाहर काफ़ी अच्छी धूप चमक रही है और टेम्परेचर अभी का करंट का दिल्ली NCR का है 36 डिग्री, और मगर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है और टेम्परेचर भी 36 डिग्री तो है मगर 41 डिग्री फील हो रहा है और ह्यूमिडिटी भी है भाई 44 डिग्री। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए और बहुत सारा लिक्विड पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और दिल के तराने गाने नए पुराने सुनते रहिए और कितनी भी धूप हो मगर धूप का गाना अच्छा तो लगता है, इन्जॉय कीजिए।

धूप भी बहुत ज्यादा जरूरी है और धूप अच्छी लगती है, ये धूप में हम अच्छे लगते हैं, बात तो एक ही है, क्योंकि धूप के बिना भी हमारा गुजारा नहीं है। मगर हाँ, जब बहुत तेज धूप है तो बाहर कवर करके निकलें और घर के अंदर ज्यादा रहें जब तक जरूरी ना हो।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, और अब वक्त है इस शो का आखिरी रेट्रो गीत सुनने का, जो आशा दाई की आवाज़ में है। सुनिए और फिर इसके बारे में बात करते हैं।

आज का दिन अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि आज के दिन को हम अच्छा मान रहे हैं, अच्छा बना सकते हैं. अभी तक अच्छा नहीं है तो अपने थॉट्स से उसको अच्छा बना सकते हैं इंटेंशनली. और इसके साथ साथ आज एक ऐसी एक्ट्रेस का बर्थडे है जो आई थिंक सभी के दिलों पे उन्होंने राज किया है. और उनकी कोई फिल्म उठा लो, उनका कोई गाना उठा लो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी को पसंद ना हो, करिश्मा कपूर. तो अभी उन्हीं का गाना सुनेंगे हम दिल के तराने, गाने नए पुराने में. और अपने दिन को यूं ही इंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 दिल के तराने, गाने नए पुराने में, ज्योति आपके साथ है.

आकाशवाणी रेनबो 102.6 के साथ अब ये सफ़र मेरा ख़त्म होने वाला है और मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयर वेव्स पर। और अभी फ़िलहाल आपके साथ 10:05 से होंगी शिवांगी लेकर मैचलेस म्यूज़िक आवर, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 से सृजन आपके साथ होंगी लेकर बॉलीवुड ट्रेल्स, और 12 बजे शिवांगी फिर होंगी आपके साथ वेस्टर्न म्यूज़िक का शो लेकर। बस आप यूँ ही सारा दिन आकाशवाणी रेनबो के साथ बने रहें, म्यूज़िक इन्जॉय करते रहें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लेते रहें। मैं जल्दी हूँ, मिलूंगी आपसे फिर इन्हीं एयरवेज पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा।

मैच एमिरेट्स ओल्ड टेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के 3 मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
1: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
0: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
2: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वॉइस ऑफ किशोर कुमार, आने वाला पल जाने वाला है, फ्रॉम द मूवी गोलमाल. एंड दिस सॉन्ग हैज सच ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन, ग्रेट लिरिक्स, एंड दे जस्ट एक्सप्लेन द जस्ट ऑफ लाइफ टू यू, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटी अनमैच्ड. एंड द सॉन्ग ऑल्सो रिमाइंड्स मी दैट माई टाइम विद यू इज़ रिड्यूसिंग एज वेल, एंड वी शुड बी जम्पिंग टू सम बर्थडे सेलिब्रेशंस फॉर टुडे. इफ योर बर्थडे फॉल्स ऑन 25th ऑफ जून, दैट इज़ टुडे, then let me tell you that you are celebrating your birthday with the legendary singer-songwriter Carly Simon. She is your birthday twin, one of the most influential voices in the music history, especially in the pop music history, and her song You Are So Vain is the one that I'm going to play next. However, it is a cover by the band Smokey. This song won her nominations for Record of the Year, Song of the Year, Best Pop Vocal Performance by a Female in the Grammy Awards. An amazing track it has to be, right? So coming up next for you is You Are So Vain by Smokey, a cover of the original track by Carly Simon. Listen to this one and stay tuned for more information coming right up for you. So keep enjoying the music.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती।

समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देशभर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी

लोकतंत्र का एक काला अध्याय था जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी 3 मैच जीत लिए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप होंगे एकदम फिट एंड फाइन क्योंकि आपका और हमारा साथ बना हुआ है। सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर मैं हाजिर हूं दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन एक बार फिर आपके साथ। कल मिले थे इसी समय, यही वो सतरंगी फ्रिक्वेंसी जिस पर आपको और हमारा मिलना होता है। ये 24 घंटे आपसे फिर मिलने के इंतजार

में बड़ी मुश्किल से हिचकियों के साथ कटे हैं। तो एक बार फिर हूं मैं आपके साथ लेकर बॉलीवुड के गलियारों से कुछ गॉसिप्स, फिल्मों के रिव्यू। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बर्थडे सेलेब्स के साथ। आज 25 जून को कौन कौन से स्टार्स अपना बर्थडे मनाते हैं, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं यहाँ पर करिश्मा कपूर का। जी हाँ, वो दिग्गज अभिनेत्री जिसने 90s के दशक में बॉलीवुड पर ही नहीं लोगों के दिलों पर भी राज किया था। कपूर खानदान की, राज कपूर जी की ये पोती जो कि 60 से अधिक फिल्मों में करियर फिल्में दे चुकी हैं, अपना करियर बना चुकी हैं और कई पुरस्कार भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। डेब्यू फिल्म की बात करें तो 1991 प्रेम कैदी से इन्होंने बॉलीवुड जगत में शुरुआत की और उसके बाद राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, बीबी नंबर वन, जुबैदा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं करीना। जी हाँ, करीना की बड़ी बहन, इस पर भी आती हूँ। करिश्मा की आज हम बात कर रहे हैं जिनका कि आज है बर्थडे। दिल तो पागल है के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिला। राजा हिंदुस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड एक बार फिर मिलता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जुबैदा में अपनी शानदार अदाकारी के लिए इन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा जाता है। तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे करिश्मा, बहुत हम खुश हैं कि आपने इतनी शानदार फिल्मों के साथ अपनी पहचान बनाई और हमें वो फिल्में देखने को मिली। एक और है जो कि आज अपना बर्थडे मनाते हैं, नाम है उनका आफताब शिरदसानी। जी हाँ, ये भी भारतीय सिनेमा जगत के वो अभिनेता हैं जिनकी कुछ फिल्में हमें हंसाती हैं और कुछ डराती भी हैं। 1987 में, 1987 में मिस्टर इंडिया में एज अ चाइल्ड एक्टर सबसे पहले आफ्ताब नजर आते हैं और उसके बाद 1999 में नजर आते हैं मस्त फिल्म के जरिए ये। और इनकी बात करें तो मुंबई से ही इन्होंने पढ़ाई की है। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, जैसे मैंने बताया, मिस्टर इंडिया से शुरुआत की और फिर रोमांटिक ड्रामा फिल्म मस्त में नजर आते हैं। मुख्य फिल्में यानी कुछ इंपॉर्टेंट फिल्मों की बात करें तो कई फिल्में हैं वैसे तो, कसूर, आवारा, पागल दीवाना, हंगामा, मस्ती, ग्रैंड मस्ती और फिर अभी रिसेंटली की भी बात करें तो वेलकम टू दी जंगल में भी आपको आफ्ताब नजर आने वाले हैं। एक और जनाब है जो कि है बेहद खास क्योंकि ये सिर्फ एक्टर ही नहीं, ये है मल्टीपल, जी हाँ, मल्टीपल किरदार निभाते एक्टर, सिंगर, संगीतकार और ये नाम है रघुबीर यादव। जी हाँ, ये जब भी अपने अभिनय को लेकर स्क्रीन पर आते हैं ना तो आपको कुछ खास देखने को मिलता है। मैसी साहिब, पंचायत, पिपली लाइफ जैसी कई फिल्मों में इन्होंने अपनी शानदार प्रदर्शनी दी है, अपने एक्टिंग का जलवा दिखाया है। ये पास आउट हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और इनकी खासियत है कि ये जिस भी किरदार को निभाते हैं ऐसा लगता है कि वो किरदार सिर्फ इन्हीं के लिए बना था। दूरदर्शन के कुछ सीरियल्स की बात करें तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन भूल सकता है इन्हें, वहां लगान के बूढ़ा, पिपली लाइफ के बुधिया, सलाम बॉम्बे और सुई धागा जैसी कई फिल्मों में नजर आए और आवाज दी कई गानों में, महंगाई, डायन, देश मेरा, आ रही। जी हाँ, ये वो गाने हैं जिनमें कि हमें नजर आते हैं रघुवीर और कई नेशनल और इंटरनेशनल खिताब भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो इन सभी सेलेब्स को हम करते हैं बर्थडे विश। और अब इतनी सारी बातों के बाद चलिए ठुमके लगाते हैं और टनाटन नाचते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं दिल्ली की चाशनी कृष्ण रजन आपके साथ।

0: चलती है कनों से पारा।
1: या 9 से 12 वाला प्लान तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, कल फिर फ्राइडे आ रहा है और कुछ प्लान तो करते हैं ना हम। 9 से 12 देख सकते हैं, 12 से 3 भी देख सकते हैं या फिर 3 से 6, ये तो आप पर डिसाइड करता है कि आप अपना वीकेंड कैसे प्लान कर रहे हैं। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। ये गाना सुना आपने, जी हाँ, कौन सी फिल्म, आप सभी पहचान गए, सलमान खान यहाँ टुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म है जुड़वा टंटना टन, उनकी भी बात करेंगे, करिश्मा भी इस फिल्म में नजर आती हैं। और एक और गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूं जिसमें आपको ठुमका लगाना है, लेकिन ठुमका होना चाहिए यूपी वाला।
2: यूपी वाला ठुमका लगाओ।
1: फिल्म है हीरो नंबर 1 सोनू निगम की आवाज में, आइए नाचते हैं यूपी वाले ठुमके पर।
2: नाच

well, देखिए कभी कभी सच में ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन की परिभाषा बन जाते हैं कुछ कलाकार. जब किसी को पहले कहना होता था कि हीरो जैसे लग रहे हो तो कह दिया जाता था बड़े गोविंदा बन रहे हो, या फिर कि अब तो हीरोइन बन के चल रही हो तो कहते थे करिश्मा कपूर लग रही हो. वैसे करिश्मा तो अपने आप में वो थी जिनके लिए लड़कियां सोचती कि हर हस्बैंड जो है उन्हें यही कहे कि भाई आप तो बिल्कुल करिश्मा जैसी लगती हैं. ये चार्म तो ये इस जोड़ी का हमेशा फॉरएवर का ही है और हम इसे कभी भूल ही नहीं सकते. खैर अगली बात पर चलते हैं. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स दिल्ली के चाशनी कोड़े सृजन के साथ. तो अगली खबर गॉसिप गली से आई है. जी हाँ, कयास लगाने शुरू हो जाते हैं क्योंकि फैंस एक्साइटेड रहते हैं अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस को कुछ नई फिल्मों में देखने के लिए. तो अब बात करते हैं रणबीर सिंह की. जी हाँ, उन्हें रिसेंटली किसी के साथ कहीं पर स्पॉट किया गया और इसके बाद से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इधर से उधर फैलने लगा और बातें जो हैं कुछ सुर्खियों से बढ़ती बढ़ती बढ़ती चली गई. अब बात कर रही हूँ रणबीर सिंह की. जी हाँ, धुरंधर के बाद से सुपरस्टार की डिमांड ही कुछ हाई हो चली है. ऐसे में उनकी अगली फिल्म कौन सी होगी, क्या वो खास होगी, क्या होगा, इस बारे में अपडेट को लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी रहती है. तो अब रणबीर नजर आते हैं कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के साथ हंसल मेहता के ऑफिस से निकलते हुए. इसी बीच फैंस अटकलें लगाने लगते हैं कि हो सकता है ये उस नए प्रोजेक्ट की ही तैयारियां हैं. कौन सा है ये प्रोजेक्ट? जी हाँ, अपकमिंग एक फिल्म को लेकर प्रलय जिसका नाम है. तो फैंस एक्साइटेड हैं कि हो सकता है कि प्रलय फिल्म में अब रणबीर नजर आए क्योंकि एक साथ ये सब चीज़ें होना, सर्कमस्टांसेस होना अपने आप में वो बातें पक्की कर देता है. तो चलिए यहाँ पर एक बात पक्की है कि आपको जो है मैं इनकी फिल्म से खलबली सुनाने वाली हूँ. जो है रणबीर के साथ खलबली खलबली करते हुए डांस करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद.

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

0: तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। चलिए खलबली मचाते हैं शिवम पाठक की आवाज, फिल्म पद्मावत और नाच रहे हैं रणबीर सिंह।

में जब कुछ स्टार्स बड़े पर्दे पर या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं तो खलबली सी मच जाती है। इनमें गुड्डू भैया, मुन्ना भैया और कलीन भैया का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन अब ये मिर्जापुर की गद्दी का संग्राम जो है ना, बड़े पर्दे पर फैंस को एक्साइटेड करने के लिए तैयार है। जहाँ ये उन सफल वेब सीरीज में इसका नाम आता है और अब आप इसको देख सकते हैं, मिर्जापुर द मूवी को बड़े पर्दे पर। जी हाँ, मेकर्स ने तैयारी कर ली है सिनेमा घरों में इस फिल्म को उतारने की। मिर्जापुर द मूवी गद्दी गन्स एंड पावर फिल्म का नाम होगा और एक पोस्टर रिलीज किया हुआ है। पोस्टर में बताया गया है कि टीजर कब दर्शकों के सामने आएगा। तो जब ऐसे बैक टू बैक डेट या चीजें हमारे सामने आ रही होती है ना, तो फैंस जो है ना इंतजार में लग जाते हैं। तो इस यहाँ पर जो है ना, अब दिखाई देता है पोस्टर में कि मिर्जापुर की वो गद्दी रखी हुई है सामने और एक दूसरे के खून के प्यासे हमारे ये स्टार्स बंदूक के हाथ में लेके तैयार खड़े हैं। और कैप्शन में लिखा है, गद्दी है तो हम हैं, मिर्जापुर की दुनिया, सत्ता पाने की कोशिश और क्या है मिशन। ये पूरा जो है इस पर कहानी आधारित होगी। और यहाँ पर ये, जी हमें पता है कि फिल्म का रिलीज होने की डेट सामने है, 7-4 सितंबर को फिल्म आने वाली है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि आज ही 12 बजे के आसपास जो है ना, टीजर फिल्म का आउट किया जाएगा और उसका भी फैंस को इंतजार है कि क्या खास होने वाला है। स्टार्स की बात करें तो मिर्जापुर में वो सभी स्टार्स, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, देवेंदु शर्मा, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, सुशांत सिंह, मोहित मलिक जैसे सितारे, गुड्डू भैया, कलिन भैया, इन सबको देखने के लिए अपने हाथों को बहुत चढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए कि कब फिल्म आएगी और हम झटपट देखने पहुंच जाएंगे। लेकिन सारी अपडेट के लिए आपको जरूर हमारे साथ रहना होगा। बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। पीकू फिल्म से ये गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट।

मिर्जापुर की गद्दी के बाद आप अपनी गद्दी पर बैठ जाइए, मजबूती से मोबाइल को हाथ में थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ बॉलीवुड सरताज का आज का सवाल। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। जी हाँ, हमने करिश्मा कपूर की बहुत सारी बातें की, आज की हमारी बर्थडे सेलेब है। और अब एक सवाल, जी हाँ, ऐसे कई जो पॉसिबल आंसर्स हैं कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस के साथ ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन अब मेरा सवाल सुनिए और उसका दीजिए सही जवाब। आज बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज। सवाल है कि आपको मुझे बताना है कि करिश्मा कपूर का निक नेम क्या है। करिश्मा का निक नेम क्या है, जानते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर है 9868107070। एक हिंट दो, चलिए दे ही देती हूँ। इनकी सिस्टर हैं करीना कपूर, इनका निक नेम है बेबू, और कुछ मिलता जुलता निकनेम करिश्मा का भी है। सोच लिया तो झटपट मुझे भेज दीजिए, मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आते हैं कुछ और बॉलीवुड गॉसिप्स पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेस। तो चलिए अगली बात करते हैं एडवांस बुकिंग की कमाई को लेकर। जहां सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए कल तैयार हो रही

यह है वेलकम टू दी जंगल। लगातार इस हफ्ते हमने इस फिल्म से जुड़ी कई बातें कर ली हैं, लेकिन अब देखिए अपने आप में जब फिल्म कमाने लग जाती है आने से पहले, वो भी बात हो ही जानी चाहिए। पेड प्रीव्यूज और एडवांस बुकिंग को मिलाकर, यहाँ पेड प्रीव्यू आज इवनिंग में होने जा रहा है इस फिल्म का, और एडवांस बुकिंग को मिलाकर 1 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने कर दिया है। तो मुझे लगता है स्टार्स के लिए अपने आप में अच्छी सी खुशखबरी हो जाती है। चलिए उछल अबकद सुनते हैं वेलकम वन से। रिक्रिएटेड भी हम सुन चुके हैं ना, इसी वीक बैक टू बैक कई बार बज रहे हैं, लेकिन अब हम सुनते हैं ये ओरिजिनल वन।

बॉलीवुड सरताज का सवाल मिस कर दिया था तो एक बार फिर सुन लीजिए। आपको मुझे बताना है करिश्मा कपूर का निकनेम। सही जवाब व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर है 9868107070।

well, देखिए ये बात सच है कि स्टार्स में कुछ तो खास होता है, इसीलिए तो फैंस उन पर दिल जान से न्योछावर होने को तैयार रहते हैं और उनकी फिल्मों का बेसब्री से करते हैं इंतजार। बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप और गॉसिप्स पर बात हो गई है, कुछ और गॉसिप्स मेरे पास हैं। जी हाँ, कई सूत्र कहते हैं कि सलमान खान भी कुछ खास लेकर आने वाले हैं। ये क्या है, पूरी बात बताती हूँ। एक बड़े बजट की पीरियड फिल्म का जो है प्लॉट बिच चुका है, प्लॉट तैयार हो गया है और सलमान यहाँ पर हो सकता है कि महाभारत के जो एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स कर्ण का किरदार निभाते हुए नजर आए। फिल्म का डायरेक्शन जो है वो करेंगे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें जो सामने आई हैं उसमें ये भी है कि सलमान खान के लुक को लेकर काफ़ी बदलाव किए जाएंगे। जस्ट अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, सूत्रों के हवाले से ये बात। सलमान की थिएटर रिलीज की बात करें तो मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस जो है तैयार है 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में नजर आने के लिए। चितांगदा है इस फिल्म में उनके साथ और इससे पहले हमने 17 अप्रैल को भी उनकी फिल्म देखी बैटल ऑफ गलवान, जिसका बाद में नाम भी बदल दिया गया था। और अभी जो है वो एक और प्रोजेक्ट में बिजी हैं। ये फिल्म बेनाम है, SVC 633। जी हाँ, इसकी शूटिंग चल रही है, इसका डायरेक्शन कर रहे हैं वामशी पेडिलेपी। और इनके अलावा जो है कुछ और फिल्मों पर बात करें तो वही अभी 2026 की बात हो चुकी है और अगले साल ईद 2027 में भी सलमान जो है नयनतारा के साथ, जैसे मैंने बताया ना, बेनाम फिल्म SVC 63 में नजर आएंगे। तो अब देखते हैं कि कर्ण के किरदार में सलमान क्या खास लेकर आते हैं। लेकिन सलमान के ना कुछ गाने, जी हाँ उनकी एक्टिंग तो जबरदस्त है ही, लेकिन उनके कुछ गीत जो वो गाते हैं अपनी आवाज में वो भी दिलों में जगह बना लेते हैं, जैसे कि ये वाला।

गाना एंजॉय कीजिए, साथ साथ मुझे जवाब दीजिए बॉलीवुड सरताज के सवाल का। सवाल है कि करिश्मा कपूर का घर का नाम क्या है, निक नेम क्या है। व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए सही जवाब, नंबर है 9868107070।

पता है, एक और बात आप सभी को बताना चाहती हूँ। बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप। रजनीकांत जिया तलाइवा अपनी 173वीं फिल्म लेकर आ रहे हैं। पोस्टर आउट हुए हैं और फिल्म का नाम है द डेडली डॉक्टर। फर्स्ट लुक में रजनीकांत जिया ये मोस्ट अवेटेड, मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। कुछ पावरफुल मैसेजेस इस पोस्टर में नजर आते हैं और फैंस को इतनी पीढ़ियों से एक साथ जोड़े रखना रजनीकांत सर की जबरदस्त और पर्सनालिटी में वो सभी बातें जो कि बांध लेती हैं। चेहरे की हल्की मुस्कान, खास तरह का चश्मा, ऑपरेशन थिएटर का बैकग्राउंड नजर आता है इस पोस्टर में।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी

0: पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रेजन, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज के बॉलीवुड सरताज। हेलो हेलो हेलो
3: हेलो
2: जी, नमस्कार। Hello? नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना परिचय दें।
3: नमस्ते मैडम, मंजीत कुमार बोल रहा हूँ मैडम, मैं दिल्ली से मैडम
2: जी।
3: जी
2: मंजीत जी, क्या करते हैं आप?
3: मैम मेरा थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का काम है, बैंक का थोड़ा सा वो गाड़ियाँ रिकवरी होती है ना मैम।
2: जी जी, पर इसे थोड़ा सा नहीं, इसे तो बड़ा काम ही कहेंगे। खैर मंजीत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप सही जवाब दीजिए, करिश्मा का निकनेम क्या है?
3: मैम लोलो के, लोलो बोलते हैं मैम ना?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, लोलो कहते हैं, और आपने बिल्कुल सही जवाब एकदम सबसे पहले दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं? जी मंजीत
3: जी मैम, एक्चुअली मुझे लग रहा नहीं मैम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझे कॉल किया मैम, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैम।
2: अरे तो फिर जल्दी से अपने हाथ में एक चूटी काट लीजिए, ये बिल्कुल सच बात है, कोई सपना नहीं है, और बहुत खुश आप हैं और हमें भी बहुत खुशी है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मंजीत।
3: वेलकम मैडम
2: जी, आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच।
3: वेलकम मैडम
2: जी। तो मंजीत से हमारी बात हुई, बने मंजीत आज के हमारे बॉलीवुड सरताज, और बहुत कम कम गैप पर बहुत सारे सही जवाब हमें मिले। अक्षय सचदेव सिंगापुर से हमारे श्रोता, इनका भी सही जवाब मिला। प्रदीप जी का मिला है सही जवाब। विशाल हरियाणा से भेज रहे हैं जवाब, और संतोष जी बिहार से लिखते हैं सही जवाब। हम ये हैं पवन हमारे साथ, सुदर्शन मुखी, अनीता और सिमरन, अनुराग सैनी जी सहारनपुर से, चिराग भी हैं यूपी से हमारे श्रोता, विनोद मेरठ से। संतोष गया बिहार से, जाहिद लिखते हैं सही जवाब, जीएस गिल पटियाला से, नरेंद्र सोनी देशराज भटिंडा से, नीतीश कुमार, संजय खत्री और दिनेश जी भी सही जवाब भेज रहे हैं, विनोद सोनी, बनी, विजय कुमार, सुखलाल पाला कांट से, मोहम्मद फुरकान, अर्चना राजपूत दिल्ली से, रोहित श्रीवास्तव, निकिता और उमेश जी खयाला से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से सही जवाब भेजते हैं, दानिश कतौली, तरुण कोहली मेरठ से, चितरंजन सक्सेना, राकेश बोरा बुराड़ी से, विजय कुमार और सलीम अली शिव भी मेरठ से।

सुनिए अगला प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल। मैं लेकर आऊंगी आपके लिए 1:05 पर मेरा वाला सॉन्ग। आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए

दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें इंडिया पोस्ट।

0: gov.in.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल

0: फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
5: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
6: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
5: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
6: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
7: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस

पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: नमस्कार। एक बार फिर से मैं दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन हूँ आपके साथ लेकर प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। न्यूज ऑन एयर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम आपके नाम, वैसे तो हमारा हर कार्यक्रम आपके नाम है, लेकिन ये

रिक्वेस्ट बेस्ड प्रोग्राम, यानी आप अपने पसंदीदा गानों की रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, ये है 9868107070 9868107070। तो इस नंबर पर भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। और पहली रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है कविता की। कविता उत्तराखंड से हमारी श्रोता है और ये सुनना चाहती हैं गाना ये वाला।

श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म रामलीला से ढोल बाजे नगाड़े संग ढोल। वैसे मैं क्यों गा रही हूँ, आप सुन ही लीजिए। तब तक आप भी अपने रिक्वेस्ट तैयार कीजिए और मुझे भेज दीजिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.66 2.6 की ये फ्रीक्वेंसी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ दिल्ली के चाशनी गुड़े सृजन और आप भी अपने रिक्वेस्ट कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। अगली रिक्वेस्ट मैंने क्यू की है राजकुमार संतानी जी की, जो कि अकोला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता है। ये सुनना चाहते हैं व्हाट इज मोबाइल नंबर, गोविंदा और करिश्मा की धमाकेदार जोड़ी, और ये गाना लीजिए आपके लिए। गाने को अपनी आवाज दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने, फिल्म है हसीना मान जाएगी।
1: हेलो 9821026212 BPL, अरे 9820026235 मैच टच चेक।

लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे तो हमें लगभग सब इम्पोर्टेंट नंबर्स याद हो जाते थे, लेकिन अब क्योंकि किसी का भी नंबर है हमने एक बार मोबाइल में सेव कर लिया, हम समझते हैं अब ये सेफ है हमारे पास, हम उसे याद ही नहीं करते हैं। अपना नंबर और शायद किसी स्पेशल वन का नंबर हम फिर भी याद करते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो ऐसे में पूछना तो बनता है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूं आपके साथ दिल्ली के चाशनी गुरी सृजन। आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूं और उसके बाद फिर वापस आती हूं आप सभी के साथ।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को

0: डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। अगली रिक्वेस्ट भेजी है गुड्डू धाकर जी ने, मध्य प्रदेश उज्जैन से हमारे ये श्रोता हैं। कह रहे हैं बारिश हो गई है हमारे यहाँ शुरू और कोई बारिश का गाना। अभी खेत में बोनी चल रही है, बुआई चल रही है मक्का सोयाबीन और मूंगफली की, तो कोई गाना ऐसा हो जाए जिसमें बारिश की बूंदे आ रही हों। तो लीजिए।

राजेश कुमार चौहान जी जालंधर से हमारे श्रोता, सावन आने वाला है और कहीं कहीं आ भी गया है, तो सावन का गीत तो लीजिए, आपके लिए भी है ये गाना।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, कमलेश ने उत्तम नगर से। ये हमारा श्रोता परिवार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं और 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। और इस गाने की रिक्वेस्ट, जैसे मैंने बताया, ये हमारा खोरवाल परिवार है, बोधराज, कमला, गीतिका, भानु, उत्तम नगर दिल्ली से हमारे श्रोता। आप भी अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। सुनते रहिए प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम सुन रही हैं आप मेरा वाला सॉन्ग। और एक और श्रोता परिवार जो हमसे जुड़ा हुआ है ये है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति, किशु, ये सभी रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे श्रोता हैं। लीजिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, और लीजिए एक और फरमाइश पूरी करते हैं। एक और सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे पास आई है सूरज कुमार शाह की, जो कि घाघरा बाजार डिस्ट्रिक्ट उदगलगुरी असम से हमारे श्रोता हैं और ये सुनना चाहते हैं गाना। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, तुम पर हम है अटके यारा।
1: दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके।
0: इसी गाने की रिक्वेस्ट करते हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।

कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी और मैं हूं दिल्ली के चाशनी कुरेश रचन आपके साथ। दो सॉन्ग रिक्वेस्ट मैंने नेक्स्ट क्यू कर ली है। पहली है हमारे पास आई पुनीत रावत की ऋषिकेश से, ये सुनना चाहते हैं सुहाग फिल्म का गाना गुर गुर मुखड़े पे काला काला चश्मा। एक और रिक्वेस्ट मैंने क्यू की है, ये है फिल्म पीके से और चार कदम बस। ठीक है, ये गाना हमने भेजा है, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है सुरजीत ने, जो कि ग्रेटर नोएडा से हमारे श्रोता हैं। तो बैक टू बैक इन दोनों सॉन्ग्स को मैं प्ले करूंगी, लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा ब्रेक, मैं यूं गई और यूं आई।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी करे सृजन। और इस आर का ये है लास्ट सॉन्ग, रिक्वेस्ट भेजी है हमें परमवीर कुमार ने, जो कि बिहार मुंगेर जिला से हमारे श्रोता हैं। तो श्रोता दोस्त, आप इस गाने को सुनिए और मैं बता दूं कि अगला प्रोग्राम कौन सा है। तो आप अगला प्रोग्राम आशियाना सुनेंगे शाहिद के साथ, और यहाँ विषय है फिल्मी दुनिया के कुछ अनजाने किस्से। अतिथि हमारे साथ है गौरव द्विवेदी, जो कि फिल्म पॉलिसी निर्माता और फिल्मों के गहरे जानकार हैं। तो जरूर सुनिएगा हमारा अगला प्रोग्राम, और उसके बाद रेडियो डॉक्टर समय रहेगा 3 से 4 का। विषय है स्पेशल ऑन वर्ल्ड विटिल्गो डे। एक्सपर्ट डॉक्टर अनन्या शर्मा, डर्माटोलॉजिस्ट एम्स नई दिल्ली से हमारे साथ होंगी इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने दोस्त दिल्ली की चाशनी कुड़े सृजन को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम आशियाना यहाँ पर हो गया है शुरू और आपके साथ हूँ मैं, मेरा नाम है शाहिद और आज का प्रोग्राम बहुत ही है खास। आज का प्रोग्राम खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जो हमें बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ अनसुने अनजाने किस्से कहां के फिल्मी दुनिया के। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान आशियाना के गौरव द्विवेदी जी से जो हैं इंडियन पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट फिल्म पॉलिसीज के प्राइमरी आर्किटेक्ट श्री गौरव द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बातें कहने का मौका दिया।
0: जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद, हम आपका करना चाहेंगे, आपने समय निकाला और इस तरह की पर्सनैलिटीज जो आती है हमारे

0: हमारे शो में, तो हमारे लिसनर्स भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे वो फिल्मी दुनिया से बात करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है फिल्म पर्सनालिटीज के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंडियन पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर भी हैं, तो वो जो कहानियां हम आपसे जानना चाहते हैं वो कितनी इंटरेस्टिंग होंगी, वो आपसे बातचीत हम शुरू करेंगे तो पता लगेगा। क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स से, एक्ट्रेसेस से, फिल्म निर्माताओं से और सभी लोगों से, जिसमें शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन साहब से लेकर के शैलेंद्र साहिर जैसे लिरिसिस्ट मशहूर, उसके अलावा मनोज कुमार जी और साथ ही यश चोपड़ा जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर। तो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे सर, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका ये जो सफर रहा है एज एन इंडियन पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर, मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, और साथ ही आपने जो स्टेट्स के लिए काम किया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और स्टेट फिल्म पॉलिसीज के भी आप जो है मेजर, बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट रहे हैं, उसके निर्माता, उसके बारे में बताइए
1: जी। बस मेरा बैकग्राउंड है कि मैं लखनऊ से मैं बिलोंग करता हूँ
0: जी।
1: 10-12 साल मैंने जर्नलिज्म में गुजारे, जी न्यूज, आज तक वगैरह में काम किया। सिनेमा का शौक बचपन से था, फिर उसके बाद मैंने एक सबैटिकल लिया तो मैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी का CEO भी रहा।
0: अच्छा।
1: कुछ टाइम तो उससे मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी और बढ़ गई सिनेमा को जानने। फिर जब सरकार की तरफ रुख किया तो मुझे उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद को उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो वहाँ हम 2015 में उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म पॉलिसी जो बहुत लैंडमार्क मानी जाती है
0: जी,
1: जहाँ सब्सिडी देना और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और स्टेट को जो उस तरीके से ब्रांड करना,
0: यानी कि
1: पहली जी,
0: हाँ, यानी कि स्टेट को जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनको इनवाइट किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े,
1: स्टेट में जो शूट करें हमारे लोकल एक्टर्स उनको एम्प्लॉय करें, और हमारे यहाँ जब शूट करें तो जो खर्चा होता है रहने में, खाने में, होटल में, गाड़ी में, उससे GST का स्टेट फायदा होता है। प्लस जो शूट हो रहा है जब आप फिल्म देखते हैं, OTT पे देखते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको लखनऊ या उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जो है शहर या वहाँ के ब्यूटी स्पॉट देखते हैं
0: जी, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है,
1: तो सिलसिला बढ़ता रहा। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में काम करने का मौका मिला, वहाँ की फिल्म पॉलिसी बनाई।
0: अच्छा।
1: फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में 5 साल रहा मैं सलाहकार वहाँ पे सरकार का, तो वहाँ भी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी का जो है काफी चैलेंजिंग था
0: जी,
1: क्योंकि छत्तीसगढ़ को समय लेके परसेप्शन जो आज तो अमित शाह जी ने नक्सल मुक्त कर दिया
0: जी जी जी
1: मंत्री जी ने, बट उस समय लगता था कि आप रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो कोई उठा के आपको नक्सल ले जाएगा तो बड़ा चैलेंज था, बट बखूबी हम लोगों ने उस चैलेंज को जो है कबूल किया
0: जी,
1: और जो काम किया तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए वहाँ शूट किया। अक्षय कुमार तक आके अपनी फिल्म सिर्फ वगैरह शूट करके गए वहाँ पे छत्तीसगढ़।
0: अच्छा।
1: बहुत अच्छा इंप्रेशन और अच्छी यादें लेके गए, तो परसेप्शन टोटली
0: चेंज हुआ,
1: इट्स अ फिल्म फ्रेंडली स्टेट, इट्स नॉट
0: नक्सल। और फिर जैसे बताया कि उसमें फिर जो युवा है उनको काम भी मिला, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ,
1: एम्प्लॉयमेंट जनरेट हमारे लोकल, क्योंकि वहाँ पे हबीब तनवीर की जो है और जो है विनोद शुक्ला जी की जो है जन्मभूमि कर्मभूमि।
0: अच्छा।
1: है रायपुर, तो जो है आर्ट कल्चर और वहाँ पे कलाकार सब अच्छे थे, भाषा चूंकि हिंदी है
0: बिल्कुल,
1: तो वो जो बॉलीवुड के लिए जो एक प्राइमरी वो होता है, तो उस तरीके से था और काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब तो अच्छा माहौल बन गया, अभी ग्राम चिकित्सालय करके अमेजोन पे जो सीजन 2 आया, वेब सीरीज है, TVF ने बनाया, उसका पहला सीजन मेरे दौरान वहाँ शूट हुआ था, और अभी कल ही जो है वो रिलीज हुआ उसका दूसरा सीजन।
0: ओके।
1: तो बहुत अच्छी मतलब ओवरऑल इट हैज बीन अ वेरी गुड एंड फुलफिलिंग एक्सपीरियंस
0: जी,
1: एंड आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला काम करने का, और आई कुड रीच आउट टू पीपल एंड आई कुड डिलीवर टू माई बेस्ट।
0: बिल्कुल सर, क्या बात है, जैसे ये तो आपने बताया अपनी जो आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है ऑफिशियल एक्सपीरियंस, जैसे कि आपका फिल्म टूरिज्म पॉलिसी प्रोड्यूसर आप रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा गहरी नॉलेज और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं।
1: इसी दौरान काफी लोग जब जर्नलिस्ट थे तब जो रापता हुआ कई लोगों से, फिर
0: जी
1: कई लोगों से दोस्ती में तब्दील हो गया
0: जी,
1: जब इन लोगों के साथ बैठो फिल्म शूट करने आते हैं तो इनके किस्से कहानियां
0: जी
1: गुजारते हैं, तो बहुत सारी चीजें अच्छी जो है, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो अपने
0: जी
1: अच्छी
0: चीज। तो सर एक चीज बताइए गौरव जी, कि ये जो फिल्म के लोग होते हैं, फिल्म एक्टर, फिल्म हीरो, हीरोइंस, सर ये असल जिंदगी में ऐसे ही होते हैं जैसे फिल्मों में देखते हैं, या आपने क्या इनके साथ रह करके एक्सपीरियंस किया, आपका इंटरेक्शन रहा इतना?
1: नहीं, ये परसेप्शन की बात है, जैसे मतलब सलमान खान को बहुत लोग जो बिल्कुल लगता है उनका परसेप्शन अलग है
0: जी,
1: बट एंड ऑफ द डे इज अ वेरी शार्प पर्सन, आप कमरे में घुसेंगे वो आपको जो स्कैन कर लेगा, और मैंने तो उनके साथ मतलब मेरा सौभाग्य है कि उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान और मैंने बहुत समय गुजारा, तो ही इज डिस्कस नेहरू एंड जिन्ना ऑल्सो विद मी।
0: अच्छा।
1: तो वो मतलब ऐसा नहीं उसका जो परसेप्शन है
0: जी, जी,
1: जो
0: जी
1: है
0: बहुत ही

0: लड़कपन
1: जी
0: वाला और उस तरीके का उनका जो दिखना
1: जी
0: है, तो
1: जी
0: वैसा नहीं। शाहरुख खान वैसे जो है बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल चुकी हैं हंसराज कॉलेज के, उसके बाद इंग्लिश उनकी बहुत माशाल। अमिताभ बच्चन इज़ वेरी इम्पेकेबल, उनकी जो है चाहे
1: जी
0: लिखाई हो, चाहे
1: जी
0: भाषा पे पकड़ो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो। उसके अलावा दूसरा, मैंने, मेरा एक दोस्त था बचपन का, उनके फादर दिलीप कुमार बहुत अच्छे दोस्त थे।
1: अच्छा
0: तो उस जमाने में तो हम लोग लखनऊ में जब थे, बच्चे थे, पढ़ते
1: जी
0: होते थे,
1: जी
0: तो दिलीप साहब उनको चिट्ठियां लिखते थे। मैंने दिलीप साहब की चिट्ठियां पढ़ी हैं, मतलब व्हाट कमांड ओवर इंग्लिश, सच
1: क्या
0: एन
1: बात है
0: इम्पेकेबल इंग्लिश की जो बात करते हैं ना,
1: जी
0: व्यक्ति
1: जी जी
0: सोचे कि
1: बहुत
0: आर्मी
1: ही
0: आर्मी कैंटीन में फ्रूट कंपनी कैंटीन का एक मैनेजर हो के जो है, बट ये कि उनका जो एक्यूमेन था पढ़ाई, चाहे वो
1: अच्छा
0: उनकी उर्दू हो, चाहे आप जो उनकी शाइस्तगी हिंदी में हो, चाहे जो डायलॉग डिलीवरी में हो और अंग्रेजी में, तो मतलब दे आर रेयर पीपल, दे एक्चुअली वर्क हार्ड। तो ऐसे ही है, जब आप वेन यू नो पीपल इन पर्सन और जब समय
1: तब पता
0: गुजारते, तब
1: लगता है,
0: आपको उनके जो है शख्सियत के दूसरे पहलू जो है पता चलते
1: पता
0: हैं कि
1: चलते
0: भाई
1: हैं
0: कौन कैसा है क्या है। वरना तो आप जो पढ़े पे लिखते हैं तो आप दिमाग में वही जो है कॉन्सेप्शन लेके जो है जीते हैं कि
1: जी।
0: जो ये
1: गौरव
0: ऐसे
1: जी, यहाँ पर
0: हैं।
1: मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आपने मिसाल दी कि दिलीप
0: जी
1: कुमार का जो वो लिखने का अंदाज, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनका डिक्शन और उनका
0: जी
1: प्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, आपका भी इतना बढ़िया है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना आपके पकड़, इतनी अच्छी लैंग्वेज पर आपकी जो कमांड
0: जी
1: है
0: नसीब
1: उर्दू,
0: हुआ,
1: हिंदी
0: बहुत
1: और अंग्रेजी के लिए,
0: शुक्रिया। हाँ,
1: तो
0: मैं लखनऊ
1: दैट
0: से हूँ तो
1: इज
0: इसलिए जो है थोड़ा
1: जी
0: गजल वजल का भी शौक है उर्दू
1: जी
0: का, मेरे दोस्त का मुस्लिम है, तो कोशिश रहती है कि हाँ जो भाषा है उसकी मर्यादा और उसकी जो एक लैंग्वेज का डिसिप्लिन
1: जी
0: होता है वो,
1: उसको मेंटेन रखा
0: चाहे
1: जाए।
0: हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे
1: बिल्कुल
0: उर्दू हो या कोई और भी भाषा हो,
1: बिल्कुल
0: उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ऑथेंटिसिटी और ऑर्गेनिक जो है वो बरकरार रहना चाहिए।
1: जी। गौरव जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपसे बातें कर रहे हैं, और हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हम पहले शाहरुख के बारे में आपसे पूछेंगे।
0: बिल्कुल
1: शाहरुख के साथ
0: चले।
1: आपका जो इंटरेक्शन रहा, मिलना जुलना रहा, आना जाना रहा उनके घर पर, तो कैसे आप देखते हैं शाहरुख के साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद आता हो?
0: देखिए, जमीन से उठा हुआ आदमी है, दूसरा बिना किसी बैकग्राउंड के दिल्ली से गया एक लड़का, जो यहाँ पे थिएटर कर रहा था,
1: जी
0: फौजी सीरियल किया था, दूसरा केवल किया था, और मुंबई में जाके अपना मकाम बनाना और इस लेवल पे सुपरस्टार
1: इस
0: बनना
1: लेवल पर
0: आसान नहीं है। लोग कहते हैं किस्मत, बट किस्मत से ज्यादा इस इंडस्ट्री में देखता हूँ कि मेहनत बहुत है,
1: बिल्कुल
0: बहुत मैटर करती है। मतलब आप ये, इट्स नॉट अ कैजुअल जॉब
1: एग्जैक्टली
0: आपको। मैं तो सलमान खान यूपी में जब मैं था उपाध्यक्ष, तो ये लाए
1: जी
0: थे शूट करने सुल्तान के, मुजफ्फरनगर में किया था।
1: अच्छा
0: अब गर्मी में शूट किया उन्होंने, मैं देख रहा हूँ मतलब रीटेक हो रहे हैं, लेकिन धूप में खड़े हैं, लाइटें लगी हुई हैं, 200-250 का क्राउड है, सारे जो क्रू है, लेकिन उफ नहीं किया। सेम शाहरुख के मैं ओम शांति ओम के सेट पे गया, मैंने एक बार
1: अच्छा
0: जाके, फराह खान ने मुझे बुलाया था, तो उनका भी एक शॉट था। अब वो 10 टेक हुए उनके, लेकिन मैं देख
1: दस
0: रहा था
1: टेक
0: उस 10 टेक में जो एनर्जी लेवल यहाँ पे था उनका, 10 पे,
1: जी
0: वो 10 नंबर पे रहा, वो गिर के कभी जो है 6 या 7 या 8 पे नहीं आया। तो ही सो एनर्जेटिक
1: कंसिस्टेंट
0: एंड, मतलब
1: जी
0: वही आपकी मेहनत। अमिताभ बच्चन के भी डिसिप्लिन की जो बात की जाती है कि
1: जी
0: मतलब उनको आप टाइम दीजिएगा कॉल टाइम 6 बजे, तो वो पौने 6 बजे मेकअप वेकअप लगा के आके सेट पे
1: रेडी
0: पूरे
1: मिलेंगे।
0: रेडी आएंगे।
1: अच्छा
0: तो ये कमिटमेंट और डेडिकेशन किसी भी काम में, कोई भी फील्ड हो, जब तक
1: जी
0: आप में वो जो पैशन नहीं होगा ना, और ये
1: पैशन
0: तो आर्ट का है,
1: डेडिकेशन
0: तो आप जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते
1: जी
0: हैं।
1: सर,
0: बाकी
1: हम
0: किस्मत जो,
1: जनरली हम सुनते थे, मैगजीन से पढ़ा करते थे, आजकल तो ऑडियो विजुअल के मीडियम से हम जानते हैं कि बहुत टैंट्रम्स होते हैं हीरो हीरोइंस के, और बहुत
0: अब
1: ज्यादा
0: तो बहुत, मैं भी बहुत किस्से, अब नए जो
1: जी
0: जनरेशन है सुनता हूँ कि वो 4 वैनिटी वैन चाहिए,
1: जी
0: जिसमें एक जिम होगा और एक इसमें उनका अपना होगा, फिर साथ में एक डायटिशियन चलेगा, फिर
1: हाँ हाँ
0: सोशल
1: हाँ
0: मीडिया
1: उनके
0: मैनेजर,
1: असिस्टेंट्स की लाखों
0: आठ
1: खर्चे होते
0: आठ
1: हैं
0: नौ नौ जो है स्टाफ चलता है। ये मतलब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई नो इन
1: जी
0: पर्सन ये चीजें होने लगी। पहले लोग था कि प्रोड्यूसर को, चाहे धर्मेंद्र जी हो या पुराने एक्टर, तो प्रोड्यूसर का दर्द समझते, उन पैसा है तो चलो, नहीं ये फीस नहीं ली, फिल्म चल जाएगी तब कर लेते
1: तब
0: हैं,
1: कर लेंगे
0: बनाओ, बिकॉज पैशन
1: जी
0: वो सिनेमा, वो
1: एग्जैक्टली
0: करना है पहले चीजें।
1: जी पैसा बाद
0: तो
1: में
0: नाउ कमिंग बैक टू शाहरुख, जो किस्सा
1: जी
0: मैं बताना चाह रहा था कि उनका एक फिलानथ्रोपी वाला जो है, मैं जानता हूँ, उन्होंने एक बार, मैं मन्नत उनके घर गया था तब बातचीत में बताया था
1: जी
0: कि कहले, मैं, शाहरुख बता रहे थे कि अपने घर मन्नत जब वो जा रहे होते, तो रास्ते में वहीं पे जूम में उनके घर के पास बैंड स्टैंड के पास एक लड़का था जो हैंडीकैप था, और वो हैंड साइकिल पे दिखता था, हाथ वहाँ हिलाता, तो ये भी उसको वेव करते थे। तो
1: जी
0: मतलब रोज आने जाने में एक तरीके से कह दीजिए कि जो है जान पहचान
1: जान
0: सी
1: पहचान
0: हो
1: सी हो
0: गई
1: गई
0: थी वो उसकी।
1: जी जी
0: एक दिन करेंगे हमने देखा कि वो जमीन पे पड़ा हुआ और उसकी वो साइकिल रिक्शा नहीं, तो मैंने गाड़ी रोक के पूछा क्या हुआ, तो बोला वो कुछ लड़के थे, उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा रिक्शा छीन के ले गए। तो उनका, अच्छा ठीक है, तुम देखो इन सब चीजों मत पड़ना लड़ाई झगड़े में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखो, कुछ अच्छा काम करो, मैं तुमको पैसे देता हूँ, माने तुम नया रिक्शा खरीद लो। तो चार उंगलियां गेव हिम सम मनी जो भी था, एंड वो नया ले अगले दिन देखा ही वॉज हैप्पी विद हिज न्यू दिस थिंग एंड ही वॉज सेलिंग समथिंग।

0: उसमें जो कुछ बेच रहे
1: ओके
0: हैं ठीक। खैर एक महीने बाद देखा मैं फिर उधर से निकला था, अब तो देखा फिर वो सड़क पे जमीन पे आ गया और अजीब सा मतलब दुखी उदास। तो मैंने फिर पूछा कि ले सर फिर वही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ इस तरीके का। और तो कहने अरे कहने अरे क्यों हो रहा तुम्हारे साथ अजीब, कहने तुम उन लोगों से दूर रहो तुम अलग रहो। और शाहरुख कहने के मैंने दोबारा उसको फिर हेल्प करी और उसको कहा तुम नया लो, फिर उसने नया ले लिया, देखते रहे।
1: जी,
0: फिर 4-6 महीने गुजर गए, देखा फिर देखा कि वो रिक्शा
1: फिर
0: गायब
1: वही
0: हो गया।
1: सिचुएशन।
0: तो उस दिन कहने मेरे साथ कोइंसिडेंटली जो है चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे जोहान पांडे के फादर वो साथ में थे, इनके
1: अच्छा
0: परिचित थे। तो कहने यार इसको मैंने रिक्शा दिलाया दो बार अभी। फिर कहने अरे शाहरुख भाई आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो गलत हरकतों में लगा, आप देते ये जाके बेच आता है और फिर जो है वो
1: वही पहुंच जाता है
0: उसी
1: फिर आपसे।
0: चीज़ों का जो है फिर जो आपसे जो उस तरीके तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो कहने मुझे एक पल बुरा लगा कि कोई मुझे जो बेवकूफ़ बना रहा है, मैं अपने को बहुत शार्प होशियार समझता था आदमी की पहचान कर। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा दुख उसे उस बात का हुआ कि आज तुमको एक मौका था, मैंने किया या किसी और मेरी जगह होता हेल्प करता तुम्हारी सेल्फ हेल्प, तुम एक ज़िंदगी अच्छी बेहतर बना सकते
1: बना सकते
0: जिसमें
1: थे।
0: कहाँ तुम गर्त में ही जाओगे। तो कहने वो मुझे बहुत अफसोस की बात लगी कि जो है मतलब मेरी मदद का फ़ायदा नहीं ले पाया,
1: जी
0: मैं बेवकूफ़ बना तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कुछ पैसों से,
1: बिल्कुल,
0: मैं
1: लेकिन
0: तो
1: असल
0: दूसरे। लेकिन
1: नुकसान
0: हाँ
1: उसका
0: जो
1: हुआ।
0: मैं नहीं नहीं
1: लेकिन उनके और भी आपने जैसे बताया कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो
0: दूसरा
1: मदद
0: एक और
1: करते थे।
0: उन्होंने एक्चुअली क्या है ही हैड लॉस्ट हिज फादर अर्ली, फिर उनकी मदर बहुत बीमार थी, उनको शायद कैंसर वगैरह
1: जी
0: था दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने मतलब उस दर्द को समझाया कि कई बार ताकि मेरी मदर के लिए हमको उनके इंजेक्शंस वगैरह काफ़ी महंगे लगते थे और उसमें हमें अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा था उस समय। तो कहने फिर मैं तो वो मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं मेरे वो दर्द था,
1: दर्द
0: मैं
1: महसूस करते थे वो
0: समझता था
1: दूसरों का।
0: कि हाँ। तो
1: जी
0: कहने फिर जब मैं बॉम्बे आ गया मदर की डेथ के बाद और सक्सेसफुल हो गया तो मेरे था कि चलो अगर किसी की मैं मदद कर सकूँ, मेरी
1: जी
0: ज़िंदगी बचा सकूँ इस फाइनेंशियल में तो मैं उस पोजिशन पे हूँ। तो कहने एक दिन मैं सेट पे था किसी, तो मैं अखबार पढ़ रहा था तो इस अखबार में किसी छोटे बच्चे की कोई अजीब सी बीमारी थी जो बहुत क्रिटिकल था, वो छपी थी। तो मैंने अपने मैनेजर कहा कि भाई जस्ट रीच आउट टू देम, वी शुड हेल्प हिम, हमको उसकी जान बचानी कैसे भी करके। तो कहने अब मैनेजर ने उनको डॉक्टर उनको हॉस्पिटल वही रिपोर्टर के थ्रू जो खबर छपी थी कांटेक्ट करने की कोशिश कहने, लेकिन उसके फादर जो उनको लगा कि मेरे साथ कोई मजाक प्रैंक कर रहा है, शाहरुख खान के ऐसे फोन कैसे आ सकता है वो तो हमें जानता ही नहीं, मतलब मिडिल क्लास ऐसे बेचारा आदमी
1: बिल्कुल
0: था
1: बिल्कुल
0: अपने,
1: कोई
0: कहने उस पूरे चक्कर में 1 हफ्ता निकल गया टू रीच आउट टू हिम।
1: अच्छा
0: पहले एक हफ्ता जब मेरा उससे कनेक्ट हुआ उसने मुझे डॉक्टर से मिलवाया तो डॉक्टर सेड कि शाहरुख साहब हमको देर हो गई, अगर हफ्ते 10 दिन पहले जो है ये मदद आ जाती है आपकी तरफ से वी कुड हैव सेव द चाइल्ड। तो कहने आई फेल्ट सो बैड कि मतलब मुझे अपनी स्टारडम की ये कीमत चुकानी पड़ रही है कि मैं स्टारडम में आज मैं मदद करने की स्थिति हूँ बट आज मैं अपने स्टारडम की वजह से वो आदमी मुझ पर भरोसा नहीं
1: भरोसा
0: कर
1: ही
0: रहा,
1: नहीं
0: उससे
1: कर
0: लग रहा था कोई मजाक कर रहा और मैं उस
1: रहा।
0: बच्चे को बचा नहीं पाया। तो कहने मुझे बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का क्योंकि वो दर्द मैं जानता था अपने को बिछड़ने का, लेकिन कहें दैट इज़ लाइफ मतलब वो बट
1: बिल्कुल
0: ये कि बट दैट इज़ नॉट डिटर्ड मी। तो मैं अब कोशिश ज़्यादा ये करूँगा कि मैं जल्दी पहुँच
1: हाँ,
0: जाऊँ लोगों की
1: टाइमली
0: मदद
1: लोगों को
0: करने में।
1: मदद कर सकूं।
0: तो
1: जी
0: ये उनका शख्सियत का पर्सनालिटी का एक हिस्सा जो बहुत
1: जी
0: शायद मैं प्रिवी था उन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो
1: हाँ, आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं।
0: जी।
1: फिल्म एंड टूरिज्म पॉलिसी प्रोड्यूसर और बहुत डीप नॉलेज रखने वाले फिल्म इंडस्ट्री की बॉलीवुड की गौरव द्विवेदी हैं हमारे साथ आज के आशियाना में हमारे स्पेशल गेस्ट। और सर हमने बात की शाहरुख के बारे में, आपने बताया इतनी इंटरेस्टिंग बातें, हम आगे आपसे जानेंगे अक्षय अमिताभ साहब के बारे में भी और कुछ किस्से और भी आपने जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो भी हम जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। तो फिलहाल शाहरुख की ही इस फिल्म से जिसे आपने अभी बात करी तो आज जो है वही हमारा अपना है, आने वाला कल तो एक सपना है। शाहरुख की फिल्म से आपका फेवरेट ये गाना
2: कभी

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने ऋण बवर प्रोग्राम आशियाना चल रहा है, आप हैं शाहिद के साथ। और आज के आशियाना में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्री गौरव द्विवेदी, जो हैं फिल्म एंड टूरिज्म पॉलिसी एडवाइजर और बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की। गौरव जी, एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर हमारे प्रोग्राम आशियाना में।
1: शुक्रिया।
0: और हम बात कर रहे थे शाहरुख के बारे में, आपने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं और जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी जिंदगी को आपने बहुत करीब से देखा है। आपने बताया आप शाहरुख के बाद सलमान के बाद, हम जानना चाहेंगे अमिताभ साहब का भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है और फिर साहिर साहब का और जावेद अख्तर का भी, तो वो जरा बताइए।
1: जी, अमिताभ जी का किस्सा ये कि उनको पहली फिल्म मिली थी साथ हिंदुस्तानी, जो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने डायरेक्ट की थी,
0: वो शायद डेब्यू फिल्म थी उनकी।
1: पहली फिल्म थी तो काफी अरसा गुजर गया, अमिताभ बड़े स्टार बन गए, सुपरस्टार। तो एक दिन को खबर मिली कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की जो तबीयत जो नासाज है, ठीक नहीं है, ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच। तो उन्होंने अपने भाई अजिताभ को, जो बंटी जिनका नाम था, उनको बुलाया कि तुम जाओ ख्वाजा साहब से मिलो और हमको उनकी मदद करनी, उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट अपने तरीके से, लेकिन बहुत खुददार है तो ऐसा नहीं लगे कि हम लोग जो है कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो खैर बंटी जो उनके घर गए, जो मुंबई में JW मैरियट होटल के सामने जुहू में उनका घर था पुराना, और बात की कहने लगे तो मैं पूछा ख्वाजा साहब ने, अरे बंटी कैसे आना हो, तो बोले नहीं सब इधर से गुजर रहा था, तो मैंने कहा आपकी जो है

0: खैर मकदम करते चलो पूछते चलो कि जो क्या है। तो बोला नहीं बस थोड़ी तबीयत तबीयत ठीक है। तो बातचीत हुई और बंटी जो अमिताभ बच्चन ने चुपचाप एक पैकेट जो है वो छोड़ के चले आए। थोड़ी देर बाद अमिताभ जी के पास फ़ोन आया ख्वाजा साहब का, कहले भाई बंटी आया था अमिताभ और अपना कुछ सामान भूल गया है। अमिताभ जी को बहुत वो लगा, कहेंगे कि नहीं देखिए ख्वाजा साहब आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी सेहत बहुत ज़्यादा है, आपकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपकी खुददारी को जो है किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करूँ, तो आप ये उधार मान लीजिए जो भी मान लीजिए, आप इलाज कराइए आप स्वस्थ हो जाइए, वो हमारे जाम मैं आपसे फिर बाद में ले लूँगा। तो इस तरीके से उन्होंने मदद करने की जो कोशिश करी। तो उनका भी बड़प्पन था अमिताभ बच्चन का, उन्होंने भूले नहीं अपने
1: भूले नहीं। और ऐसी अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो साहिर लुधियानवी जो बहुत बड़े पोएट थे, लिरिसिस्ट,
0: साहिर का तो मतलब कमाल के थे। मुझे लगता है कि जो है फिल्म लिरिसिस्ट के तौर पे मतलब साहिर लुधियानवी से बड़ा कोई शख्सियत हुआ नहीं। उसके बाद नंबर दो अगर किसी तो मजरू सुल्तान थे।
1: अच्छा।
0: जो होने चाहिए। तो साहिर साहब का था कि बहुत मस्त मौला फक्का टाइप के थे और लोगों की मदद अच्छा। बहुत करते थे। तो उस समय जावेद अख्तर और बहुत सारे नए नए सिंगर जो है ना जो लिरिसिस्ट और
1: अच्छा ये तो नए नए आ रहे होंगे इंडस्ट्री में।
0: हाँ इंडस्ट्री में तब स्ट्रगल कर रहे थे। तो साहिर साहब रहते थे तो वो चले कभी कोई मिलता था पूछ लेते थे क्या किसी की जेब में पैसे डाल दिए कि अच्छा। चलो अच्छा लिखो और जो है चिंता मत करना और जो है पैसे की नहीं करते रहो बढ़िया काम करते रहो। तो ऐसे उन्होंने जावेद अख्तर को एक बार कुछ मैंने मांगा, उन्होंने 200 रुपये उनको दिए थे। अब बात आई गई हो गई, फिर एक दिन खबर आई कि जो है साहिर साहब की डेथ हो गई
1: अच्छा।
0: है, वो नहीं रहे। और तो जावेद अख्तर जो है उनके पहुंचे वहां पे जहां उनका क्रिमेशन हो रहा था कब्रिस्तान में
1: अच्छा।
0: और उनके मन में मलाल रह गया कि उन्होंने दिया था मैं भी सक्सेसफुल हो गया लेकिन वो पैसे लौटा नहीं पाए। एक दो बार उन्होंने बात करी उनका अच्छा ले लेंगे
1: अच्छा।
0: जैसे भी वो पहुंचे कब्रिस्तान में मट्टी वट्टी उन्होंने गम की
1: तो
0: देखा एकदम से साहिर साहब के एक और दोस्त थे वो बहुत बौखलाए उसे दोस्त कह रहे यार वो देखा कि ऐसे कपड़ों में नाइट सूट में आ गए थे और वही सब सारा जो क्रियाकर्म वगैरह करा रहे थे। तो जावेद से बोला यार सुनो कुछ पैसे रखे हो तो कह रहे क्या हुआ कह रहे वो जो कब्र बना रहे थे ना उसको देने हैं पैसे साहिर साहब मैं जल्दी में आ गया तो मेरे पास तो बोले कितने पैसे कह रहे 200 रुपये
1: अच्छा।
0: तो 200 रुपए जावेद साहब ने जो वापस किया तो लगा कि वो दैट सर्कल हैड कम टू अ फुल एंड।
1: एग्जैक्टली
0: उन्होंने 200 रुपए कभी लिए थे
1: जी जी जी जी
0: थी वो सारी चीजें वो
1: इस तरह आज से उनकी कब्र बनाने
0: कब्र में आखिर में जो है जब उनके जो इंतकाल हो गए उसके बाद उसको कब्र बनाने वाले को जो फिर जावेद अख्तर साहब ने जो वो 200 रुपए
1: वो 200 रुपए दिए।
0: और शायर बहुत परफेक्शनिस्ट थे। यश चोपड़ा जी से मेरी वहां मुलाकात हुई तो बताते थे कि कहानी लिख के मतलब गाना लिख के ले आते थे लेकिन वो 99.99% होता था
1: अच्छा।
0: तो देते नहीं जेब में रख के देते कहले इसमें 0.01% अभी कमी है तो कहले अरे आप छोड़िए साहिर साहब। फिर ऐसे सवाल करते थे कहले कि जो भाई कभी कभी अमिताभ बच्चन जो बिजनेसमैन हो गया तो ये तो तिजारती आदमी शायरी कैसे कर सकता है
1: अच्छा।
0: तो फिर यश चोपड़ा कहते अरे आप छोड़िए ना फिल्म मेकर मैं हूं मैं कैसे करूंगा सारी चीजें। जावेद साहब का जो शायरी चूंकि उनके जानिसार अख्तर के बेटे थे और वो थे मजाज के जो है भांजे थे मजाज लखने में तो उनका हमेशा था गाना लिखने का। तो हुआ कि जब सिलसिला की शूटिंग शुरू हुई तो उसी समय जो साहिर साहब की डेथ हो गई वरना उससे
1: अच्छा।
0: पहले त्रिशूर दीवार काला पत्थर और जितनी भी सारी ज्यादातर फिल्में यश चोपड़ा की जो उन्होंने साहिर साहब ने
1: अच्छा।
0: लिखी थी। तो उस मौके को देखते हुए जावेद अख्तर ने जो है यश चोपड़ा बोला कि मुझे गाना लिखना है और आप मुझे मौका दीजिए जो मैं उनकी जगह रिप्लेस करूंगा
1: सिलसिला के
0: तो,
1: लिए
0: सिलसिला के लिए। तो फिर वहां से उनकी शुरुआत एज ए
1: लिरिसिस्ट
0: हुई तो देखा ख्वाब तो ये सिलसिले वो सारी चीजें लिखी
1: ठीक, ठीक, ठीक।
0: उसी में था कि रमन कुमार जो है वो असिस्टेंट थे यश चोपड़ा के
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने उसके बाद जो है बनाई फिल्म साथ साथ तो वो जावेद साहब के पास पहुंच गए कि आपने उनके लिए गाना लिखा मैं तो असिस्टेंट आप रोज मुझसे मिलते सर अब आपको साथ साथ के भी तो फिर साथ साथ के भी सारे
1: अच्छा।
0: जो है
1: गाने लिखे
0: तुमको देखा तो ख्याल है जिंदगी धूप तुम गाना साया
1: तो
0: दिस इज हाउ इज लिरिसिस्ट जर्नी स्टार्टेड
1: जावेद अख्तर की।
0: उन्होंने मतलब सलीम जावेद वाली जो जोड़ी जब टूटी तो देन फ्रॉम राइटर ही बिकेम अ
1: लिरिसिस्ट फुल टाइम पोएट जी। तो गौरव जी ये तो सब बातें हो गई और हमारे पास समय भी बहुत कम बचा है तो चलते चलते हम आपसे और जो बाकी लोगों के साथ जो आपके रिलेशंस रहे आपके एक्सपीरियंसेस रहे मनोज कुमार साहब का आपने बताया और
0: मनोज कुमार साहब के साथ बस मैं वही मैं से मिलता था एक्चुअली मेरे घर भी आए थे मेरे फादर कानपुर मीडियम सिटी थे
1: अच्छा।
0: तो उस समय उनकी फिल्म जो है क्रांति रिलीज हुई थी तो यूपी चूंकि उस समय बहुत बड़ा जो है एग्जीबिशन का वो था ट्रेड काफी सिनेमा हॉल होते थे
1: जी
0: तो

0: हैड गुड रैपो विद माई फादर, तो उन्होंने किस्सा बताया कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने
1: जी
0: मनोज जी को एक बार बुलाया और ये बोला कि भाई मनोज, मेरा एक नारा है जय जवान जय किसान, इस पे तुम कुछ करो।
1: अच्छा
0: तो कहने मैं ट्रेन से आया दिल्ली से बॉम्बे, रात भर में सोया नहीं, डायरी लिखी मैं लिखा, जब मैं सुबह आया तो मेरे पास उपकार की कहानी तैयार थी।
1: क्या बात है।
0: सो दैट वाज हिज ट्रिब्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर, या देश के लिए जो उन्होंने जो
1: जी जी जी जो नारा था जय जवान जय किसान, क्या बात है। और बहुत ही सुना शानदार और बहुत ही बड़ी हिट फिल्म थी वो।
0: तो इस तरीके की चीजें हैं जो लोगों की जो जहन में थी याद रह जाती।
1: और सर आप हमारे साथ आज के आशियाना में जुड़े और इतने आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई, आपका आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। तो गौरव द्विवेदी हमारे साथ रहे आज के आशियाना में, जो कि बहुत ही फेमस फिल्म एंड टूरिज्म पॉलिसी एडवाइजर और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। हम एक बार फिर से उनका धन्यवाद करेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए।
0: बहुत बहुत थैंक यू सर आपका किया यार में मौका, जो इतने प्रेस्टीजियस, अभी 90 साल हुए हैं।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी ने अपने 90 साल जी।
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: जी थैंक यू सर, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से

0: असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरि की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।

0: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
0: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
0: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या

0: क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: जिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
2: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
4: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
2: अपनी साहित्य कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है।

0: बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
0: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूं। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
0: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
0: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
0: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
0: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ बताइए।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
0: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
5: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
6: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
7: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
6: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
8: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
9: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आपका समय शुरू हो गया। समय मैं इसलिए कह रही हूं कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम शुरू हो गया है। जी हां, शुरू हो गया है रेडियो डॉक्टर, जिसको प्रतिदिन आप सुनते हैं एफएम रेनबो 102.6 पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच, और एक खास डॉक्टर एक खास विषय के साथ हमारे साथ होता है, आपकी समस्याएं सुनता है, उसका समाधान करता है। आज भी हम यही करेंगे। आज का विषय जान लीजिए। आज का विषय है विटिलिगो। जी हाँ, विटिलिगो भी बोला जाता है और विटिलाइगो भी बोला जाता है। ये हम डॉक्टर साहब से भी कंफर्म कर चुके हैं। तो विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये है हमारा आज का विषय। और इस विषय पर बहुत सारी ढेर सारी जानकारी समेत हमारे साथ हमारे सामने बैठी हुई है डॉक्टर अनन्या शर्मा। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अनन्या, बहुत बहुत स्वागत है एफएम के स्टूडियो में आपका।
2: थैंक यू मैम।
1: आपने विषय सुन लिया है विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए विटिलाइगो, जैसे हमारे श्रोता हैं इसको नहीं जानते हैं, किस तरह की समस्या होती है ये?
2: विटिलाइगो एक हमारी चमड़ी की बीमारी मानते हैं, जिसमें हमारे चमड़ी में जो रंग बनाने वाले सेल होते हैं, मेलानोसाइट जिनको बोलते हैं,

0: उनकी संख्या कम हो जाती है, तो ये संख्या कम या तो उसमें कुछ खराबी होने से होती है, और इसे ऑटो इम्यून भी माना जाता है, जिसका मतलब कि हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ गलती से इस मेलानोसाइट जो रंग बनाने वाले हमारे चमड़ी में कण है उस पे अटैक सा करके उनको कम कर देता है। इस वजह से जो हमारी स्किन की जो नॉर्मल कलर है उसकी जगह व्हाइट पैच बन जाते हैं, तो ये सफेद दाग की बीमारी है, उसे विटलाइगो कहते हैं।
1: तो आपने समझ लिया कि विटिलाइगो किस तरह की बीमारी है, इस तरह की जो सफेद पैचेस आपकी स्किन पर या कहीं भी बन सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? ये शरीर के किसी भाग में भी होते हैं कि किसी पर्टिकुलर भाग में बनते हैं?
0: स्किन के तो किसी भी हिस्से पे बन सकते हैं, कुछ कुछ जगहें होती हैं जहां ज्यादा बनने की संभावना होती है, जैसे हमारे हाथ पैर और जो दूर वाले हिस्से हैं या जहां पे रगड़ ज्यादा लगती है वहां पे ज्यादा बनती है, बट पूरे स्किन में कहीं भी बन सकते हैं।
1: जी, तो हम आज 1 घंटा बात करेंगे डॉक्टर अनन्या शर्मा से कि विटिलाइगो और इससे जो संबंधित प्रॉब्लम्स है उससे कैसे जूझा जाए, और हमारे जो श्रोता है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हर दिन जुड़ते हैं, अपनी समस्या अगर आपको रिलेटेड लगती है या आपके मन में कोई जिज्ञासा हो रही है कि किस तरह की बीमारी है, कैसे इसका निदान होता है और कैसे उपचार होता है, या आपको लगता है कि आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसे आप सुनते हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी। तो इस कार्यक्रम को यूं ही सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज हम विटिलाइगो पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अनन्या शर्मा, आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये किसी भी भाग में हो सकता है, स्किन के किसी भी पोर्शन में हो सकता है, लेकिन जैसे हम गीत सुन रहे थे, लोग बहुत ज्यादा फेस पे इम्पोर्टेंस देते हैं, चेहरे के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर ये इस तरह के दाग धब्बे या कोई पैच होता है चेहरे पर, तो बहुत फर्क पड़ता है उसको मेंटली भी उस पर्सन को, और आसपास के लोग भी उसको उस तरह का एहसास कराते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे, पर हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी,
1: रेडियो डॉक्टर की एंकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शाली मैम को जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी।
1: और डॉक्टर अनन्या शर्मा मैम को भी नमस्कार।
2: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली।

0: सही उम्र मेरी 48 वर्ष है। सवाल मेरा ये है मैम, वैसे तो मैं व्हाइट स्क्रीन का ही मालिक हूँ, जैसे फॉरनर अंग्रेज होते हैं ना, वैसे ही हूँ मैं। तो अब मैं जानना ये चाहूंगा कि ये जो व्हाइट लीगो, जो आपने प्रॉब्लम कही व्हाइट लीगो, अब मैं जानना ही चाहता, वैसे तो ये बीमारी मुझे तो है नहीं, पर अगर ये हो जाए या हो जाती है किसी को, तो इससे नफा, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, पहले तो ये बताएं। और अगर हो, दूसरा सवाल ये है कि कुछ घरेलू ट्रीटमेंट मुमकिन है या फिर हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा डॉक्टर के पास?
1: जी, आपका पहला सवाल था कि अगर ये हो जाता है किसी को तो इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। तो ये एक बीमारी मानी तो जाती है, पर इंसान से ज्यादा ये एक सामाजिक बीमारी है, क्योंकि इसका, जब ये हमारी चमड़ी में होता है, इसका सिर्फ चमड़ी का रंग बदलता है और इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एक इंसान की सेहत को। उसके अंदरूनी सारे जितने सिस्टम है सब कुछ एकदम ठीक चलता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये एक देखने की, एक चमड़ी के रंग की बीमारी है। तो इसका नुकसान बाकी शरीर में कुछ नहीं है, नुकसान ये है कि समाज में इसको, हमारे समाज में भी, स्पेशली इंडिया में, इसको थोड़ा बुरा माना जाता है, इससे थोड़ा भेद बदलाव किया जाता है। इसकी वजह से ये है कि कई बार लोगों को काफी इसमें नुकसान पहुंचता है, नॉर्मल लाइफ में उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कभी शादी में इशू होता है, तो ये सब इसके नुकसान है। पर असल में देखें तो इसका कोई वो नहीं है शरीर पे। और फायदे का तो अभी तो भारत में ऐसा है कि सबको गोरा होना है वैसे तो, बट किसी तरह इस बीमारी को, तो ये सफेद की ही बीमारी है, फिर भी इसे बुरा मानते हैं, इतना ही है। और
2: ट्रीटमेंट पे भी चाह रहे थे कुछ
1: जी,
2: जानकारी।
1: आपने दूसरा सवाल पूछा कि ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट का ऐसा है कि इसमें कई सारे ट्रीटमेंट, हमें इसमें पहले देखना पड़ता है कि कितना हिस्सा शरीर का इससे प्रभावित है और ये बढ़ रही है कि रुकी हुई है, उसके हिसाब से इसका अलग अलग इलाज होता है। कि अगर बढ़ रही है तो हमें ऐसी दवाइयां देना पड़ती हैं पहले, जिससे इसका बढ़ना बंद हो जाए। और फिर रंग लाने के लिए लोशन होते हैं, कुछ लाइट थेरेपी भी होती है, और जैसे आपने सर्जरी का मेंशन किया, तो सर्जरी एक अच्छा इलाज है, पर वो कुछ ही मरीजों में की जा सकती है। उसके लिए आपकी बीमारी रुकी होनी चाहिए। कभी कभी एक हिस्से पे सीमित बीमारी होती है, जिसे सेगमेंटल विटलाइगो कहते हैं, उसमें सर्जरी का असर बहुत अच्छा आता है और लोशन वगैरह का उतना नहीं आता अच्छा उसमें। तो फिर कहने को ये है कि इस बीमारी के कई सारे रूप हैं, और इसलिए जरूरी है कि ये आप स्किन के डॉक्टर को अगर दिखाएं तो वो आपको बेस्ट आपका बता पाएंगे कि आपकी बीमारी के रूप में क्या चीज काम करेगी। और कई सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो कई चीजों में काम किया जा सकता है। और ये भी बता पाएंगे कि कभी कभी कोई एरियाज ऐसे होते हैं, एकदम उंगली के जो कोने होते हैं, जहां पे आसानी से रंग नहीं आता, तो वो भी आपको बता पाएंगे कि आप इसमें कितना पैसा, कितना कोशिश इस पे खर्च करें ना करें, तो एक बार सलाह लेना सही रहेगा इसमें।
2: जी, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से आपने बताया है। उम्मीद है कि इनको सही तरह से मार्गदर्शन मिल गया आपकी तरफ से। और जो आप कह रहे हैं कि घर बैठे ही हम कुछ लगा लें, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक बार आप दिखाएं किसी को, जाकर स्पेशलिस्ट को। एक श्रोता और फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार। हम
2: जी, नमस्कार जी,
3: मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी, मेरठ से।
2: जी, गौतम
3: साहब, मेरा सवाल है कि जैसे होम्योपैथी में कहते हैं कि लिवर डिसऑर्डर माना जाता है, लिवर कमजोर होने से, क्या ये सच्चाई है या मिथक है?
1: जहाँ तक कि हमारे एलोपैथिक उसमें है, तो इसका लिवर की बीमारी से तो कोई रिलेशन नहीं माना जाता, इसका केवल चमड़ी से ही रिलेशन है, क्योंकि जो कण रंग बनाते हैं हमारी चमड़ी के, वो चमड़ी में ही होते हैं और उसी पे असर पड़ता है। तो इसमें लिवर की बीमारी से कोई रिलेशन नहीं है आमतौर पर।
2: हाँ, हमारे पास बहुत सारे मैसेज भी आ गए हैं डॉक्टर अरण्या। हमें रजत लिख रहे हैं कि वी सी मैनी व्हाइट पिगमेंट ओवर फेस इन किड्स, डज इट कन्वर्ट टू विटिलाइगो?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसे मरीज हमारे पास कई सारे आते हैं, कई माँ बाप आते हैं जिनको चिंता होती है कि उनके बच्चों के चेहरे पे हल्के हल्के सफेद स्पॉट आते हैं। और ये ज्यादातर, ये सिर्फ एक सूखापन या फिर एक एक्जिमा का बहुत हल्का सा रूप होता है, जो कि सूखी चमड़ी जिन बच्चों की होती है उनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है।
2: ड्राइनेस के कारण ही
1: एक,
2: होता है?
1: हाँ जी, वो बस एक ड्राइनेस के कारण है, और वो एक जगह पे होके वहां से जाके दूसरी जगह आ जाता है, तो वो विटलाइगो नहीं है, और इसी चिंता से लोग आते हैं। तो इसलिए जैसे हमारे पहले फोन कॉल ने भी पूछा, तो मैं फिर से यही कहूंगी कि ये सही रहेगा, जब आपको डाउट है तो आप पहले सलाह ले लें, उसको विटलाइगो मानने से पहले और उसका इलाज करने से पहले।
2: जी बिल्कुल सही। और फरीद मंडल हमें लिख रहे हैं दिल्ली से कि क्या ऐसा भी होता है कि कुछ खान पान से ये हो जाए, जैसे इन्होंने लिखा एग्जाम्पल के लिए कि फिश और मिल्क दोनों साथ में लिए जाएं, इस तरह की बहुत सारी मैं तो कहूंगी

0: मिथ्स भी हैं और कुछ हो सकता है सच्चाई भी हो, हम कह नहीं सकते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी कहे जाते हैं जो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर लिया जाए फिश विद मिल्क, तो इस तरह का विटिलाइगो होने की समस्या हो
1: जी,
0: सकती है क्या?
1: ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो मानी जाती है इंडियन उसमें मेडिकल लाइंस में, बट ये साइंस के हिसाब से जहां तक है तो ऐसी किसी कॉम्बिनेशन से कुछ ट्रिगर नहीं होता है। और जिनको विट्लाइगो है भी, उनके भी दूध लेने से या कोई सफेद पदार्थ लेने से कभी कभी लोग को मना किया जाता है, खट्टा ना ले, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बीमारी पे। तो इस चीज पे कई रिसर्च भी हो चुकी है क्योंकि ये बहुत माना जाता है, पर इस पे रिसर्च भी स्टडी भी हुई हुई है और ये पता है अब हमें कि इन सब चीजों को खाने ना खाने से बीमारी पे फर्क नहीं पड़ता। और जबकि छोटे बच्चों को कभी हो जाता है और उनको दूध वगैरह मना कर देते हैं तो उनसे उनकी और सेहत पे फर्क पड़ सकता है, पर सफेद दाग की बीमारी पे इससे कोई फर्क नहीं
0: यानी कि
1: पड़ता।
0: खाने पीने से इस पे कोई असर
1: जी
0: नहीं होता है कि कोई ये कहे कि मैंने ये खा लिया या मैं ये मेरा डेली रूटीन में मैं ये खाती हूं तो उसके कारण हो सकता है,
1: हाँ
0: ऐसा
1: जी,
0: नहीं है
1: ऐसा नहीं
0: जी।
1: है
0: ऐसे ही
1: उस
0: मिलता जुलता एक और प्रश्न है, ये है कुलेश्वर ठाकुर जी का, ग्राम बारीयातू जिला लातेहार झारखंड से लिख रहे हैं। सफेद दाग की समस्या क्या जेनेटिक होती है, एक तो ये जानना चाह है इन्होंने, और साथ ही अगर होता है तो क्या खान पान से होता है, इसका निदान कैसे किया जाए? तो थोड़ा तो आपने बता दिया खान पान
1: जी
0: से नहीं होता, पर सफेद दाग की समस्या क्या जेनेटिक हो सकती है?
1: तो जेनेटिक का एक, जैसे ये जो बीमारी है इसके कई वजहों से होती है, इसे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं कि बहुत सारी चीजों से है, तो उसमें जेनेटिक का थोड़ा तो रोल है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। तो जैसे मानिए आपकी आम जनता में 100 में से एक इंसान को होता है सफेद दाग की बीमारी। अब अगर हमारे परिवार में किसी को है सफेद दाग की बीमारी, इमीडिएट परिवार में हमारे माता पिता को या भाई बहन को, तो हमारे 100 में से 6 चांस हो गया कि ये बीमारी होने का, तो हल्का बढ़ गया। पर ये भी नजर रखना है कि अभी भी 100 में से 94 में नहीं है बीमारी, तो हल्का सा फर्क पड़ता है जेनेटिक से, थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, पर और बहुत सारी चीजें हैं, कई शरीर के कण ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, बेवजह होते हैं, उनका नहीं बता सकते क्यों हुआ। कुछ कहते हैं कि बाहर इन्वायरमेंट से कुछ कुछ क्या कहते हैं, कोई स्ट्रेसर्स होते हैं उनकी वजह से ऐसा शुरू होता है ये साइकिल, बट पूरा मिला के ये बहुत सारी चीजों से मिलके ये बीमारी बनती है, सिर्फ जेनेटिक भी नहीं है, और पर जेनेटिक का थोड़ा बहुत रोल तो है।
0: जैसे आपने बताया कि बहुत सारी स्किन की और भी समस्या हो सकती है जो कुछ मिलती जुलती लगती है, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप बताते हैं कि नहीं ये विटिलाइगो नहीं है कुछ और
1: जी
0: है, तो क्या इस तरह से जो और जो बीमारियां होती हैं उनका भी क्या, जैसे मान लीजिए किसी को स्किन की कोई और बीमारी है, एक्जिमा है या ड्राई स्पॉट्स हैं व्हाटएवर, तो उनको विटिलाइगो होने की समस्या हो सकती है, बढ़ सकते हैं चांसेस क्या उससे?
1: उनसे दूसरी स्किन की बीमारियां मोस्टली इससे रिलेटेड नहीं होती, एक दो बीमारियां जो ऑटो इम्यून जिनको माना जाता है उनका थोड़ा बहुत संबंध बताया जाता है, एलोपेशिया एरियाटा का ऐसे बताया जाता है, बट ये एक्जिमा सोराइसिस वगैरह जनरली इनका मतलब अब होने को तो साथ में हो सकता है, वो तो थोड़ा चांस की बात है, पर उससे बहुत ज्यादा इसका रिस्क तो नहीं बढ़ता।
0: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, आप है रेडियो डॉक्टर में?
2: मैडम जी, नमस्ते।
0: जी जी नमस्कार।
2: मैडम जी, मेरा ये सवाल था, मैं ये कह रहा था मैडम जी, फिश के ऊपर जैसे बताते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, तो ये बात कितनी हद तक सही है कितनी गलत
0: अभी डॉक्टर
2: है?
0: साहब ने यही बताया, आप सुन नहीं रहे थे प्रोग्राम, डॉक्टर साहब ने
2: नहीं
0: अभी
2: सर, मैडम को
0: बताया।
2: फोन मिलाने की जरूरत
0: जी
2: थोड़ा
0: जी
2: बिजी
0: जी फोन
2: हो
0: मिलाने के चक्कर में हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया है कि खान पान से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो
2: गया। हाँ
0: आपका कोई
2: वो
0: और प्रश्न भी है?
2: घर वाले डरा देते हैं कि अभी फिश खाइए या दूध मत पीना,
1: नहीं,
2: तो
1: डरने की बात नहीं है, इस पे तो स्टडी वगैरह भी हो रखी है, खान पान में कोई आपको टेंशन की बात नहीं है इस बीमारी में।
0: जी।
2: ठीक है मैडम।
0: मृत्युंजय कुमार चेरकी गया बिहार से हमें लिख रहे हैं मैसेज कि मैम और डॉक्टर साहिबा को नमस्ते, सफेद दाग का स्थायी इलाज है या नहीं, ये इनका प्रश्न है कि इसको ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं। मेरे पड़ोस में एक आंटी को पुराना सफेद दाग है जो इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या सफेद दाग वंशानुगत बीमारी है, क्या ये नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रभावित कर सकती है, तो ये बताइए।
1: तो इसका इलाज तो है, पर जैसा मैंने बताया इसके कई सारे रूप हैं, उनके अलग अलग टाइप के इलाज हैं, दवाई, लोशन, लाइट थेरेपी, सर्जरी, इन सब के सारे ऑप्शन हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ टाइप के होते हैं जिनमें बहुत अच्छा इलाज काम नहीं करता, उनको भी कभी कभी जैसे हम उनके लिए छुपाने की क्रीम्स भी होती हैं। तो देखिए सिर्फ देखने की बीमारी है, और अगर हम इसको छुपा पाए तो बात अंत में सेम ही आएगी, जो दिखेगा नहीं।

0: तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई तरकीब है कि 100% बीमारी खत्म हो जाए और कभी ना वापस आए, तो ऐसा नहीं है मोस्टली. कोई कोई होते हैं जो एक ही जगह सीमित सेगमेंटल विट्लाइगो कहते हैं, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर जाते हैं, वापस नहीं भी आते, बट ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी करता है. तो इसको जब आप सलाह लेंगे तभी आपको और किस टाइप की बीमारी है वो हम तभी विस्तार में ज्यादा बता पाएंगे.
1: हमें ये लिखा है, एक मैसेज और आया है, उन्होंने लिखा है कि ये क्या छूने से भी फैलती है, ये जानना चाह रहे हैं।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है हमारे समाज में, और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये बीमारी छूने से बिल्कुल नहीं फैलती. पिछले श्रोता ने ये भी पूछा था कि जेनेटिक है, उसका हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा इंक्रीज रिस्क है. छूने से, साथ रहने से, बात करने से, इससे बिल्कुल नहीं फैलती. तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपके साथ वालों को विट्लाइगो है, आप उनके साथ काम करते हैं, रहते हैं, सेम घर में हैं, दोस्त हैं आपके, कैसे भी हैं, उससे आपको होने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है.
1: जी, तो आज आप रेडियो डॉक्टर में सुन रहे हैं डॉक्टर अनन्या शर्मा को, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ है एम्स न्यू दिल्ली में, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में. बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं, हमारे भी अपने प्रश्न हैं और श्रोताओं के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब, और फिर आते हैं, एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज हम बात कर रहे हैं विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। और हमारी आज की रेडियो डॉक्टर हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनन्या शर्मा। तो डॉक्टर साहब, मैसेज एक आया है, लिखने वाले हैं मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से।

0: उन्होंने लिखा है, विटिलेगो बीमारी के बारे में आज बेहद कीमती अनमोल जानकारी हमें रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मिल रही है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरा सवाल है कि क्या किसी खास उम्र में ये कमजोरी से ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है? जलने के बाद जो सफेद दाग जगह जगह पर हो जाते हैं, तो क्या ये भी इसी बीमारी के तहत आते हैं और क्या ये बीमारी गंभीर है? ये इनके प्रश्न हैं।
1: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और उम्र के हिसाब से वैसे तो ये किसी भी उम्र पे हो सकती है, पर ज्यादातर थोड़ा यंग उम्र में होती है, 20-30 साल वाले लोगों को ज्यादा उत्पन्न होती है और ज्यादा बूढ़े या ज्यादा छोटे बच्चों को कम होती है ये, पर किसी भी उम्र में हो सकती है। इनका दूसरा सवाल था कि जो जलने के बाद आपके सफेद दाग रहते हैं, जी ये अच्छा सवाल है, क्योंकि वो दिखने में बहुत एकदम सेम ही लगते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल सफेद दाग बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो हमने बताया कि जो मेलानोसाइट, जो हमारे स्किन में रंग बनाने वाले सेल है, वो नष्ट हो जाते हैं जब जला होता है स्किन, तो वो नष्ट हो जाते हैं। पर फर्क ये है कि दिखता ये सेम है, पर ये वो बीमारी क्योंकि अंदरूनी ऑटो इम्यून नहीं है, तो ये और जगहों पे फैलता नहीं, ये जहां जला है ये बस वहीं तक सीमित रहेगा, और इसमें ट्रीटमेंट का थोड़ा कम असर आएगा और इस पे ज्यादातर सर्जरी से भी इसमें रंग लाया जा सकता है जो जलने के बाद वाले एरिया होते हैं। और गंभीरता के हिसाब से, गंभीर जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ देखने की बीमारी है, ये उतनी ही गंभीर है जितना हम इसको माने कि गंभीर है, और कोई असर ये नहीं करेगा आपके शरीर पे।
0: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो
0: जी,
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैडम को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: जी चड्ढा जी, अपने प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
1: नमस्ते जी।
2: डॉक्टर साहब मेरे दो सवाल हैं।
1: जी,
2: पहला ये कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाए
1: जी,
2: तो होने वाले बच्चे को भी ये इफेक्ट करेगी? नंबर टू, हमको अपनी डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे दाग हो ही ना, कृपया बताने का कष्ट करें।
1: जी, तो जो आपने प्रेगनेंसी वाला सवाल पूछा, तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के वक्त पे हो तो कुछ अलग स्पेशल होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो इसकी अनुवांशिक बीमारी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है कि 100 में 1 के होने के बजाय 100 में 6 का चांस रहेगा बीमारी फैलने का बच्चे को, तो हल्का सा बढ़ जाएगा रिस्क आम जनता के हिसाब से, पर फिर भी आप मानो 90 से ज्यादा लोगों में आउट ऑफ 100 में से नहीं होगी वो बीमारी फिर भी, ठीक है। और दूसरी चीज आपने पूछा कि खाने का आप क्या कर सकते हैं, तो खाने का मैं फिर से बताना चाहूंगी कि खाने का इसमें कोई परहेज नहीं है, इसको ना होए उसके लिए भी नहीं है, और जिसको हो गया है उसको कुछ बीमारी का कम ज्यादा होना नहीं होगा खाने से, तो खाने का इसमें बिल्कुल परहेज नहीं है। इसमें कई स्टडी, काफी काम कर चुके हैं लोग खाने का, इसको हम वहम मानते हैं कि इसमें कोई सफेद खट्टा ये सब नहीं खाने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा
0: जी। और यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अनन्या शर्मा की खास तौर पर रिसर्च है विटिलाइगो पर, और इसीलिए आज वो काफी इस बारे में बता रही हैं कि रिसर्च बहुत हो चुकी है और उन्होंने भी इस विषय पर काफी रिसर्च की है, तो इस रिसर्च के बारे में कुछ खास आप बताना चाहेंगे जो आपने की है।
1: जी, मेरा जो एक थीसिस वाला रिसर्च था वो ये था कि हम इस विटिलाइगो को, सफेद दाग की बीमारियों को भारत की जनता में और होने वाले जो हल्के रंग के पैच होते हैं स्किन के, उससे कैसे अलग माने, अलग कैसे करें कि कौन सा ये वाली विटिलाइगो बीमारी है और कौन सी बाकी बीमारियां हैं, क्योंकि हमारी स्किन में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हल्के दाग की तरह दिखती है, तो वो जैसे बताया जो सूखे पैच होते हैं, माइल्ड एक्जिमा वाले होते हैं, कुछ जन्म के दाग भी होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं, और उसके अलावा कोई कोई माइल्ड फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो ऐसे सफेद लग सकते हैं, और एक होते हैं जो ये बहुत कॉमन है कि ऐसे बूढ़े लोगों की स्किन में धीरे धीरे व्हाइट छोटे छोटे स्पॉट्स आने लग जाते हैं जो सिर्फ स्किन की एज के साथ आते हैं और वो फैलते नहीं और बड़े नहीं होते, तो वो भी उसको कुछ IGH करके माना जाता है, और उसको लेके कई मरीज आते हैं कि ये देखिए सफेद दाग हो गया है पर वो फैलता नहीं है। तो इन सबको अंतर करने के लिए, क्योंकि विटिलाइगो नाम से सबको डर लगता है, सबको टेंशन होती है, तो उसके लिए एक माध्यम होता है डर्मोस्कोप अब जो आया है स्किन वाले पढ़ाई में, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं उसे, तो उसी चीज पे रिसर्च था, और इसलिए मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको लगे भी कि कोई सफेद पैच आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, स्किन के डॉक्टर के पास, तो वो आपको बता पाएंगे कि हो सकता है वो सफेद पैच हो ही ना।
0: और वैसे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो रेडियो डॉक्टर के माध्यम से, डॉक्टर साहब हम प्रतिदिन अपने श्रोताओं को यही कहते हैं कि हमें किसी भी बीमारी से डरना नहीं है। किसी भी बीमारी को अगर आपको हराना है तो सबसे पहले तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करके आपको उसको

0: समझने के लिए अपनी जो एक डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा और उससे ठीक से समझना होगा कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। और यही मंच प्रदान करता है हमारा ये कार्यक्रम कि यहाँ पर हम एक अवेयरनेस फैलाते हैं, उस बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके सिम्टम्स को, उसके ट्रीटमेंट का क्या मॉड्यूल रहता है वो सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे एक श्रोता और जुड़े हैं फोन लाइन पर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार
1: मैम को भी नमस्कार।
2: नमस्ते नमस्ते जी।
1: मैम मैं ये जानना चाह रहा था, तो किसी महिला को सफेद दाग हैं और वो अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराती हैं, क्या उससे उसको होने का खतरा बना रहता है?
2: नहीं जी, आप स्तनपान करा सकते हैं, उससे खतरा नहीं बढ़ता है
0: जी। तो आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर अनन्या शर्मा। हमारे पास मैसेज आया है, लिखने वाली है परिधि दिल्ली से और ये लिख रही हैं कि आई वांट टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट आई लव दिस प्रोग्राम एंड बेनिफिट फ्रॉम इट एवरी डे, थैंक यू सो मच। और ये लिख रही है कि मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूं, आई हैव ड्राई स्किन एंड इज वेरी सेंसिटिव टू सनलाइट, मेरे व्हाइट स्पॉट्स हैं फेस पर एंड विच हैज बीन डायग्नोस्ड एज स्किन एक्जिमा, बट सिंस द व्हाइट स्पॉट्स डोंट गो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी अर्ली स्टेज ऑफ विटिलाइगो? आपने बताया बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो शायद ये कारण हो सकता है स्किन एक्जिमा। तो ये सिर्फ ये जानना चाहती हैं कि अगर मैं इसको कुछ ना करूं या इसका कोई इलाज ना कराऊं तो ये कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो सकता?
2: ऐसे कन्वर्ट तो नहीं होता है, पर अगर आप ये पूछ रहे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि विटिलाइगो, अगर आप एक स्किन डॉक्टर को दिखा चुके हैं और उन्होंने आपको ये बताया है और अगर आपका बिल्कुल एकदम दूध जैसा सफेद पैच नहीं है तो कम चांस है कि वो विटिलाइगो जैसा हो। और आप अगर पूरा जो ट्रीटमेंट आपको दिया होगा उसको फॉलो करें और धूप से, फिर अगर आपको लगता है धूप से बढ़ रहे हैं ये रिएक्शन तो उससे धूप से बचाव करके देखें, अगर उससे कम हो रहा है तो फिर लाइकली वो विटिलाइगो नहीं है। बाकी जब भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर एक फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं, वो डर्मोस्कोप से देख सकते हैं और करीबी से देख सकते हैं। और एक ही डॉक्टर के पास जब हम एक बार के बाद बार बार जाते हैं तो अगर कोई डाउट होता है तो वो डॉक्टर ज्यादा समझ पाता है क्योंकि उन्होंने आपको बार बार देखा होता है। अगर आप डॉक्टर बदल बदल के जाएंगे तो कम चांस है कि आपका सही डायग्नोसिस मिलेगा, आप उन्हीं के पास वापस जाइए और चांस है कि वो आपको और बता पाए इस बारे में।
0: जी, तो एक तो आपने कहा कि बिल्कुल व्हाइट अगर वो नहीं है तो फिर वो कुछ और हो सकता है, जैसे इनको इनके केस में स्किन एक्जिमा है
2: जी,
0: तो उस तरह से उसको थोड़ा पहचाना जा सकता है। पर एक चीज बहुत अच्छी आपने डॉक्टर साहब बोली कि हमें जो भी इलाज लेना है, जिस डॉक्टर के पास जाना है, तो उसको परस्यू करना चाहिए। ये नहीं कि पहली बार में फायदा नहीं हुआ तो आपने फिर दूसरे के पास चले गए, फिर तीसरे के पास चले गए, तो कहीं से कुछ डिसकंटिन्यूटी होती होगी और शायद इलाज।
2: ये बहुत कॉमनली होता है क्योंकि हम इलाज भी हम सबसे सेफ जो फायदेमंद हो उससे शुरू करते हैं, बट उसका जब भी एक डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसमें होता है कि अब वो सोच के रखा होता है कि अगर ये नहीं काम किया, ये पूरा आराम नहीं हुआ तो हम एक और बढ़ा करके और ऑप्शन होते हैं, तो आप उनके पास जाते रहेंगे तो वो आपको और आगे बता पाएंगे।
0: हमें ये लिखकर भेजा है हमारे श्रोता ने कि हाउ टू ओवरकम द एम्बेरसमेंट इन पब्लिक विद दिस स्किन कंडीशन। मैं एक्चुअली आखिर में इस बात को लेना चाह रही थी कि बहुत स्टिग्मा है, आपने इस बात को उठाया भी था कि लोग जो है काफी आपके पास भी आते हैं और इस चीज से काफी वो परेशान भी रहते हैं कि उनको दूसरे लोग शायद ज्यादा ये पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारे चेहरे में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे हाथ पे ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे श्रोता ने लिखा है तो मैं सोच रही थी कि इसको आप बता दें, बाद में हम फिर से एक बार अगर समय मिलेगा तो लेंगे इसको।
2: जो इसमें दो तीन कॉम्पोनेंट हो गए कि एक तो चीज हो गई कि वो निशान दिखे ना, ठीक है, उसके लिए आप इलाज भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है टाइम के लिए, जैसे जो हमारे बाहर वाले जैसे चेहरा या हाथ पे है तो कई सारी क्रीम्स भी आती हैं जो फाउंडेशन जैसी माना जाए उस टाइप की क्रीम्स आती हैं जो थोड़ी सी वाटर रेजिस्टेंट भी होती है, उनको लगा के उस निशान को छुपाया भी जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, बिल्कुल स्किन से मैच हो जाता है कलर और पता नहीं चलता कि अंदर सफेद दाग है। तो एक तो उसको छुपाया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, और उसके बाद सेकेंड चीज इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका परसेप्शन है ऑफ बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विटिलाइगो क्लिनिक्स भी होती हैं, उसमें कई टाइप के मरीज आते हैं। कुछ मरीज होते हैं जो एक छोटे से दाग के लिए जो छुपा हुआ होता है उसके लिए भी उनकी काफी जिंदगी खराब हो जाती है क्योंकि वो उसमें बहुत टेंशन लेके रहते हैं, और कुछ लोग इतना एडजस्ट हो जाते हैं कि उनको बाकी बिल्कुल जिंदगी बढ़िया चलती है उनकी और वो मान लेते हैं कि ये एक हल्का सा पैच है बस। तो आपको खुद का एडजस्टमेंट भी करना जरूरी है, जैसे लाइफ में कोई भी स्ट्रेस होता है उसी को मानेंगे ये एक स्ट्रेस है, तो मेडिटेशन करना, अपने आप को काम रखना, इस चीज को समझना, ये सब भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ज्यादा मानसिक तनाव रहता है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प, साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी ली जाती है इससे एडजस्ट करने के लिए, जो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। सबको कभी कभी मदद की जरूरत होती है और ये हेल्प ली जा सकती है इस बीमारी से एडजस्ट करने के लिए। एडजस्ट करना इम्पोर्टेंट आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि स्ट्रेस करने से भी, स्ट्रेस का भी रोल है हल्का इस बीमारी में, कि उस बीमारी को बढ़ाने में। तो ये दो तरफा रोल हो गया कि हम स्ट्रेस कम करेंगे तो शायद हमारी बीमारी भी कम बढ़ेगी। तो ये तो जरूरी है अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने आप को स्ट्रांग करना। और तीसरा है जो हम लोगों का रोल है, जो हम और करेंगे, कि बाकी जनता को ये नॉलेजेबल बनाना कि इस बीमारी से ना तो ये फैलता है ना ये कोई ऐसी चीज है जिससे आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए कि मतलब कि कुछ अलग है या आपको ऐसे देखा जाना चाहिए। तो वो है सामाजिक अवेयरनेस, कि सबको पता रहे कि ये इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं जिससे हम ये एम्बैरेसमेंट को कम कर सकते हैं। आप पहले दो कर सकते हैं और हम तीसरा करने की कोशिश जारी रखें।
0: जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने यहां बोली कि आपको कोई भी एम्बैरेसमेंट की, पहले खुद को आप पहले ये समझें कि आप किसी से भी कम नहीं है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार कर रखें, अपने सेल्फ स्टीम को बचा कर रखें, और फिर देखें आप कुछ भी करते हैं तो लोग आप कोशिश करते हैं कि आपको कंफर्टेबल आप ना हो। तो इसीलिए आप पहले अपनी स्किन में कंफर्टेबल होंगे तो फिर आप बेहतर इसको डील कर सकेंगे डॉक्टर साहब।
2: हाँ जी, और स्किन के डॉक्टर होने से मैं कहना चाहूंगी किसी के भी स्किन साफ नहीं होती, जितना आप देखते हैं वीडियोज वगैरह सब कुछ एडिटेड होता है, किसी की स्किन साफ नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई निशान, कोई तिल, कोई दाग जरूर होता है, और ये सब एक नॉर्मल चीज है।
0: और डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया, खासतौर पे जब हम मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, या कहीं मॉडलिंग किसी को मॉडल देखते हैं, तो हमें लगता है कि वाह इनका तो कितना अच्छा स्किन है, और सारे जैसे फिल्म स्टार्स हैं तो उनको बहुत अच्छे स्किन है। तो आपने बता दिया कि ऐसा नहीं है, सिर्फ वो कई चीजें दिखती हैं और वो एक्चुअली नहीं होती हैं। तो हमें एक ये मैसेज भेजा है, श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से, 74 ओल्ड है। इन्होंने लिखा है कि इज ब्लैक पैचेस ऑल्सो सिमिलर टू विटिलाइगो? ब्लैक पैचेस, इन्होंने लिखा है वन ऑफ रिलेटिव्स हैव टू चिल्ड्रन और उनके दोनों बच्चों को पैचेस हैं, एक को सफेद पैच है, एक को ब्लैक पैच है। द लैटर वन, या दूसरे बच्चे को जिसको ब्लैक पैच है, उसके हेड हेयर के बीच में भी पैच है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो क्या ब्लैक पैचेस भी कुछ होते
2: black हैं? ब्लैक पैच का मतलब बस ये हुआ कि एक हमारी नॉर्मल स्किन से एक डार्कर स्किन मतलब कहीं पे है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, तो वो तो देख के ही पता चलेगा। तिल भी हो सकता है वो, और कोई स्किन की बीमारी हो सकती है। जी भाई, वो तिल, हाँ, बर्थ मार्क हो सकते हैं, मोल हो सकते हैं, या कोई और निशान हो सकता है।
0: तो आप आज सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर में विटिलाइगो और रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बता रही हैं विस्तार से डॉक्टर अनन्या शर्मा। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं एम्स न्यू दिल्ली में, और इसी तरह से कार्यक्रम से जुड़े रहिए, अपने प्रश्न भेजते रहिए। इस ब्रेक के बाद हम फिर से और बहुत सारे प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछेंगे और इस समस्या को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ।

0: वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर, और हमारी आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर अनन्या शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं मैसेज के माध्यम से भी, पर हमारे एक श्रोता अभी जुड़े थे फोन लाइन पर। उन्होंने ये जानना चाहा था कि उनको पैर की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो एक तो ये कि क्या ये भी एक विटिलाइगो का सिम्टम है या बन सकता है, और उनको जैसे उन्होंने बताया कि चेस्ट पे उनके काफी छोटे छोटे तिल हैं, तो ये भी कहीं इशारा करते हैं विटिलाइगो का?
1: जी, इन दोनों चीजों का विटिलाइगो से तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये उंगलियों के बीच में फंगस का इन्फेक्शन बता रहे हैं, वो अक्सर कैंडिडा फंगस से होता है। वो सफेद दिखने में होता है पर वो उभरा हुआ रहता है, उसमें कुछ और लक्षण भी होते हैं, खुजली, जलन, ये सब रहता है उसके बीच में। तो इसका तो फंगस को मारने वाली बीमारियों से, दवाइयों से इससे ठीक होता है। खुला जूता, हवा लगने देना, सूखा और साफ रखना, इन सबसे ठीक रहता है। तो वो विटिलाइगो से रिलेटेड नहीं है, उसका इलाज आपको चमड़ी के डॉक्टर को दिखा के लेना चाहिए। पर
0: ये दूसरी तरह का एक स्किन इन्फेक्शन है। जी, उमेश कुमार लिख रहे हैं खयाला से कि नमस्ते जी, चेहरे पर छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं और फिर दोबारा हो जाते हैं, और आंखों के नीचे काली झाइयां सी हो जाती हैं। ये किस कारण से होता है? वैसे तो ये विटिलाइगो से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है, पर आप इन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे तो
1: इनका उम्र अगर हमें पता हो तो शायद और बता पाए, बट चमड़ी के रोगों में देखे बिना बताना काफी मुश्किल है। तो ये दाने अगर लाल हैं, ये एक्ने भी हो सकता है, पिंपल भी हो सकते हैं, आपकी झाई जैसा बता रहे हैं तो वो मेलास्मा या झाई वाली दिक्कत हो सकती है, पर ये आपको दिखा के ही सलाह रहना ठीक रहेगा।
0: जी, सुरेश पाल हमें लिख रहे हैं दिल्ली सुल्तानपुरी से। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश पाल है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूं। सुल्तानपुरी से हमारे एक दोस्त हैं जो जैसे धूप में अगर चलते हैं तो उनको कभी कभी सफेद सफेद से थोड़े थोड़े से दाने होने लगते हैं, तो ये क्यों होते हैं, और ये बताएं कि कोई समस्या तो नहीं बढ़ जाएगी?
1: अगर ये धूप में चलने से, यदि ये हाथ के ऊपर होते हैं, चेहरे पे होते हैं, गले के पीछे होते हैं, तो ये एक लाइट रिएक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन कहते हैं जिसे, जो कि धूप की हाइपर सेंसिटिविटी मान लीजिए उससे होता है। ये एक एलर्जी, एक्जिमा टाइप का चीज होता है। कभी कभी ये हल्का सफेद दिख सकता है, पर बिना देखे कहना मुश्किल है कि क्या ये वही है। पर ये विटिलाइगो से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको लगता है धूप से है तो धूप से बचाव करके देख सकते हैं।

0: वरना बेस्ट यही रहेगा कि आप चमड़ी के डॉक्टर को दिखा के उसकी सलाह ले लें।
1: तो धूप से जो आप कह रहे हैं कि बचाव करना चाहिए उनको, सन सेंसिटिविटी या कुछ इस तरह की चीज है, तो कैसे बचाव करें? क्या
0: वो ऐसा बता रहे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं
1: तो
0: कि
1: सनस्क्रीन
0: सन से,
1: लगाएं
0: बट
1: कि हम क्या
0: सन
1: करें?
0: से बचाव के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप फिजिकली प्रोटेक्ट करें, कि पूरी बाजू के कपड़ा पहनना, छाता लेना, टोपी पहनना, ये बेस्ट है। और उसके ऊपर से सनस्क्रीन भी लगाएं अगर, पर सनस्क्रीन अक्सर हम लोग उतना लगा नहीं पाते हैं क्योंकि उसको हर 2-3 घंटे में लगाना जरूरी होता है। कोई भी SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन ठीक रहती है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि हमारी स्किन में ऑलरेडी डार्क रंग होता है और उसको कम से कम आधी चम्मच से ज्यादा लगाना होता है एक बार में पूरे चेहरे के। तो कोई भी आमतौर पे नॉर्मल काम करता इंसान इतना सनस्क्रीन लगा नहीं पाता। तो आप छाया में चलें, छाता लेके चलें, टोपी लेके चलें, या किसी कोई गहरे रंग के कपड़े को अपने चेहरे पे बांध ले, जैसे अक्सर आप देखते होंगे स्कूटर वगैरह पे लोग जाते हैं, वो ये करते हैं, तो वही बेस्ट है धूप से बचाव
1: अच्छा
0: के लिए।
1: ठीक है। राजेश भल्ला हमें लिख रहे हैं कि ये एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ में, लिख रहे हैं शुभ दोपहर। शालिनी मैडम जी, डॉक्टर साहब जी, अच्छी जानकारी मिली आज। कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति लेमन टी सेल करता है, उसको ये बीमारी है जो आप बात कर रहे हैं आज,
0: जी
1: किंतु कोई दवाई नहीं लेता है। उसका मानना है कि ये बीमारी जीवन भर रहेगी, क्या ये सही है?
0: एक तरह से मैं कहूंगी कि ये जो आदमी है ये काफी अच्छी तरह एडजस्ट हो रखे हैं इस बीमारी से, वो अपना काम कर रहे हैं और उनको परवा, ज्यादा टेंशन नहीं है, जिस बीमारी की टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। तो अगर वो दवाई नहीं ले या ले, ये सच है कि विटिलाइगो आमतौर पे बहुत मुश्किल है कि 100% चले जाए मोस्ट लोगों में, जिसमें अगर इलाज के साथ कम भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, तो मतलब तीन में से एक को वापस भी आने का लक्षण रहता है। तो इसलिए एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि हम जितना वो उसमें मेहनत करके जितना वो रंग लाएंगे उसमें, तो उतना वो शायद करना नहीं चाहते, और अगर वो इससे एडजस्ट हो गए हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी और कुछ नुकसान नहीं करेगी।
1: जी
0: और
1: जी
0: अभी ये नहीं पता मुझे कि उनको कितना है, मान लिए थोड़ी जगह पे है, कोई ऐसी जगह है जहां पे उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट ले तो उनको ना आए, पर अगर बहुत फैल गई है और अगर इंसान एडजस्ट हो जाता है कि ठीक है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है।
1: जी जी हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी, और
1: जी
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी जी
0: नमस्ते जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरी एज 42 ईयर्स है और मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ।
0: जी
2: अच्छा डॉक्टर साहब, जो है ना मेरे हाथों के ऊपर सफेद दाग से हैं, कुछ कुछ 2-3 उंगलियों के ऊपर, फिर
0: जी
2: मैं जो पैसे जगह है उसमें कुछ सफेद बाल है, फोटो में भी अच्छे हैं, अगर फोटो उतरवाओ तो। पहले भी होगी थी एक बार दिक्कत, ये मैंने करनाल से जो सिविल हॉस्पिटल में से दवाई खाई थी वो ठीक होगी थी
0: जी
2: कई साल पहले, पर लेकिन फिर हो गया अभी दोबारा। जी
0: जी तो आप कह रहे हैं आपके हाथ पे सफेद दाग हैं और सफेद बाल भी हैं।
2: हाँ जी, हाँ सिर में सफेद बाल भी हैं जी, और तिल भी हैं, और ये छोटी छोटी फुंसियां भी हो रही चेहरे के ऊपर जी। अब ये क्या चीज है?
0: जी चेहरे की फुंसियां देखे बिना बताना मुश्किल है, पर ये तो इस बीमारी में अक्सर होता है कि इलाज लेने के बाद ठीक होता है पर कभी ना कभी वापस आ सकता है। इस टाइम पे आपको यही करना पड़ेगा कि जहां से आपको फायदा हुआ था आप वहीं जाके फिर से बताएंगे, हो सकता है वो वही इलाज फिर से दे और फिर से ठीक हो जाए। पर हाथ के, अगर हाथ के आपके हथेली में है और सफेद बाल भी हैं, तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसमें इलाज का रिजल्ट थोड़ा कम आता है। तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, और अगर आपका एक बार ठीक हुआ है तो मैं कहूंगी आप जरूर वापस जाके उनको बताइए, हो सकता है आपको फिर से फायदा हो।
1: बोधराज खोरवाल जी हमें लिख रहे हैं उत्तम नगर से, क्या सफेद दाग एक बार शरीर में आ जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जिज्ञासा है जानने की। वैसे ना आपने बताया काफी, लेकिन इनका था मैसेज तो मैंने कहा आप एक बार पुनः बताना चाहें तो।
0: जी हो सकता है का जवाब तो हमेशा हाँ होता है, पर आमतौर पे ये बहुत कॉमनली नहीं होता, पर मतलब काफी कम हो जाता है। आप मान लीजिए कि आपको 100% बीमारी है तो शायद इलाज से आप इसको 30-40% तक ला पाएंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% रंग आ जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वापस कभी ना आए। पर आपकी जैसी स्थिति है, कई मरीजों को ये होता है कि हमारे जो दिखने वाले निशान है चेहरे पे, हाथ पे, इन सब पे आराम पड़ जाए तो वो खुश रहते हैं उसके बाद। तो इसको एक हर इंसान के हिसाब से अलग इलाज होता है और इलाज से फायदा होता है ये कह सकती हूं मैं, पर ये कहना मुश्किल है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसा एक तीर बाण नहीं है।
1: ठीक है। सपना वडेरा जी हमें लिख रही हैं मेरठ से कि 2 महीने पहले मेरे नोज के साइड में एक थोड़ी सी स्किन रेड हो गई जो ठीक नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? काफी परेशान लग रही है मुझे
0: मैं
1: इनके लिखने के ढंग से, तो प्लीज हेल्प कर दीजिए।
0: जी नोज के साइड में ऐसा सुनने से ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां एकदम जहां पे नोज हमारी चीक के पास होती है वहां पर
1: जी
0: अक्सर लाल

0: बस ये सब लगाया जाता था, और इसके ऐसे रिफाइंड वर्जन भी आ गए हैं इलाज में जो आज भी यूज होते हैं, कि उसमें वहां पे हम इरिटेशन ऐसे कर देते हैं कि रंग आना शुरू हो जाए। पर फर्क ये है कि जब घर में हम करते हैं तो हमें नहीं पता कितनी मात्रा, कितना वो, ये सब चीज स्टैंडर्ड नहीं है, तो अक्सर वो यूज करने के बाद काला पड़ जाएगा, स्किन स्किन खराब हो जाएगा। तो यही मैं कहूंगी कि घर के नुक्स इसमें खुद से ना लगाएं तो बेहतर रहेगा,
1: जी
0: चेहरा है स्पेशली।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: हमें ये एक मैसेज लिखकर भेजा है, हमारे श्रोता ने नाम नहीं लिखा है, मैं पढ़ पा रही हूँ थोड़ा सा उनका नाम, कहीं पे मुझे मैसेज के ऊपर दिख रहा है एम इब्राहिम, पर उन्होंने अपना नाम नीचे नहीं लिखा है। ये लिखा है कि क्या जो व्हाइट स्किन होती है फॉरेनर्स की,
0: जी
1: क्या उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, क्या वो भी
0: जी ये
1: फेस
0: बड़े
1: करते
0: इंटरेस्टिंग चीज पूछी है आपने, क्योंकि
1: हैं?
0: सच ये है कि उनको भी होती है, पर फर्क ये है कि उनकी स्किन में दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी लाइट होती है कि उनकी स्किन में अगर व्हाइट पैच हो तो पता नहीं चलता। तो हमारी स्किन क्योंकि डार्कर होती है तो हमारी स्किन में बहुत आराम से दिखता है, इसलिए ये दिक्कत बना है। तो हमारी स्किन में जब डार्क पैच होता है तो उससे लोगों को कम दिक्कत होती है, पर सफेद पैच ज्यादा दिखता है, पर उनको भी ये बीमारी होती है।
1: जी, तो बहुत सारी स्किन की जो बीमारी होती है, जो अक्सर सुना जाता है डॉक्टर साहब, कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्रीम
0: जी
1: भी जो होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या जो भी इनको
0: जी
1: बोला जाता है, तो स्टेरॉइड्स के बारे में एक लोगों को आम धारणा है कि ये नुकसान करता है, ज्यादा समय तक अगर आप यूज करें तो
0: जी
1: इसका नुकसान भी हो सकता है, कहाँ तक सही है ये बात?
0: ये सही है, और कई लोगों को ऐसा नहीं भी है, ऐसा कई घरों में हमारे पास कई मरीज आते हैं जो बचपन से ये कुछ स्टेरॉयड क्रीम्स जो काउंट ऐसे ही मिल जाती हैं दुकानों पे, पूरे पूरे चेहरे पे लगाते रहते हैं कई साल
1: अच्छा
0: तक, कि उससे स्किन का कलर क्योंकि उससे लाइट हो जाता है तो उनको लगता है ये गोरा होने का माध्यम है, पर इससे बहुत दिक्कतें आती है, स्किन पतली हो जाती है, खराब हो जाती है, नसें दिखने लग जाती है, धूप में जाने से लाल हो जाती है। तो स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट बहुत है, तो इसको खुद से नहीं लगाना चाहिए, पर ये कई सारी स्किन की बीमारियों में काम आती है। अगर आप इसको बीमारी के ऊपर यूज करें और सही टाइम तक यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे फिर फायदा रहेगा, पर यही बताने के लिए आपको एक स्किन का डॉक्टर चाहिए। तो स्टेरॉयड का क्रीम कभी खुद ना यूज करें, पर एक चीज मैं बोलूंगी, जैसे वो जो बोल रहे थे नाक के पास जिनको लाल हो रहा था,
1: जी
0: कि ऐसी कई सारी बीमारियों में आप कोई सिंपल मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सेफ होता है, और कई बार कई सारी स्किन की बीमारियां उसको लगाते लगाते भी ठीक हो जाती हैं, जो सूखापन, एक्जिमा, सोराइसिस, इन सब में फायदा होता है मॉइस्चराइजर से। तो आप कोई भी चिकनाई लगा सकते हैं, नारियल तेल, मॉइस्चराइजर, ये हमेशा आप खुद से यूज कर सकते हैं, और ये अच्छा है यूज करना, पर स्टेरॉयड क्रीम खुद से ना यूज करें।
1: बहुत अच्छी बात ही आपने बताई कि मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकते हैं
0: जी
1: बट स्टेरॉइड्स नहीं यूज करना चाहिए। केदी त्रिपाठी हमें लिख रहे हैं रांची से, उम्र है इनकी 74 ईयर्स, ये कह रहे हैं कि क्या विटामिन सी खाने से फायदा होगा अगर किसी को विटिलाइगो है। इसी तरह से एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या कोई विटामिन की कमी के कारण भी विटिलाइगो हो सकता है?
0: जी विटामिन की कमी से विटिलाइगो डायरेक्टली ऐसे तो नहीं होता, इसमें जो बहुत सारे स्टडीज हाइपोथेसिस, कभी किसी स्टडी में होता है कि विटामिन डी की कमी से, पर कभी कोई भी ऐसे कंक्रीट ऐसे प्रॉपर एविडेंस नहीं है, और ये बहुत सारी चीजों से मिलके होता है। जहां तक कि फायदे की बात है तो विटामिन्स जो एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, विटामिन सी, ई, और यहां तक कि हल्दी भी, इन सब का थोड़ा थोड़ा कहा जाता है कि कुछ फायदा हो सकता है इसका विटिलाइगो में, पर इसका ये इलाज के तौर पे नहीं मानेंगे। मतलब अगर आप विटामिन सी खा रहे हैं ये कोई नुकसानदायक भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, बट इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इलाज तो प्रॉपरली करना ही बेहतर रहेगा। पर ऐसी हल्की हल्की स्टडीज हो रही हैं, पर इसमें कोई कंक्रीट अभी तक साइंस में कोई एक ठोस जवाब नहीं है कि इससे फायदा होता है कि नहीं होता और कितना होता है।
1: जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर आए हैं, बहुत समय कम है पर हम
0: जी
1: इनका समस्या सुन लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: हाँ जी।
2: मैम, मेरी एज 17+ है और मेरे को विटिलिगो है, मेरे हाथ और पैरों पे स्मॉल पैचेस है व्हाइट, और मैं अर्ली स्टेज पे है बहुत, तो क्या मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ बढ़ने से?
1: जी डॉक्टर साहब
0: जी हाँ, मेरे ख्याल से जब अर्ली स्टेज है और तो आपका एरिया कम है, तो बेस्ट रहेगा कि आप घर के नुक्स ना करके आप जल्दी से जल्दी स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके निशान बढ़ रहे हैं तो वो आपको एक दवाई ऐसी दे पाएंगे जिससे आपके बढ़ना रुक जाए, और एक बार ये सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए अर्ली स्टेज पे कि आपके निशान आगे ना बढ़े, और उसके बाद फिर रंग लाने की तरकीबें की जा सकती हैं। पर आप दिखा ले जल्दी से जल्दी, ये आपकी तरफ से एक अच्छा स्टेप रहेगा जिससे कि आपका ये बीमारी नहीं फैले।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, हमें कॉल करने के लिए, हमें मैसेज करने के लिए। समय अब समाप्ति की ओर है कार्यक्रम का, और आज हमने डॉक्टर अनन्या शर्मा से बात की जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में, और बहुत

0: अहम बातचीत, हमें बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली विटिलाइगो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर आज हमने बात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर अनन्या शर्मा को कि आप स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें इस विषय पर दी। तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा कल इसी कार्यक्रम में रेडियो डॉक्टर में। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते। थैंक यू।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण बाजपाई VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपाई VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन एस्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूं एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स से जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माय पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली एकेडमिक की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबॉडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वाज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें।

0: तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर आफ्टर जूनियर में ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर आई एम ए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
1: जी
0: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव
1: अच्छा
0: सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाई हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
1: ओके, मतलब पूरा वो
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: बड़ा
0: हमारे हमारा
1: रीजन।
0: ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो
1: जी
0: कम्प्लीटली जेएनके का ही है। तो ये
1: ओके
0: अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं जेएनके में,
1: ओके
0: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा है, देन आई वॉज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से
1: जी,
0: एक अकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
1: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
0: वो
1: आप
0: वापस घूम फिर के
1: वापस घूम फिर करके आया।
0: वापस
1: लेकिन
0: जी
1: सर, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि
0: जी
1: जम्मू
0: जी
1: कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो
0: बिल्कुल
1: कैसा था?
0: बिल्कुल। मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहां पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
1: अच्छा
0: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
1: अच्छा
0: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर। यस
1: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
0: जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है
1: जी
0: तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं।
1: सिचुएशन में
0: तो
1: बिल्कुल।
0: एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत हम किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
1: बिल्कुल
0: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं।
1: जी,
0: ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा
1: अलग
0: उसकी
1: लेवल
0: अलग
1: की।
0: सैंक्टिटी होती है, बट हाँ,
1: जी
0: फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही
1: ओके,
0: अलग तरीके का।
1: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में, आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085, 2342-1085।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
0: अच्छा।
1: सो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वॉज अ गुडविल विच वॉज स्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं के वो टेबल तक आई। बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में, और सबसे अच्छी बात थी, सबसे

0: योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल्स स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
1: अच्छा
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं। तो ये
1: अच्छा
0: अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था एक्चुअली।
1: बिल्कुल, ये तो
0: जी
1: अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो
0: जी
1: क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? क्या
0: जी
1: वो चैलेंजेस फिर से वही सब
0: जी
1: दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं।
1: जी
0: अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस। बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
1: अच्छा
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले
1: अच्छा
0: में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को, उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल
1: जी
0: अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि
1: बिल्कुल
0: घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे
1: जी
0: अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे
1: मतलब
0: है।
1: पूरा लाइफ
0: तो
1: स्टाइल आप
0: जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होकर आए होते हैं।
1: ठीक है
0: फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन और सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर, मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे
1: जी
0: एंड आई शुड वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इट सेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि
1: अच्छा
0: झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसिस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना
1: अच्छा
0: सुंदर
1: अच्छा
0: है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देख के या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है,
0: जी
1: बड़ा गर्म
0: जी
1: इलाका
0: ओ
1: है,
0: जी
1: तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना,
0: जी
1: तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही इसमें, कितने लोगों ने साथ दिया और जो बच्चे आपने जैसे कहा
0: जी
1: कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ,
0: जी
1: तो
0: जी
1: क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे। हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग ना, वो सेंस सिखाना, वो इनग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं,
1: अच्छा
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो
0: जी
1: फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई उसमें उन बच्चों को, जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना,
0: जी
1: वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं। उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज, 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
1: जी
0: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देखे आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस।
0: यही आपके बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम कराना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए,
0: हमेशा
1: बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते
0: जी,
1: रहेंगे।
0: जी जी,
1: तो ये
0: जी,
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको बीएसएम से सम्मानित किया गया
0: जी,
1: तो वो जो मोमेंट था।
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ, पर ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था
0: जी।
1: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक एक, एक अलग सी चीज है
0: जी,
1: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल सर, एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है,
0: जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वीं में हैं
1: जी,
0: दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन।
1: ओके,
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा,
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं।
1: ओके,
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है, पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक आदर्श डाले आते हैं
1: जी,
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली आती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: जाएगा। बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे की जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पे जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
0: या जो पास आउट हो चुके हैं
1: वो
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल
0: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी वीएसएम। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माई हार्टेस्ट सल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टूडे एंड जय हिंद टू ऑल आर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स द कंट्री। आई बो माई हेड टू देम माई सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोद फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माई मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।

0: धन्यवाद।
1: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजे लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है, और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजे लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे डीएमएमसीएच एमडीएमएस के जो पाठ्यक्रम है, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन, और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
1: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के
0: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से, एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
1: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
0: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
1: जी,
0: करी
1: जी।
0: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
1: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
0: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडीज भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहां
1: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें, आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो ये बता रहे हैं आप
0: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
1: अच्छा।
0: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहां पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके,
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताया उनको और बेहतर।
0: सब दोनों के

0: चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैन स्कूल में आई वॉज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माई ओन डिस्पोजल।
1: जी
0: यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज केपेबिलिटीज और अलग अलग इन्वायरमेंट से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं। तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में एक तरीके से, जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहां पे, जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज कि यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी
1: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए साहब, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं,
0: फिर आगे बढ़ते हैं।
1: सर इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी जी देखिए, नर्सिंग कॉलेज एक, नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड अदर मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट।
0: जी जी,
1: और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से, मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैग कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स हैं जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की केपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन केपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं, जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं, तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है,
1: जीवन शैली है, वो एक लाइफ
0: वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ,
1: और बहुत ही स्पेशल है,
0: एब्सोल्युटली।
1: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें, ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो।
0: जी
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं?
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रांग इनफ, सो कंप

0: सर जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है,
1: जी
0: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि
1: जी
0: फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स,
1: जी
0: 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक इंथुजियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए,
1: सर्विस
0: नेवी
1: दे
0: में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ
1: बिल्कुल
0: लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो
1: जी
0: बरकरार रहे,
1: बरकरार रहे,
0: तो वो एक
1: वो
0: बहुत
1: जोश और जज्बा
0: बहुत
1: और देशभक्ति
0: वो
1: की जो भावना
0: जश्वा।
1: है वो बरकरार रहनी चाहिए।
0: एग्जैक्टली
1: सर एक
0: एग्जैक्टली
1: चीज यहां भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहां आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसी,
0: जी जी
1: तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो
1: अच्छा
0: एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ
1: जी
0: सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो
1: ओके
0: एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी, एसएसबी आपने पास कर लिया तो
1: अच्छा
0: आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हम जो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं।
1: कम से कम उनके
0: जी
1: अंदर वो
0: जी
1: चीज, वो
0: राष्ट्रीय
1: जज्बा, वो
0: भावना और
1: भावना
0: वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट ना।
1: अपहोल्ड, बिल्कुल
0: यस
1: बिल्कुल, वो
0: यस
1: चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और
0: बहुत
1: उसके अंदर वो जोश और जज्बा और
0: जी
1: देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि
0: माध्यम
1: हाँ
0: हो
1: भाई
0: जाए।
1: क्यों वो
0: जी
1: अपने देश से मोहब्बत करता है और वो क्यों
0: बिल्कुल
1: उस पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
0: जी
1: सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जैसे जैसे
0: जी
1: अब आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो
0: जी
1: क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड
0: जी
1: किया जा रहा है उसको।
0: जी जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: यहां पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहां पर आपके लिए प्ले कर सकें।
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक आप भी एंजॉय करें। और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा।
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है
0: जी।
1: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी।
1: AI विल,
0: सर लोग बताते हैं कि सर अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है तो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है
0: जी,
1: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर, NRJ सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। आई गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। वंदे मातरम, भारत माता की जय,
1: भारत माता की जय।
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा

0: इम्पॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहां भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
1: जी
0: उसी जिंदगी में लाइफ स्टाइल में,
1: जी
0: तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
1: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके
0: जी
1: पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है,
0: जी
1: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट
0: जी
1: क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक हाँ, ये तो
0: बिल्कुल
1: एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
0: जी
1: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके
1: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी
0: जी
1: फोन पे ही इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
0: जी
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
0: अपने अपने
1: पे,
0: फोन पर वो
1: या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी
0: एग्जैक्टली
1: हिल रही
0: मैं
1: है बस
0: वही पूछने
1: खाली।
0: वाला था सर, ये
1: जी
0: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
1: जी
0: चुके हैं
1: जी
0: लोग,
1: जी
0: इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे।
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया
0: बैन
1: है,
0: किए हैं जी
1: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
0: बिल्कुल
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
0: जी
1: ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
0: एग्जैक्टली
1: जैसे मैंने
0: आपने जो
1: पहले
0: बताया
1: बोला,
0: जी
1: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
0: जी
1: निकल के
0: जी
1: आने
0: जी
1: में
0: जी
1: बड़ी
0: जी
1: तकलीफ हो रही है।
0: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइंड है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है, वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता। तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है।
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए
0: जी
1: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
0: किताबें जो
1: देखिए
0: हैं
1: साहब,
0: ऑनलाइन
1: आप
0: अगर आ गई तो उसका क्या कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं।
1: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
0: जी
1: पढ़ते मिलते थे,
0: बिल्कुल
1: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा
0: जी
1: सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है।
0: ये बहुत जरूरी है।
1: जी
0: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर
1: जी
0: जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस
1: हाँ
0: किया है,
1: जी
0: और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उससे कैसे बचा जाए ताकि
1: देखिए
0: उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए।
1: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं कि
0: अच्छा
1: किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे
0: जी
1: इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए। तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई
0: अच्छा
1: कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
0: अच्छा मतलब
1: हाँ
0: सोशल मीडिया अकाउंट
1: यस,
0: भी
1: अकाउंट
0: नहीं
1: भी
0: बना सकते
1: डिलीट
0: हैं।
1: कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए
0: अच्छा
1: हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से।
0: ओके
1: प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है।
0: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
1: छूट नहीं पा रहा है
0: तो
1: लोग।
0: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए
1: देखिए कुछ चीजें
0: जब
1: तो
0: डेवलप

0: कंट्रीज ऐसा कर रही हैं
1: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली वी विल कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
0: जी, तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
1: तो थैंक यू सो मच,
0: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहां पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
1: थैंक यू
0: आने के लिए
1: जी।
0: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे। कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक वर्ष गया, एक वर्ष।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा पर्व और आजादी का अमृत महोत्सव जैसी सरकारी पहले संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक लेख साझा करते हुए ये बात कही। श्री शेखावत ने अपने लेख में आपातकाल के दौर और उनके दौरान लोगों की स्वतंत्रता तथा आकांक्षाओं पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा

आयला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तादक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ.

के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो जी, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज है, प्रोग्राम लेकर आई हूँ सिटी लाइट्स। 5:05:42 एक बार फिर से हमारा आदाब कबूल कीजिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसमें हम आज भी बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में होने वाले उन सारी सरगर्मियों से रिलेटेड जो आपको कहीं ना कहीं एंजॉय करने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से सॉन्ग से, इस ट्रैक के साथ शुरुआत होगी सिटी लाइट्स की। बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, मैं हूं हिना मौज।

सिटी लाइट सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ। चलिए डालते हैं लाइट क्योंकि ये है प्रोग्राम सिटी लाइट्स। दिल्ली एनसीआर की सरगर्मियों के बारे में सबसे पहले बात कर ली जाए। आज 25 जून को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में क्या खास है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रदर्शनी और व्यापारिक यानी बिजनेस आयोजनों की। आज भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो, सीसीटीवी एक्सपो और फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर एक्सपो का आयोजन जारी है।

इन आयोजनों में देश विदेश की कई कंपनियां अपनी नई तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया वेयर हाउसिंग शो 2026 का शुभारंभ हुआ है, जहां लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। और जी, कला और संस्कृति के शौकीनों के लिए भी कुछ है हमारे पास। दिल्ली में कई प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों में कला प्रदर्शनियां, संगीत कार्यक्रम और साहित्यिक गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको आकर्षित कर सकती हैं। मनोरंजन की बात करें दोस्तों, तो नोएडा और दिल्ली में आज लाइव म्यूजिक और स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां युवा बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन लेकिन लेकिन विभाग मौसम जो है उसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहने, गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। ऐसे में बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखना ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप मौसम के हिसाब से अपने आप को तैयार करके बाहर निकलें और आप सिर्फ एंजॉय करें, परेशानी में ना घिरें। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स। हिना मौज है आपके साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी।

करने वाले लोग हैं, कर्मचारी जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आसपास में ही कोशिश की जाए कि उनको घर जैसी सुविधा जो है वो प्राप्त होनी चाहिए, ताकि उनको ऑफिस आने जाने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो सड़कों के अपग्रेडेशन की भी बात है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के अंतर्गत उसका विस्तार करने की कोशिश है, जिसमें ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बनाया जा रहा है, ताकि जो मुख्यालय हैं उन तक पहुंचना आसान हो। नए रोड कॉरिडोर्स जो हैं उनमें बड़े बड़े एक्सप्रेस और टनल का काम भी चल रहा है। इसमें बहुत सारी जगहें शामिल हैं, जैसे एम्स हो गया, महिपालपुर, गुरुग्राम, इन सब में ओखला बैराज, कालिंदी कुंज, ये सारी जगहें शामिल हैं जहां पर अगर इस तरीके की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं तो शहरी लोगों को बहुत आसानी हो सकती है और आसानी से आना जाना कर सकते हैं, उनका टाइम बच सकता है और रीच जो है उनके लिए सिंपल हो सकती है, थकेंगे नहीं, परेशानियों से दूर होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी कामयाब हो जाएं। बने रहिए हमारे साथ सिटी लाइट्स में, और भी इन्फॉर्मेशंस हैं और आपको ट्रैफिक की अपडेट भी तो देनी है, ताकि आप ऑफिस से निकलें तो आपको पता होना चाहिए कि किस रोड से आपको जाना है, ताकि आप फंसे नहीं। हमारा काम है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जो आपके काम जरूर आए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

5:37 हिना मौज के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों आज एक और दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड विटिलिगो डे। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य है कि विटिलिगो यानी सफेद दाग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और इससे जुड़ी गलत फहमियां जो हैं उन्हें दूर की जाए। विटिलिगो एक ऐसी स्किन संबंधी स्थिति है जिसमें जो स्किन होती है उसके कुछ हिस्सों में सफेद दाग हो जाया करते हैं। ऐसा तब होता है दोस्तों जब स्किन को रंग देने वाली कोशिकाएं या तो खत्म हो जाती हैं या फिर काम करना बंद कर देती हैं। और ये जानना बेइंतहा ज़रूरी है कि विटिलिगो कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर नहीं जाती, यानी कि एक के छूने से दूसरे तक नहीं फैलती। और इसके बावजूद भी समाज में कई तरह की भ्रांतियां और भेदभाव देखने को मिलते हैं जिनका सामना विटिलिगो से प्रभावित लोगों को करना पड़ता है। उनके दिल पर, उनके

पर क्या बीतती होगी, वो अपने रोजमर्रा के कामों में भी डिस्टर्ब फील करते होंगे। विश्व विटिलिगो दिवस हमें ये संदेश देता है कि किसी व्यक्ति का मूल उसके रंग या रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व, प्रतिभा और गुणों से होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील और सहयोगी होने की जरूरत है। और अगर किसी व्यक्ति को त्वचा पर यानी स्किन पर ये सफेद दाग दिखाई दें, तो घबराने के बजाय स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाने की कोशिश कीजिए। समय पर सलाह और उपचार जो होता है वो इस स्थिति को बेइंतहा अच्छे तरीके से संभालने में कारगर साबित होगा और आपको इस परेशानी से निकालने में भी संभालने में भी ये बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप वक्त पर इसके लिए कोई स्टेप उठा लेते हैं। तो ये विश्व विटिलिगो दिवस हमें ये भी सिखाता है कि हमें जागरूकता अपनी बढ़ानी चाहिए आज के दिन को लेकर और इस परेशानी को लेकर। भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए और हर इंसान को सम्मान और समानता का अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। तो कोशिश करें कि अपने आसपास अगर विटिलिगो से प्रभावित कोई भी व्यक्ति आपके आसपास आपको दिखे या आपको लगे कि उसको आपकी ज़रूरत है, तो उसको पहले इसकी इन्फॉर्मेशन कोशिश कीजिए दें ताकि वो अपने आप को संभाले और इन चीज़ों से अपने आप को निकालने के लिए कोशिशें करे और किसी स्पेशलिस्ट को दिखाकर ये ठीक हो सकता है। तो अपने आप को परेशान किए बगैर कुछ करने की कोशिश कीजिए, किसी भी तौर पे अपने आप को कमतर ना समझें किसी भी परेशानी में। ये आकाशवाणी का FM है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स हिना मौज के साथ। तो एक और प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, FM रेनबो सुन रहे हैं, आकाशवाणी FM रेनबो है ये, और प्रोग्राम चल रहा है। क्या प्रोग्राम है? सिटी लाइट्स। और वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया है दोस्तों, वक्त है 5:45 और 16 सेकंड हुए हैं, और अब आपको दिए देते हैं ट्रैफिक अपडेट। जी हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपने अपनी गाड़ियों से जाते हैं, या फिर टाइम बचाने के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैफिक कहाँ पर कितना है, किस रोड से आप निकल सकते हैं, कहाँ से बचकर जा सकते हैं, और आप टाइम पर पहुँच सकते हैं। दिल्ली NCR के वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक अपडेट तो बनता है, तो बताते हैं आपको मौसम के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश आज जो है, मौसम विभाग ने ये कहा है कि बारिश और तेज़ हवाओं की संभावना तो है, और इसके चलते दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद के कई मार्गों पर यातायात धीमी रह सकती है। आज़ादपुर मंडी क्षेत्र में सड़क और ड्रेनेज के जो काम चल रहे हैं उनकी वजह से जाम भी लग सकता है, तो अपनी जो यात्रा है उस पर निकलने से पहले अपने जो भी आपका मार्ग है जिस पे आपको जाना है उसके बारे में ट्रैफिक अपडेट ज़रूर ज़रूर जांच कर निकलने से पहले ज़रूर जाँचें, ताकि आपको सुविधा के साथ अपनी जर्नी जो है वो आप कंप्लीट करें, बजाय इसके कि आप कहीं फंस जाएं। इस तरीके की चीज़ें, और वैसे भी अब ऑफिस टाइमिंग्स हैं, इस वक्त लोग अपने घरों को लौट रहे हैं तो हर जगह भीड़ होती है, और उसके अलावा अगर कोई इस तरीके की चीज़ हो जाए कि बारिश हो जाए या आंधी हो चल जाए, उस वक्त में और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को आप संभालते हुए कोई भी काम करें, कहीं पे भी जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं, तो अवॉइड कीजिए आज के दिन, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ट्रैफिक अपडेट ज़रूर जांचें और फिर निकलें।

5:53 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिना मौज के साथ। एक और दिवस आज मनाया जा रहा है, वो है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? ये दिवस समुद्री व्यापार और परिवहन में कार्यरत नाविकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, वो लोग जो समुन्द्र में महीनों रहते हैं, या तो काम के चलते या फिर अपनी नौकरी के चलते, लेकिन उनको ये सोचिए कि अपने परिवार से इतना दूर रहकर वो काम करते हैं और योगदान देते हैं परिवहन में। जो लोग घूमने जाते हैं वो कुछ दिन के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको घुमाना, उनको लेकर जाना, वापस लेकर आना, उन सब चीज़ों में लगे हुए जितने लोग हैं, वो अपनी नौकरी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके बारे में सोचा जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि वो लोग

घर से इतना दूर इतने महीनों के हिसाब से रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में योगदान देते हैं जो समुद्र के रास्ते से की जाती हैं, लाई जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं, ताकि हम लोगों को, आम शहरियों को आराम से बैठकर हर चीज़ मुहैया कराई जा सके। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर जाती हैं, उन सब चीज़ों में योगदान देने के लिए जो भी जहाज़ों पर काम करने वाले लोग हैं वो पानी में रहकर महीनों के हिसाब से हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको याद करने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि 5:54 हुए हैं। एक आखिरी ट्रैक के साथ आप सब से विदा लूँगी और कहूँगी कि छुट्टियों के बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, अगर कहीं घूमने नहीं गए हैं तो घूमिए, और अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो दिल्ली NCR में कोई कमी नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इंतज़ार में हैं। कोशिश कीजिए, समय निकालिए, अपने लिए जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने लिए निकाला हुआ है समय ही अपना होता है। चलते चलते आप सबको बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर। और ये आखिरी ट्रैक आपके लिए है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बेहद, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवोशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद

सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कहते हैं कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाते हैं, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनके साथ कभी ना टूटने वाले रिश्ते बन जाते हैं, और आपका और हमारा साथ और रिश्ता भी ऐसा ही है, दिल से दिल तक। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज का जो बेसब्री से आपको इंतजार होगा कि आज का टॉपिक कौन सा है, तो आज का टॉपिक दोस्तों है बड़ा ही इजी। इजी मतलब आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक ये है कि आप किस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पर या अपनी किस्मत पर। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो मिल ही जाएगा, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम मेहनत करें तो जो हमारी किस्मत में नहीं भी है वो भी हमें मिल जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस में बिलीव करते हैं, किस्मत में या अपनी मेहनत में, और क्यों। जल्दी से लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल आपके लिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक, और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और आज का टॉपिक है कि आप सबसे ज्यादा किस पर बिलीव करते हैं, किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पर या किस्मत पर, और क्यों करते हैं। जल्दी से लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और आज मैसेज मसाला मिक्स में हमारा टॉपिक है कि आप सबसे ज्यादा किस पर बिलीव करते हैं, किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पर या किस्मत पर। क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत बदल जाती है, और मेहनत करे इंसान तो भी किस्मत बदल सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस पर बिलीव करते हैं। 9868107070 हमारा नंबर है, आप उस पर अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना जवाब भेज सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक, और उसके बाद आपके मैसेजेस का सिलसिला चलता रहे।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: यह आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। बिछड़ कर भी तू मुझसे जुदा ना हो सका, तू मेरी यादों की पनाह में आज भी है। भले ही मंजिल अलग हो गई है हमारी, मगर तेरा नाम मेरी दुआओं में आज भी है। मोहम्मद सरफराज आलम, जौकीहट दर्शना बाजार या बिहार से लिखते हैं। क्या बात है, क्या लिखते हैं, कमाल का लिखते हैं। लेकिन आपने नहीं बताया दोस्त कि आप किस पर बिलीव करते हैं, मेहनत पर या किस्मत पर। और अगला मैसेज हमें भेजा है शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। लिखते हैं, यदि किस्मत में नहीं होगा तो मेहनत करके करने के पश्चात भी पूरा फल नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत होती है, उनका वह निजी अनुभव होता है, परंतु सच्चाई होती है कि उनका भाग्य बहुत बलवान होता है। किसी रिक्शे वाले ने दिन भर मेहनत करके पैसा कमाया और पैसा उसके भाग्य में नहीं था। शाम को उसका रिक्शा का रिम टूट गया और वो पैसा भी वहां से चला गया। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या, हर एक का अपना अपना व्यू है दोस्त।

0: आपने अपना व्यूज रखा तो औरों का व्यूज भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और अगला मैसेज हमें भेजा है हीरामणि वर्मा ने दत्त रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं, अपनी मेहनत पर अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हूं मैं। क्या बात है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आज आप किस पर बिलीव करते हैं, मेहनत पर या अपनी किस्मत पर। 9868 1070 हमारा नंबर है, इस पर अपना व्हाट्सअप कर अपने नाम और शहर के नाम के साथ अपना जवाब लिखकर भेजिए। मैं मेहनत से विश्वास करता हूं, मेहनत के बिना किस्मत बेकार है। ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिख के भेजा है। तो दोस्त, जब भी आप भेजें अपना नाम जरूर लिखकर भेजें और शहर का नाम भी लिखकर भेजें। और मेहनत के बगैर तो किस्मत भी नहीं बनती, इसलिए मैं ज़्यादा ज़रूरी करता हूँ कि मेहनत ज़रूरी है। ये नरेंद्र सोनी गांव अदालती वाला पटियाला देवीगढ़ से इन्होंने मैसेज भेजा है। शुभ संध्या। और अगला मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम ने जवाहर कैंप कीर्ति नगर दिल्ली से। मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वास तो अपनी मेहनत पे ही करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जिसे अपने कर्तव्य की तरह काम किया तो किस्मत अपने आप बन जाती है, इसलिए मैं काम करने पे विश्वास करता हूँ। क्या बात है। आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, आकाशवाणी एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक।
1: पर चर्चा भी करते हैं।
0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफ एम रेनबो।
0: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक पर यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस पर बिलीव करते हैं, अपनी मेहनत पर या अपनी किस्मत पर। जल्दी से लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868 1070 7070।

दोस्तों आज का टॉपिक जो है उस पर यही कहना चाहेंगे कि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, मेहनत की चौकट से गुजरना ही पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस पे बिलीव करते हैं, मेहनत पर या किस्मत पर, और क्यों करते हैं ये जरूर बताइएगा अपने नाम और शहर के नाम के साथ। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस पे बिलीव करते हैं, किस्मत पर या फिर अपने मेहनत पर। तो जल्दी से लिखकर भेजिए, आपके बेसब्री से हमें मैसेजेस का इंतज़ार है और आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। और अगला जो मैसेज आया है वो मैं बता दूं किसका आया है। और अगले मैसेज भेजा है हमें अंकित ने बागपत यूपी से। सर हम मेहनत पर विश्वास करते हैं क्योंकि क्या पता किस्मत में ये लिखा हो या ना, मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा दोस्त। और अगला मैसेज हमें भेजा है हर्षवर्धन पांडे ने, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से। और लिखते हैं कि आज के टॉपिक में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ तो श्री गणेश करता हूँ, तो पहले मैं ईश्वर या भगवान का नाम लेता हूँ, फिर इसके पश्चात अपना कार्यक्रम या जो भी हमारा कार्य है वो प्रारंभ करता हूँ। यदि मेरी मेहनत सफल रही तो मैं ऐसा इसे पूरा श्रेय अपने ही मेहनत को देता हूँ, और अगर मेहनत में ही विश्वास करता हूँ, किस्मत या भाग्य में नहीं, यही मेरा विचार है। तो अपनी मेहनत में आप विश्वास करते हैं, बहुत बढ़िया। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से। और कह रहे हैं कि हम ऐप पर सुन रहे हैं इस वक्त, हम ऐप के माध्यम से, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप तक जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि हाथों की लकीरों के से आगे हाथ में उंगलियां होती हैं, शायद इसीलिए ही बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। राजेश बल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से लिख रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है, किस्मत के भरोसे कहाँ बैठा रहते हैं। और पुनीत ऋषिकेश से

के भेज रहे हैं। और मीना खरगांव मध्य प्रदेश से लिखती हैं कि मैं मेहनत से ज़्यादा किस्मत में बिलीव करती हूँ। अगर आप कुछ पाने के लिए मेहनत करते हो और अगर आपकी किस्मत में वो लिखा है तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने दोस्त। और देहरादून से आलोक पवार और मिनी लिखती हैं, शुभ संध्या, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाना भी ज़रूरी है, तभी कामयाबी मिलती है, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगला मैसेज हमें भेजा है विक्रम ने दिल्ली से, मेहनत और किस्मत की तो इतनी सी कहानी है कि जो जीत गया वही अपनी मेहनत को क्रेडिट देता है और जो हार गया वो किस्मत को ब्लेम करता है। बिल्कुल 100% सही कहा आपने। और भुवनेश लिखते हैं अशोक विहार दिल्ली से, हाउ आर यू, और कहते हैं कि आज के टॉपिक में यही कहना चाहूँगा कि मैं हार्डवर्क में बिलीव करता हूँ रेदर देन लक, और वो इसलिए कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और मैं इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मेरी एक बारी सरकारी नौकरी लगने वाली थी एंड उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए मैंने खूब मेहनत की और भगवान की आशीर्वाद से आज मुझे वो सरकारी नौकरी मिल गई। क्या बात है। और किस्मत बनाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के आप अपनी किस्मत नहीं संवार सकते, यही लगातार मेहनत एक दिन आपकी किस्मत ज़रूर संवार देगी। ललित राणा लिखते हैं डेरा बसी पंजाब से, तो मैं दोस्त आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस पर बिलीव करते हैं, अपनी मेहनत पर या किस पर या किस्मत पर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। तो जल्दी से लिख कर भेजिए 9868107070 हमारा नंबर है, तो आप बताइए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। और आज का टॉपिक है कि आप सबसे ज्यादा किस पर बिलीव करते हैं, अपनी मेहनत पर या किस्मत पर। और अगर आपके भी दिल में कुछ संकोच है तो लिखकर जल्दी से भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। संकोच नहीं, अगर आपके भी जहन में है कि आप मेहनत पर बिलीव करते हैं तो भी लिखकर भेज दीजिए, और अगर आप किस्मत पर बिलीव करते हैं तो वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते ही हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूं, नंबर है 9868107070। और अगला मैसेज हमें जो भेजा है वो भेजा है हमारे एक और प्यारे से लिसनर, लिखते हैं, ये भेजा है किन्होंने, ये किशु वंजानी, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं कि आज के टॉपिक पर हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते रहो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। क्या बात है, बहुत खूब। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से लिखती हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, और कह रहे हैं कि आज के टॉपिक में मैं यही कहना चाहती हूं कि मैं मेहनत पर विश्वास करना, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। सफलता पर अगर आपके साथ है तो मेहनत सफलता का रंग लाने में, और अगर किस्मत भी है साथ में देते तो सोने पर सुहागा हो जाता है। मतलब अगर आपकी मेहनत रंग ला रही है और किस्मत भी आपके साथ है तो सोने पर सुहागा है, लेकिन मेहनत करते रहिए, मेहनत जो है ना वो अपने आप किस्मत बदल देती है। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखती हैं, क्या यही है क्या यही है कि हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क अगर आप करते हैं ना तो लाइफ का इज ए गेम ऑफ हार्ड वर्क विच कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और आप अपनी किस्मत को अपनी हार्ड वर्क से बदल सकते हैं। और मैं मेहनत पर सबसे अधिक यकीन करता हूं क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है, और मेहनत हाथ में है, किस्मत अब कहाँ और कैसे साथ देगी यह कोई नहीं जानता। और लेकिन सच्ची लगन और निरंतर प्रयास अक्सर किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि मेहनत कीजिए, किस्मत खुद साथ देने लगेगी।

मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत पर विश्वास करता हूँ। रंजीत कुमार मंडल अरिया बिहार से लिखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा दोस्त, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, मेहनत करते रहिए। पंकज अमरावति महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मैं अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास करता हूँ, मेहनत से हम जीवन में सफलता और बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, किस्मत के भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं होता, जिंदगी में मेहनत ही एकमात्र पर्याय है जो सब

झारखंड से लिखते हैं, मैं सबसे ज्यादा मेहनत पर ही विश्वास करता हूं क्योंकि किस्मत तो सिर्फ एक बहाना है। विक्रम ने लिख के भेजा है कि मेहनत और किस्मत को इतनी सी कहानी है कि जो जीत गया वो अपनी मेहनत को क्रेडिट देता है और जो हार गया वो किस्मत को ब्लेम करता है। बिल्कुल ठीक कहा दोस्त। और अशोक विहार दिल्ली से भुवनेश ने भी मैसेज पे यही लिखा है कि मैं हार्डवर्क पर बिलीव करता हूँ, लक पर नहीं। बिल्कुल ठीक कहा दोस्त। और अगला मैसेज जो हमें भेजा है वो किन्होंने भेजा है, वो भेजा है हमें प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर जिला बिजनौर से। लिखते हैं कि हम आज के टॉपिक पे यही कहना चाहते हैं कि मैं कर्म और मेहनत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, दिन भर ईमानदारी से जी तोड़ मेहनत करता हूं, उसके प्रति फल में मुझे ही प्राप्त होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वही मेरे परिवार की आजीविका का साधन है और अपनी मेहनत, प्रभु की कृपा और आप सबकी दुआओं से जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही है। क्या बात है प्रेमचंद प्रेमी जी। और लिखते हैं रक्त दान न जाए व्यर्थ किसी की जान, होठों पर छाए मुस्कान फर्ज समझ कर, यदि आप हम करते जाएं रक्तदान, करते जाएं रक्तदान। तो उन्होंने मैसेज दिया रक्तदान क्यों करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के जीवन को अगर हम बचाना है तो रक्तदान जरूर कीजिए। ये एक बहुत ही प्यारा सा उन्होंने मैसेज दिया है अपने कविता के माध्यम से। और अनिल शर्मा सरिता विहार से लिखते हैं मेहनत के भरोसे करोगे तो फायदे में रहोगे और किस्मत पर भरोसा नुकसान ही हमेशा देखते हैं। देखा मेहनत से किस्मत बनाई जा सकती है, वही किस्मत मेहनत करना है नहीं सिखाती, किस्मत तो निठल्ले इंसान को बना देता है। ओहो हो बहुत खूब आपने ठीक फरमाया। और प्रदीप सुनार लाली परी मिष्टी सोनी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बताना चाहते हैं किस्मत और मेहनत दोनों ही मेहरबान होने जरूरी हैं। किस्मत और भगवान लिखते हैं मेहनत हमें करनी पड़ती है, किस्मत में नहीं होती मेहनत भी बेकार जायज हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद कुछ और मैसेजेस शामिल करेंगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, ये भेजा है ओमकार राजपूत ने। मेरा नाम ओमकार है और मैं जिला कासगंज से तारकपुर कनक से हूं और मैं मेहनत में अधिक विश्वास करना मैं कहता हूं क्या विश्वास करता भी हूं और क्योंकि मेहनत से ही मैं भाग्य को बदल सकता हूं। सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं, हमारे विचार से किस्मत और मेहनत दोनों का 50-50 का रोल है हमारे जीवन में। क्या बात है। और अगला मैसेज हमें भेजा है अयोध्या से सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा ने लिखते हैं, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा वक्त के साथ दृढ़ संकल्प। किस्मत और मेहनत में एक ही फर्क होता है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं होता है। क्या बात है। सुनील कुशवाहा लिखते हैं, दिलखुश कुशवाहा बीघापुर उन्नाव लिखते हैं, किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता क्योंकि मेहनत करने से ही सारे सुख मिलते हैं। और गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन से लिखते हैं कि मैं कर्म में ही विश्वास करता हूं। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है कस्मा गनौर यूपी से फारूक अली खान ने, किस्मत तो अपनी मेहनत के साथ लिखी जाती है। क्या बात है, बहुत खूब। और अगला मैसेज हमें भेजा है प्रवीण चौहान ने खरगांव मध्य प्रदेश से, मैं अपनी मेहनत में बिलीव करता हूं, प्रैक्टिकली सोचो जरा, रिजल्ट तभी मिलता है जब कोई इनपुट दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा। इकबाल गुलाटी पिपली कुरुक्षेत्र से लिखते हैं कि मैं वर्क में बिलीव करता हूं, वर्क इज वर्कशिप। क्या बात है, बहुत खूब। और अब अपने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास सरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास सरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने

आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। दिस इज दैट टाइम ऑफ द वीक व्हेन वी गो डाउन द मेमोरी लेन टू ब्रिंग यू सम ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम, सॉन्ग्स दैट स्टिल हिट एज हार्ड एज दे डिड बैक देन एंड हैव बीन द साउंडट्रैक टू आवर मेमोरीज। So welcome everyone to Hits and Memories with your host Shubhankar, back at your service again. So tonight, dear listeners, is for the lovers and for the yearners. Every song tonight carries a different shade of love, the passion, the longing, the desire, and the devotion, and a beautiful madness only music can explain. So let's kick things off with a song that asks a question almost all of us have asked at some point. Can anybody find us somebody to love?

0: So that was Eyes Without a Face by Billy Idol. This is that 80s texture, that 80s melancholy that many of us still crave. So haunting, so beautiful. It is one of those tracks which is best heard when the lights are low. And when you let this music wash over you, it can be a spiritual experience if you listen to it like that. Well, dear listeners, if you're enjoying the show so far, please feel free to show us some love by sending your messages on our official WhatsApp number, 9868107070. I repeat, 9868107070. Time for a short break, but don't go anywhere. The night of lovely music is only getting started. You're listening to Hits and Memories only on Akashvani Rainbow 102.6 megahertz.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: Welcome back, dear listeners, to Hits and Memories only on Akashvani Rainbow 102.6 megahertz. It's time to pick the energy of the show, right? Up next, we have a track about that first spark of love, when the heart knows something is going on, but the mind, it is still catching up, asking what exactly this is. And that beautiful confusion is perfectly captured in this rocking classic by Peter Frampton called Show Me the Way.

0: Well, that was When Doves Cry by Prince. And dear listeners, it's time for another short break, but the festivities of great love songs will continue on the other side. You're listening to Hits and Memories, only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. Phir aaya entertainment ka revolution, jab kone kone pahuncha Doordarshan. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: कोयल सी तेरी बोली
4: हाय
3: तेरी तिरछी नजर में है जादू
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर
0: Welcome back, everyone, to Hits and Memories, only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. Before we move into our next set of songs, we invite you to join us at 10.05 p.m. for our Western music program, All That Jazz. We got some energetic jazz performances stacked up for you tonight, from Art Blakey, Joe Henderson, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, and everyone you can think of. So join us at 10.05 p.m. on our show, All That Jazz. Dear listeners, by now you must have understood that why 25th June is an extraordinary day in music. But if you thought it cannot get even bigger, it gets because you know that today is World Beatles Day, which was established in 2009. The day was chosen to commemorate the debut of one of Beatles'

आपकी वाणी आकाशवाणी जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर एक बार फिर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। तो आ जाइए हमारे साथ एक बार फिर डांस फ्लोर पर, जिंदगी का जश्न मनाइए और खो जाइए म्यूजिक मस्ती में।

0: match with me.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। और म्यूजिक मस्ती में अगला ट्रैक तो आपको नाचने पर मजबूर कर ही देगा। और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि हमारे साथ और कौन कौन हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रेमचंद प्रेमी हमारे साथ जैत्रा धामपुर से जुड़े हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप और आपके पूरे यहाँ पर कह रहे हैं कि पूरे परिवार के लोग हमें सुन रहे हैं और पूरे गांव वाले सुन रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे भी अटेंडेंस लगा दीजिए जनाब, तो आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। और आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर आपका तहे दिल से स्वागत करता है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन सिंह। आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और हमारे साथ अमर रमेश जुड़े हुए हैं और अमर रमेश कुमार खत्री टेलर मास्टर किशन लाल खत्री मोहम्मद आमीन सफर सादिक शेख शंकर गुल शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आप भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने मैसेज नहीं किया कोई बात नहीं आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका भी तहे दिल से स्वागत है। म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम चल रहा है और अगला ट्रैक आई होप आपको नाचने पर और डांस फ्लोर पर आने के लिए मजबूर तो कर ही देगा अगर अभी नहीं नाचे तो फिर कब नाचोगे भाई। ये जिंदगी का जश्न मनाओ खुल के जियो गाओ क्या पता कल हो ना हो।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, हम भी मूव ऑन कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं और समय हुआ है 8:38 और आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप,

0: से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। और अब समय भी आगे आगे चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि अगला प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आपके साथ रहेंगे ताहिर हसन। और उसके बाद 11:05 पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे ताहिर हसन प्रोग्राम रंगे महफिल में। और 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पर आप सुनेंगे ऑल डेट जैज वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम जिसे लेकर आएंगे शुभानी। और अब मैं आपसे यही कहूँगा कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो दिल से दिल तक।

दोस्तों, अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और आपको चलते चलते बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार मोरी गेट दिल्ली से, और कह रहे हैं कि हम चाय और पकोड़े खाते हुए आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और कस्बा कनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजिया फराज, फरहीन फरहान, फरिया और ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और अगला प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आपके साथ रहेंगे ताहिर हसन, और 11:05 पर एक बार फिर आपके साथ रहेंगे ताहिर हसन प्रोग्राम रंगे महफिल में। तो मुझे यानी कि अब वीर धवन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ज़िंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।

वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। उम्मीद जैसी लगाई जाए वैसा हो भी जाता है। हर शाम अपने साथ कोई ना कोई कहानी लेकर आती है। किसी के लिए ये सिर्फ एक दिन का आखिरी हिस्सा होता है और किसी के लिए वो वक्त जब दिल थोड़ा सा आराम से बैठकर अपने दिल के

तो दोबारा जीता जा जिया जाता है। दिन भर कितना भी चेहरे आपके सामने आ जाते हैं, कितनी बातें होती हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो घर पहुंचकर और पहुंचने के बाद याद नहीं रहते, महसूस होने लगते हैं। बस उन्हीं लम्हों को जीना और उसको नाम देना, और नाम वही होता है जैसे कि आप जानते हैं जो कि अब शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आए, चलिए शाम को गीतों के साथ थोड़ा सा हसीन बनाने की कोशिश करते हैं। साथ रहिएगा, जाइएगा मत।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा, आपकी याद आती रही। आप लोगों की तो याद बहुत आती है। कुछ लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो कभी अपनी अहमियत जताते ही नहीं, लेकिन जब एक दिन बात ना हो तो दिन कुछ अधूरा सा लगता है, और जब रात ना हो तो खास तौर पे। ये वही वक्त चल रहा है।

आपकी याद आती रही। कभी कभी दिल किसी से इजाजत लेकर अपना सफर शुरू नहीं करता, बस एक मुलाकात, एक मुस्कुराहट या एक सादगी भरी बात उसे अपना अपना बना लेता है। फिर इंसान खुद से ही पूछता रह जाता है, ये जो एहसास है इसकी मंजिल क्या होगी। लेकिन शायद मोहब्बत का हुस्न भी यही है, हर बात का जवाब मिल जाए तो उसमें वो बात कहाँ रह जाती है। कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और कुछ बस दिल को जिंदा रखती हैं। ये जो आप गाना सुनेंगे उसका फील कुछ ऐसे ही है, बताइएगा ऐसा है या नहीं है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक, और मैं हूँ आपके साथ ताहिर। और प्रोग्राम तो आपको पता ही है कौन सा चल रहा है, आपका पसंदीदा, जिसको हम कहते हैं आपकी याद आती रही। तो जनाब, अजीब सी कश्मश, हाँ ऐसे ही तो होता है, बोल नहीं पाते, आवाज़ नहीं निकल पाती, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जो होते हैं, और जो आप लोग हमारे साथ होते हैं तो आप लोग मैसेज भी करते हैं, और जब मैसेज करते हैं तो अजीब लगता है कि आपका जवाब नहीं दूँ, बस छोटी सी बात है जो हमें मैसेज कर रहे हैं। तो उनका नाम तो लेना पड़ता है। आदिल कमर गुरनौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पंकज है अमरावती से, और मेरे पास एक और मैसेज आया हुआ है, ये है दिल्ली मोरी गेट से, कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। और तहे जी आज इनको भी अच्छा लग रहा है, ये है तरन कुमार अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। और जी ये हैं जी डॉली, और डॉली हैं जी कहाँ से, इन्होंने नहीं लिखा कहाँ से हैं। बहरहाल इन लोगों को सबको गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ये जो गाने हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, क्यों खूबसूरत ना हो, बहुत मेहनत से लिखे जाते हैं। कभी कभी किसी का साथ चलना भी काफ़ी होता है, बात करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ साथ ऐसे होते हैं जो खामोशी में भी पूरी गुफ्तगू लेते हैं, करते हैं, साथ रहते हैं, साथ निभाने का वादा करते हैं ना।

जनाब, सबसे खूबसूरत तो वो लोग होते हैं जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, बस आप जैसे हो वैसे ही कबूल कर लेते हैं। एक मुस्कुराहट की भी अपनी याददाश्त होती है, चेहरे भूल जाते हैं इंसान, मगर किसी वजह से मुस्कुराने का एहसास बहुत देर तक साथ रहता है, जाता नहीं, कभी भी नहीं जाता। हाँ, आपको देखा है, याद रहता है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही और मैं हूं आपके साथ ताहिर। गीत संगीत बेहद पसंद आ रहा है। किशन वंजनी, नीलम स्वाती और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से लिखते हैं, और एक लिखते हैं जी कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान साहब। मतलब आप लोगों को पसंद आ

0: ये संगीत है वाकई, बहुत बहुत मेहनत होती है संगीत के पीछे। राजेश भल्ला कंकड़खेड़ा से, और एक मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के संगीत की तारीफ की है। वाकई बहुत खूबसूरत संगीत है। छोटा सा एक ब्रेक है, वापस बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कभी किसी का नाम फोन पर देखकर बिना मैसेज पढ़े ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगर ऐसा आ जाए, ऐसा हो जाए तो समझ लेना रिश्ता अल्फाजों से थोड़ा आगे निकल चुका है।

जिंदगी में हर मुलाकात बड़ी नहीं होती, कभी 5 मिनट भी इतने खास हो जाते हैं कि सालों तक उनकी गर्माहट साथ चलती है। कुछ लोग तो दुआ की तरह होते हैं, नजरों के सामने नहीं हो फिर भी उनके लिए दिल से दुआ ही निकलती है, ये बात हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात मैंने हमेशा महसूस की है, जो लोग अपने दिल से करीब होते हैं उनसे रोज मिलना जरूरी नहीं होता, बस इतना ही काफ़ी होता है कि वो कहीं ना कहीं से इस दुनिया में मुस्करा रहे हों, बस इतना ही काफ़ी है, जैसे कि आज आप मुस्करा रहे हैं, ये हकीकत बात है, यही जानता हूँ मैं, सच यही बोल रहा हूँ कि आप मुस्करा रहे हैं। फिलहाल तो मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि ये प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन हाँ ये वादा करके जा रहा हूँ कि 11:05 पर रंगे महफिल में आपके साथ रहूँगा, जब मेरे साथ ज़रूर रहेगा। और बाकी तो आप सुन ही रहे हैं, सुनते रहिए FM रेनबो, जो कि है दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए। रिएक्टर स्कूल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपये होगी। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जन सेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मैक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Welcome back to All That Jazz, only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. Dear listeners, what is better than one jazz legend on a song? We would say two. So up next, we have a legendary collaboration between Lionel Hampton on vibraphone and Stan Getz on the saxophone. Here's Jumpin' at the Woodside.

0: So that was What's Up by Thurlow Guthrie. And we'll be right back after the short break, dear listeners. You're listening to All That Jazz only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz.
1: Mangal Bhavan, Mangal Hari, Dravahu Sudarshan.
2: Shri Ram Katha Marmagya Dr. Kumar Vishwas Ji ke saath, Shri Ram Charitmanas ki bhav, Ras, Sangeet Yatra, Sampurna Shri Ram Charitmanas. सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: Welcome back, dear listeners, to All That Jazz. We have finally reached near the end of our program, and we hope you're having a great time. Up next, we got an underrated Indian classical and jazz legend who mixed jazz funk with sitar, played with Jimi Hendrix, and was the nephew of the sitar maestro, Sri Ravi Shankar. Here's Jungle Symphony live version by Anand Shankar Experience.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंप

भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, कैसे हैं आप? दिन धीरे धीरे अपनी किताब बंद कर चुका है, रात ने अपनी पहली परछाई बिछा दी है। ये वो लम्हा है जब आवाजें कम हो जाती हैं और अल्फाज अपना असर दिखाने लगते हैं। हर गजल सिर्फ सुरों का सफर नहीं होती, वो किसी की मुस्कुराहट भी होती है, किसी का इंतजार भी होती है, और कभी कभी किसी अधूरे ख्वाब की आखिरी रोशनी भी। कभी कभी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मैं हूं आपके साथ ताहिर, और शुरू होता है प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। आइए गजलों के साथ इस रात को और भी हसीन बनाने की कोशिश करते हैं।

कभी किसी की कमी आवाज नहीं देती, वो बस आदतों में उतर जाती है। एक खाली कुर्सी, एक अधूरी सी चाय या किसी बात पर बेख्तियार मुस्कुराना, तब महसूस होता है कि कुछ लोग वक्त के साथ दूर हो जाते हैं, लेकिन मगर दिल से कभी नहीं जाते। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। और शायद इसीलिए असली अपनापन कहते हैं।

कभी कभी रात किसी किताब की तरह लगती है, हर गजल उसका एक सफा होती है, कहीं मुस्कुराहट लिखी होती है, कहीं इंतजार और कहीं वो बात जो कभी किसी से कही नहीं गई है। इंसान भी अजीब है, इंसान बहुत अजीब है, सब कुछ कह सकता है लेकिन जो दिल के सबसे करीब होता है उसी को लफ्ज नहीं मिलते। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो, यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो, यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।

हर महफिल की अपनी एक खुशबू होती है, जैसे हमारी इस महफिल की। कुछ लोग गीत सुनते हैं, कुछ अल्फाज और कुछ अपनी ही कहानी। इसलिए गजल कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि हर दफा सुनने वाला बदल चुका होता है। बस यही रंग महफिल।

कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन फिर अचानक कोई पुरानी सी धुन सुनाई देती है और महसूस होता है कि बदला सिर्फ कैलेंडर है, एहसास अब भी वही है। इंसान अपनी जिंदगी में कितने ही नए रास्ते बना ले, मगर कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां दिल हर बार रुक कर देखना चाहता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा जिसे बोलते हैं रंगे महफिल, जहां हम बात करते हैं दिल की, एहसास की, जुदाई की, बिरहा की, मिलन की, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती रहती हैं। कई बार हम उन चीज़ों को बहुत गहराई से ले लेते हैं, कई बार बहुत ऊपर ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन कोई बात दिल में घर कर जाती है और उसको भूलना नामुमकिन हो जाता है।

जनाब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं। वैसे तो मुझे पता है कि बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि कम से कम आपका नाम तो ज़रूर लें। फारुख अली खां, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, फारिया ताहिरा, कस्बा गन्नौर यूपी से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये हैं शांतिपत, शांति नगर सोनीपत से। और हमारे साथ हैं टी श्याम सुंदर गोवा से। बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें मैसेज भेजते हैं, दिल चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन दिल से दिल जुड़े हुए हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा रंग महफिल। हर इंसान के पास एक ऐसी कहानी होती है जो वो किसी महफिल में नहीं सुनाता। वो कहानी उसकी आंखों में होती है, उसकी मुस्कुराहट के पीछे होती है और कभी कभी उसकी खामोशी में भी। जब कोई गजल दिल को छू जाती है तो लगता है जैसे किसी ने उस अनकहे सफे को पढ़ लिया हो।

तो दोस्तों, हर महफिल की तरह आज की रात ने भी अपने हिस्से की कुछ अल्फाज और कुछ एहसास हम सब के नाम कर दिए। उम्मीद है कोई शेर, कोई गजल या कोई बात आपके दिल में अपनी जगह जरूर बना गई होगी। मैं हूं ताहिर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ चलने के लिए। अब दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी इसी वक्त यानी कि कभी किसी मोड़ पर किसी अंदाज में रंगे महफिल के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, शब खैर, खुश रहिए, खासतौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शब खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्यों में भारत की सहायता करने की तत्परता जताई है। सुश्री रोड्रिगेज ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सराहना की और वेनेजुएला के प्रति एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि रास लाफान घटना में मारे गए 12 भारतीय नागरिकों में से 4 के पार्थिव शरीर भारत वापस लाए जा रहे हैं। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अन्य पार्थिव शरीरों के भी जल्द भारत भेजने की आशा व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 12:06 और अब शुरू होता है नॉनस्टॉप म्यूजिक का सिलसिला यानी जीरो आर शो में आप सुनेंगे बिना रुके गाने नॉनस्टॉप। तो शुरुआत करते हैं बस ऐसे ही गानों से, तो आप गानों की दुनिया में खो जाइए और गानों का मजा लीजिए। स्टार्टिंग पैपॉन की आवाज में इस गाने के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 12:51 हुए हैं और नॉन स्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं आप जीरो आर शो में। और थोड़ी ही देर बाद रात के 1 बज जाएंगे और फिर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। तो अभी ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की यह परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना? लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं सुहानी रात में नॉन स्टॉप म्यूजिक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे थे सुहानी रात में नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने भूकंप से जानमाल की क्षति पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत द्वारा राहत कार्यों में सहायता की तत्परता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य के उत्तर जिलों में भी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन हो सकता है। राज्य के उत्तरी उप हिमालयी जिलों में बारिश और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोलकाता उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया, झाड़ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का शो है दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर। टाइम हुआ है आधी रात के 2:06 और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक गाने। और अभी शुरू होता है भुलाए ना बने, जिसमें आप वो गाने सुनेंगे जो आप ऑलमोस्ट भूल चुके होंगे, लेकिन उन्हीं गानों को दोबारा से रिमाइंड करेंगे इस शो के थ्रू। तो आप इन गानों का मजा लीजिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल की तरह

गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 137 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसने 16 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज नॉनस्टॉप। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज नॉनस्टॉप।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यह सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे जोखिम में कमी आई है। IMF की संचार निदेशक जूली कोजैक ने वाशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में कहा कि हाल के संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती की जांच हुई, पर कमोडिटी बाजार और वित्तीय स्थितियां मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:06 हो चुके हैं और रात 12 बजे से आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप हिट बॉलीवुड म्यूजिक। और अभी 20 घंटे आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने और शो का नाम है सारे गामा। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मूवी सनम रे, जिसमें अमाल मलिक और अरिजीत सिंह आपके लिए गाते हुए ये वाला गाना गजब का है दिन। तो इन गानों को सुनिए और ऐसे ही अपने सुबह की शुरुआत कीजिए और झूमते रहिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,

0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशल्स जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच में ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। इस बीच वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट में कमी आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान और स्वीडन तथा ट्यूनिशिया और नीदरलैंड का मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं और करते हैं आराधना, आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। सुनते हैं भक्ति, श्रद्धा और मधुर संगीत से भरा ये कार्यक्रम। आइए सुनते हैं और करते हैं प्रभु वंदना।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।